0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताइत रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मी आहे आपल्यासाठी शुभ असलेली शुभांगी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: यानी कि मैं किन मान्यताओं को लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये तो पूरा का पूरा मेरी सोच जो है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जीवन जीने का जो तरीका है वो मेरी मान्यताओं पर ही खड़ा है। कैसे अब उनको देखना है और कैसे उन्हें बदलना है, ये पूरी श्रृंखला का हमारा जो है वो आस्पेक्ट रहेगा। लेकिन आज बातचीत करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स पर एक बार फिर से, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं रामा कुमारी सिस्टर शिवारी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: एक और लहर चल पड़ी है सिस्टर शिवानी, और हमारे पास जिस तरह के मेल्स भी पहुंचने लग गए हैं, बार बार हम यही कहते हैं आप ही का मंच है तो फिर अपने मंच पर खुले मन से बात करते हैं, तो अब ढेरों बिलीफ सिस्टम्स आने लग गए हैं। और फिर ये कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है या ये ट्रुथ है। आपने एक बात हमें कही थी, अगर पिछली कड़ी को याद करें, कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी फीलिंग जो है वो ठीक है, अच्छी की फीलिंग है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई अनकंफर्टेबलनेस नहीं है, मतलब बिलीफ सिस्टम ठीक है। और अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ, कोई भी तरह की नेगेटिविटी है, चेक द बिलीफ सिस्टम। बहुत से लोगों ने किया है। अब ये बिलीफ सिस्टम जो है, जो जिस पर मैं काम कर रही थी, वो वर्क कैसे करता है, यू नो, चेंज कैसे करना है, ये तो एक लंबा प्रोसेस होगा और इस पर हम डेफिनेटली, मतलब इस पर डीप में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये बिलीफ सिस्टम, जैसे कोई भी है, अगर मेरा कोई भी बिलीफ है, वो मेरी हैप्पीनेस को कैसे ले लेता है?
1: जो बिलीफ सिस्टम है उसी के आधार पर ही थॉट्स क्रिएट होंगे ना। लेट्स से चलो हमने पिछली बार कई बड़े बड़े बिलीफ्स, छोटे छोटे सिंपल बिलीफ देखते हैं। इवन अ सिंपल बिलीफ लाइक आज के समय में चिंता होना तो नेचुरल है, यू नो, कि तनाव तो नेचुरल है। अब ये मेरा बिलीफ है कि तनाव तो नेचुरल है, तो सारा दिन में जितनी बार भी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी या टेंशन या वरी, आई विल एक्सेप्ट इट एज
0: ये कुछ गलत नहीं हो
1: ये
0: रहा है,
1: ये गलत नहीं हो रहा है, ये नेचुरल है,
0: डिस्टर्बेंस इज ओके,
1: इज ओके। एंड फिर मैं अपने आप को छोटी छोटी बातों में टेंस्ड होना भी परमिशन दे देती हूँ कि इट इज ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम अलाउड टू स्मोक, तो फिर मैं सोचूंगी थोड़ी उसके बाद, स्मोकिंग तो मेरे लिए ठीक है, इट्स अलाउड टू डू इट, तो आई डू इट वेरी इजिली। लेकिन जो नहीं करता है तो वो नहीं करता है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्मोक। सिमिलरली इफ आई क्रिएट अ बिलीफ सिस्टम, पीस इज नेचुरल। अभी तक मेरा बिलीफ सिस्टम था टेंशन इज नेचुरल,
0: एंगर, छोटे छोटे एंगर तो ठीक है ना।
1: तो अगर मेरा बिलीफ सिस्टम है एंगर इज नेचुरल, तो फिर मैं गुस्सा करने से पहले दो बार सोचूंगी तो नहीं ना, एंगर इज नेचुरल, तो थॉट कैसी क्रिएट होगी वैसी ही होगी, फिर वो आगे बिहेवियर में आएगी। अब एक्सपेरिमेंट करके देखें कि एंगर इज नेचुरल के साथ हम कहां पहुंचे। गुस्सा करने की हमें आदत सी पड़ती गई और हर बार करके मेरे अंदर ही वो दर्द क्रिएट हुआ। एक दिन के लिए एक्सप्लोर करें एक नया बिलीफ सिस्टम, एंड दैट इज पीस इज नेचुरल। और कैसे पता चलेगा विच वन इज नेचुरल, जो हमें कंफर्टेबल फील करता है। आज भी कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन हर एक को अच्छा क्या लगता,
0: पीस, शांति मांग ही रहे होते ना, ढूंढ रहे होते।
1: तो अभी हम शांति मांग रहे हैं, ये भी तो एक बिलीफ है कि शांति हमें मांगनी है, शांति हमें कहीं बाहर से, खुशी भी हमें बाहर से ढूंढनी है। अब मेरा ये बिलीफ है कि खुशी बाहर मिलती है, तो मैं ढूंढूंगी कहाँ, बाहर ही ढूंढूंगी। मैंने ये तो बिलीफ कभी क्रिएट ही नहीं किया कि खुशी तो मेरी अपनी इनर स्टेट ऑफ बीइंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पर डिपेंडेंट है। तो जिस क्वालिटी का बिलीफ, उसी क्वालिटी के फिर थॉट क्रिएट होती। तो एक दिन हम एक सिंपल न्यू बिलीफ से एक्सप्लोर करते, पीस इज नेचुरल, एंगर इज अननेचुरल, लेकिन एंगर पे नहीं मनन करेंगे, तो हम कहते पीस इज नेचुरल, पीस इज माय नेचर, हैप्पीनेस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज माय नेचर। तो ये बिलीफ लेकर अब सारा दिन चलो, तो एक दिन में मैजिक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ हमारे थॉट पर वर्क करेगा। अब मुझे अगर गुस्सा आएगा, या अगर मैं गुस्सा, सी अभी तक गुस्सा आएगा तो गुस्सा आएगा नहीं, अब अगर मैं गुस्सा करूंगी तो आई विल इमीडिएटली टेल माई सेल्फ गुस्सा मेरा नेचुरल नहीं है।
0: ओह अमेजिंग, यू नो, गुस्सा आएगा मतलब कि क्योंकि कोई और कर रहा था,
1: सी हाउ डीप रूटेड इट इज, हाउ डीप रूटेड इट इज, बट नाउ इमीडिएटली वी कैन चेंज। गुस्सा अब जब हम क्रिएट करेंगे तो हम तुरंत अपने आप को कहेंगे दिस इज नॉट नेचुरल। अभी तक पहले मैं कहती थी ये तो करना ही था ना, तो उसके लिए भी जस्टिफिकेशन था मेरे पास करने के लिए, तो मैंने वो संस्कार पर वर्क नहीं किया। अब हम कहेंगे कि नहीं, मुझे आया, लेकिन स्टिल दिस आई कुड हैव डन विदाउट दिस, इनफैक्ट आई वॉन्ट टू डू इट विदाउट दिस। तो धीरे धीरे मेरा अटेंशन होगा उस पर, धीरे धीरे मेरा थॉट चेंज होगा, बट फिर ऑटोमेटिकली वो मेरे बिहेवियर में आएगा। लेकिन गुस्सा जायज है, गुस्से से ही काम होगा, गुस्सा तो नेचुरल है, तो देन माय थॉट प्रोसेस विल वर्क ओनली
0: अकॉर्डिंग। अगर हम देखें बिलीफ जो है वो एक थॉट ही तो है,
1: इट इज बट अ
0: वेरी इतना रीस्टेटेड,
1: इट इज अ डीप रूटेड फाउंडेशन थॉट जिसके ऊपर से बेसिस पर
0: छोटे छोटे और थॉट निकलते हैं। ओके,
1: इसीलिए वो फंडामेंटल की क्वालिटी और भी ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट होती कि उसके आधार पर ही ये क्रिएट होंगे। अब जो इस थॉट को लेकर या इस बिलीफ को लेकर चलेंगे, एंगर इज नॉट हेल्दी या एंगर के बिना काम हो सकता है, तो उनको जब भी गुस्सा आएगा वो तुरंत किसको देखेंगे, अपने को देखेंगे, अपने पर काम करेंगे और धीरे धीरे वो बिलीफ फिर उनकी डेस्टिनी बन जाएगा कि एंगर के बिना प्यार से काम करेंगे, हो सकता है, लेकिन जब तक उधर ही चेंज नहीं किया इट विल नॉट वर्क।
0: अगेन आई थिंक इट शुड बी बिलीफ, my belief leads me to destiny,
1: yes,
0: basically.
1: It is. Belief creates thoughts and then thoughts leads to destiny, absolutely.
0: तो समवेयर ये जो बिलीफ बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, कई सारे हमने बिलीफ लेकर देखे थे, उन्हें एक्सप्लोर किया था, आगे आने वाली कड़ियों में भी हम करेंगे कि क्योंकि हम हैप्पीनेस इंडेक्स को देख रहे हैं कि दिन भर में मेरा इंडेक्स जो है वो स्टेबल है या कहाँ कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है। जो हमने कई चीजें देखी थी जो बिलीफ सिस्टम ही थे वो एक्चुअली कि मेरी हैप्पीनेस किस किस पर डिपेंड कर रही थी ना, जब मैंने ये कहा कि बाहर से आनी है तो मैंने देखा कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ मुझे हैप्पीनेस मेरे डिपेंड करती थी। मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया, आई डोंट नो डीप रूटेड गया कि नहीं, लेकिन ये एक थॉट, एक नया बिलीफ सिस्टम बन गया एक्चुअली कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है।
1: अभी तक था साधनों से खुशी मिलेगी, अब हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है। दो बिलीफ सिस्टम,
0: साधन है या नहीं है,
1: डिपेंडेंसी नहीं है उस पे। मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी अगर मेरे पास मोबाइल आज नहीं है, मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी मेरा मोबाइल अगर बाकियों के हिसाब से थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का है। साधन यूज करने के लिए है, लेकिन अगर वो साधन ही मुझे डिस्टर्बेंस का कारण बने, तो वो बने तो लाए तो हमने सोचा था कि ये खुशी देंगे, लेकिन ये ही और ही। तो जैसे ही हम अपने बिलीफ्स को चेक करेंगे, अब नए बिलीफ के साथ जीवन को जीने की कोशिश करें कि साधन है यूज करने के लिए, साधन कंफर्ट देते हैं, खुशी नहीं क्रिएट करते। नाउ एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद दिस, एंड फिर अगर कंफर्टेबल लगे तो फिर उसको हम कह सकते हैं दिस इज द ट्रूथ
0: एंड दिस इज माय न्यू बिलीफ सिस्टम,
1: दिस इज द ट्रूथ। एक है बिलीफ, एक है ट्रूथ
0: जो शाश्वत है, जो सच है,
1: जो हम कहते हैं ना, हमने कई बार कहा कि राइट और रॉन्ग एक्चुअली क्या है, तो राइट और रॉन्ग, यस वी से इट्स रिलेटिव, बट एक्चुअली इट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक मी कंफर्टेबल, दैट इज ट्रूथ फॉर मी। तो जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड इफ इट मेक्स मी कंफर्टेबल, देन इट्स नो लॉन्गर अ बिलीफ, दिस इज द ट्रूथ फॉर मी, यस दिस इज व्हाट इज नेचुरल, फिर हमारे जीवन के वो जो फाउंडेशन लेयर है वो थोड़ी सी सेट होती जाएगी।
0: समवेयर वी रियली रीचिंग आउट टू द क्रक्स कि क्या है वो चीज जो अभी भी हम कहते थे ना कि वो फीलिंग या वो थॉट इतना स्ट्रांग होता है कि वो नहीं चेंज हो पा रहा, क्योंकि डीप रूटेड मतलब जीवन भर हम उस पर चले होते हैं। एक और अब बिलीफ सिस्टम है या एक ट्रुथ है, क्या है, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस उस पर डिपेंड कर रही होती है, या हम कहते हैं कि वी गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हेन वी टेक अ ब्रेक, व्हेन वी गो ऑन हॉलीडेज, या हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से होता है, चाहे वो फिल्म के माध्यम से है, या किताब पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे नॉवल पढ़ रहे हैं, यू नो दिस एक्चुअली गिव्स मी, व्हाई वी go for movies,
1: yeah,
0: you know, why we watch television also?
1: Why do we watch?
0: Because it gives us somewhere, you know, we feel good.
1: See, why do we watch television, yeah, why do we watch a movie, yeah, why do we want to go for a holiday? Ki kahin na kahin jo mere thoughts chal rahe hain unki quality bahut pleasant nahi hai mujhe, then I say
0: take a break. You know, every time you're stressed out, go and take a break.
1: Absolutely. To take a break kya karna hai actually mujhe, main chahti hu ki mere wo wale jo thoughts hain वो चले जाए, एंड आई कैन यू नो बी मेंटली वेरी रिलैक्स्ड। लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये सब करने से, इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू गो फॉर अ हॉलिडे, टू वॉच अ मूवी, टू गो वॉच टेलीविजन, व्हाटएवर, लेकिन विद फुल अंडरस्टैंडिंग कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट है और इसका क्या क्या फायदा है। हम सोच रहे हैं ये करने से खुशी मिलेगी, वो हमें अपने आप के अंदर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये करने से खुशी मिलती है आपको, खुशी आप क्रिएट कर पाते हैं। एक्चुअली अगर आप थोड़े दिन ध्यान से अपने आप को देखेंगे, तो जितनी देर हम कुछ और करते हैं हमारा मन वो हमारी थॉट, सपोज आज मेरा ऑफिस में किसी के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन माई माइंड, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा मैं कल, अब मैं घर आई मैं टीवी ऑन कर दिया, राइट, टीवी में कुछ और टोटली डिफरेंट आई एम वॉचिंग, तो उतनी देर के लिए वो थॉट्स जो मेरे वो चली गई. तो क्योंकि वो थॉट्स चली गई तो मुझे लगा वो टीवी का वो प्रोग्राम मुझे खुशी दे रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम ने क्या कर दिया था, मेरी वो जो पेनफुल वाली थॉट्स थी सारी, वो पेनफुल वाली थॉट्स थोड़ी देर के लिए वो रुक गई. तो मुझे तो आई फील बेटर, क्योंकि वो पेनफुल वाली थॉट्स तो मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी, तो वो थोड़ी देर के लिए आई फॉरगॉट अबाउट इट. तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम ने मुझे खुशी दी. आई हैव टू बी वेरी क्लियर, प्रोग्राम ने मुझे खुशी नहीं दी, वो थॉट्स को थोड़ी देर के लिए आउट कर दिया. जैसे ही प्रोग्राम ऑफ होगा वही वाली थॉट्स
0: वापस आने वाले हैं.

0: कितनी देर प्रोग्राम देखेंगे, कितनी देर टीवी देखेंगे, कितनी बार हॉलिडे पर जाएंगे. सो दिस इज जस्ट अ सिंपल वे ऑफ अवॉइडिंग द इनर वर्क, क्योंकि हमें लगता है बस ये थोड़ी देर देख लिया वो सारी बातें भूल गई. एंड हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं, कोई लोग उसके लिए शॉपिंग जाते हैं, कोई लोग उसके लिए
1: दूर करने के लिए
0: भूलने के लिए. सी दैट इज द डिफरेंस. एक है भूलना, एक है दूर करना, एक है उसको खत्म कर देना. तो कोई भी ऐसे माध्यम यूज करने से वो खत्म नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, क्योंकि एक और मीडियम आपके माइंड के ऊपर ओवर पावर करता है. तो एक यस द बेनिफिट इज देयर कि मैं थोड़ी देर के लिए अपनी वो थॉट्स को भूल जाती हूँ, लेकिन साथ साथ क्या होता है, एक पर्टिकुलर मीडियम मेरे माइंड के ऊपर ओवर पावर कर देता है. एक तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ ये सीखने की कि कैसे मैं अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लूं, ताकि मेरा मन के ऊपर कोई भी चीज हावी नहीं हो. लेकिन जितनी देर हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी भी दिन अपने आप को वॉच करिएगा कि आपका माइंड टोटली उसके अंदर उसके साथ हो जाता है. अगर वहां कोई रो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर है, वहां कोई लड़ रहा है उसका इफेक्ट
1: कंप्लीटली हावी हो चुका होता है.
0: अब ये क्या हो रहा है एक्चुअली कि मेरे मन की अपनी जो पावर है थॉट क्रिएट करने की, वो फॉर द टाइम बीइंग पूरी बंद हो चुकी है. ये सिचुएशन जो इस टीवी स्क्रीन पर आ रही है, ये सिचुएशन मेरे मन की थॉट्स को क्रिएट करती है. यहां मेरा बिलीफ सिस्टम बनता है कि सिचुएशंस क्रिएट थॉट्स. दिस इज वेयर, बिकॉज आई सी इट हैपनिंग प्रैक्टिकली, कि मैं अपने मन का कंट्रोल पूरी तरह से उस सिचुएशन को, जो अभी तो अक्रॉस द स्क्रीन है, लेकिन उस सिचुएशन को पूरी तरह से दे देता हूँ. वो रोते हैं तो मैं रोता हूँ, वो हंसते हैं तो मैं हंसता हूँ. तो इतना मेरा मन पूरे उसके अंदर एनग्रोस्ड हो जाता है, तो उतनी देर क्या होता है, मेरी माइंड की क्रिएटिविटी, जो हम कह रहे हैं कि हमारे मन की इतनी पावर है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सिचुएशन, हमारे माइंड के अंदर पावर है अपने आप की थॉट क्रिएट करना. कि भले कोई सारे भी रो रहे हो मेरे आसपास, मेरे मन के अंदर फिर भी ताकत है कि मैं उस समय स्टेबिलिटी की थॉट क्रिएट कर सकूं. लेकिन जितनी देर ये हम टेलीविजन या मूवी देख रहे हैं, उतनी देर हमने क्या किया, अपनी मन की पावर को दबाते गए. तो एक चीज है जिसको हमें धीरे धीरे से एक्चुअली एम्पावर करना है, लेकिन हम उसको रोज और ही दबा देते हैं एंड रोज उसकी क्रिएटिविटी को फिनिश करते हैं.
1: क्रिएटिविटी टू क्रिएट माय ओन थॉट्स,
0: क्रिएटिविटी टू चूज माय ओन थॉट्स. क्रिएट तो हम कर ही रहे हैं. तो एक तरफ से हम वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, क्रिएटिविटी को अवेयरनेस के साथ हम अपनी थॉट्स क्रिएट करें, और दूसरी तरफ से हम अपनी ही क्रिएटिविटी को खत्म करते जाते हैं. तो जहां तो हम एक तरफ से बात करते कि कोई भी सिनारियो में हमें डिटैच्ड होकर रहना है, ताकि सिचुएशन का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, पर अभी तो टीवी और मूवी का ही प्रभाव इतना पड़ रहा है,
1: पर उसमें मजा आ रहा होता है ना, उसमें वी गेट सो इन्वॉल्व्ड एक्चुअली. चाहे वो नॉवल की बात करते हैं, किताब की बात कर रहे हैं, या फिर हम मूवी की बात कर रहे हैं या सीरियल्स की बात कर रहे हैं.
0: यस,
1: तो एक स्टिमुलेंट है, एक कहीं ना कहीं व्हाई वी लाइक इट सो मच,
0: बिकॉज इट्स अ स्टिमुलेंट जो मेरे अंदर, एक तो मेरी सी वो मेरे इनर वर्क को बंद कर देता है. आई डोंट हैव टू डू एनी इनर वर्क. जैसे कि मेरे सोचने का काम
1: वो करने लगता
0: है, मुझे नहीं करना,
1: वो बने बनाए थॉट्स मुझे दे रहा है पैक कर करके.
0: सी नाउ दिस इज अ गुड वन, कि वो बने बनाए मुझे दे रहा है. अब यही थॉट प्रोसेस,
1: खाना नहीं बना रहा है मुझे पैक कर करके खाना मिल रहा है. वाह, यस.
0: तो मुझे, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर. समवन एल्स इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, क्योंकि वो समवन एल्स हैज टेकन ओवर माय होल माइंड पावर. तब हम कहते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए,
1: सारे इमोशंस को जी लिया. yes. एक बार किसी ने मुझे कहा कि मैं इस फिल्म में इतना खुश हुआ क्योंकि मैंने सारे इमोशन को जिया.
0: अब क्या, लेकिन विच इज ओके, आप देखें वो सारा, बट ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ही इफेक्ट फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है. अभी तो थोड़ी देर टीवी के एक्टर्स थे, लेकिन फिर जब रियल लाइफ एक्टर्स के साथ होंगे हम सारा दिन, तब भी अगर मेरे माइंड ने वो पावर गिव अप कर दी है कि आई गो इनटू माय लाइफ देन विद दिस बिलीफ सिस्टम कि सिचुएशंस मेरी थॉट्स को क्रिएट करती हैं, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर वो पावर धीरे धीरे खत्म होती जाती है. व्हाई डू वी से इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, हम कहते हैं ना इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया कितना है आज के बच्चों पर. सो व्हाट इज इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया,
1: इट मींस यू नो लाइक

0: वो इतना स्ट्रांग आपका हैबिट बन जाती है
1: क्योंकि you know, आपके माइंड की थॉट को क्रिएट कर रही है ना. आप एक पर्टिकुलर सीरियल एक
0: कार्टून देख रहे हैं बच्चे कंटिन्यूअसली.
1: अब कार्टून में भी आज अगर वायलेंस है यू नो कार्टून में भी वायलेंस हो गया है तो मैं वायलेंस देखता जा रहा हूँ. इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटिंग थॉट्स. अब वो वायलेंस की इन्फॉर्मेशन लेते गए उसी क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट होती गई और हर रोज देखते हर रोज देख रहे हैं तो वो मेरा क्या बनता जा रहा है. तो वही मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रहा है वही मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आता जा रहा है. तब कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया.
0: ओह वी रियली नीड टू सी एक्चुअली इफ आई रिपीट इट विल बिकम मोर कंफर्टेबल फॉर मी. कि मैं आज कोशिश ये कर रही थी कि अपने थॉट्स खुद क्रिएट करो राइट. देखिए मेरे बिलीफ सिस्टम्स या वो बिलीफ जो मेरे साथ चल रहा था वो एक थॉट इतना स्ट्रांग होता था कि उसको मैं ओवरपावर नहीं कर पा रही थी. नया थॉट नहीं क्रिएट कर रही थी. और आज मैंने अपने आप को ऐसी सिचुएशंस ऐसे माध्यम दिए चाहे वो टेलीविजन है चाहे वो सीरियल है फिल्म है या नॉवल है कि उस हर सिचुएशन ने मेरी क्रिएट करने की थॉट क्रिएट करने की सही थॉट चूज करने की जो पावर है उसको कुंद कर दिया.
1: Absolutely. उसको खत्म कर दिया. एब्सोल्युटली. एंड उसमें भी अब क्या हो रहा है
0: क्वालिटी.
1: इट इज हार्मफुल यस. एंड इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग व्हेन क्वालिटी क्या है जो आप रोज देख रहे हैं. जब हमें ये समझ में आता है कि ये मीडिया हमारे थॉट पावर को कितना डीप इन्फ्लुएंस कर रहा है तब और भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम किस तरह का प्रोग्राम किस क्वालिटी का प्रोग्राम अंदर फीड कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी थॉट्स को क्रिएट करना है. अब मेजॉरिटी जो हमारे सीरियल्स हैं या सोप ऑपरा है उसमें हर एक दूसरे को या तो चीट कर रहा है कोई किसी का विश्वास तोड़ रहा है कोई किसी के अगेंस्ट मैनिपुलेट कर रहा है क्योंकि दे विल से दिस इज व्हाट सेल्स. अगर सब कुछ हम उसमें अच्छा अच्छा दिखाएंगे तो हु इज गोइंग टू वॉच.
0: और ऊपर से कई बार तो ये भी कहा जाने लग गया कि जो हो रहा है समाज में उसी का आईना है.
1: या लेकिन अगर कहीं थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है सपोज लेकिन इतने सब लोग अगर उसको रोज देखते जाएंगे एंड दैट इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन माई थॉट्स तो कहीं ना कहीं वो मेरे घर में धीरे धीरे
0: होना शुरू हो जाएगा
1: क्योंकि वो मेरे मन में होना शुरू हो गया. टीवी का इम्पैक्ट घर पे नहीं है. टीवी का इम्पैक्ट हर एक के मन पर है और फिर वो हर एक की सोच वैसे बन. अगर मैं रोज एक सीरियल देखूं जिसमें मुझे ये दिखाई दे कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए आज तो घर के अपने ही परिवार वाले घर वालों को धोखा दे रहे. अगर मैं रोज रोज रोज ये देखूं विल इट नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन माय थॉट.
0: डेफिनेटली. इवन न्यूज को भी अगर हम देखते हैं हर रोज चाहे वो पात्र बदल जाए चाहे वो लोग बदल जाए लेकिन वो न्यूज इतनी यही वाली हिट कर रही है
1: वायलेंस वाली फियर वाली तो वो मेरी थॉट्स पर क्रिएट होगा. अगेन लेट्स ब्रिंग इट बैक टू दिस प्रोग्राम. क्यों अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज? क्योंकि यहाँ हम एक डिफरेंट माइंडसेट की बात कर रहे हैं. अब जो एक बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे थे कि एंगर इज नेचुरल टेंशन इज नेचुरल फिर सुन सुन के क्या हुआ उनकी थॉट पर उसका इफेक्ट पड़ा. एंड मेनी पीपल सेड लेट अस एक्सप्लोर कि गुस्से के बिना भी काम हो सकता था लेकिन रोज अगर सीरियल देखेंगे जिसमें गुस्से से काम हो रहा है
0: तो गुस्से पिक्चरें अभी तक यू नो लाइक ये जो बात है कि अंडरडॉग का जो वो होता है कि उसका जो है उसका वायलेंस उसका दुख उसका
1: सब इट इज अ डायरेक्ट
0: ग्लैमराइज किया जाता
1: है. एब्सोल्युटली. तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रूफ कि जो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपके थॉट प्रोसेस को कितना डीप इन्फ्लुएंस करता है.
0: यू नो इनफैक्ट आई हैव दिस मेजर बिलीफ सिस्टम कि जो पैसा है वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाता है. पैसा इज सिन. And this is what the belief system had because of the films.
1: True, but which is not true. But actually,
0: I understood it now.
1: Yeah. So this is not true. तो कहीं ना कहीं वो हमारा belief system बहुत influence होता है. तो भले आज हम TV देख रहे हैं, movies देख रहे हैं, और फिर हम सिर्फ अकेले नहीं देख रहे, हमारे साथ हमारे बच्चे, जितने छोटे हैं, उतना उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा क्योंकि उनकी तो अभी पावर ऑफ द माइंड डेवलप हो रही है कि कैसे थॉट्स क्रिएट करें.
0: और बड़ी बात आज यहाँ क्लियर ये होती है शिवानी कि ये हम सब कहते आ रहे हैं कि टीवी का इन्फ्लुएंस बहुत खराब है, फिल्म्स नहीं देखनी चाहिए इतनी, टीवी इतना मत देखो. क्यों कहते हैं हम माँ बाप अपने बच्चों को? क्या हमें रीजन पता था? लेकिन आज अपने लिए भी तो रीजन पता चला. हम कहते हैं हम बड़े हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो देखना ही पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशन तो लेनी है ना, हमें न्यूज तो देखनी है ना, हमें ये तो करनी है. और हम सिर्फ कहने के लिए कहते आ रहे थे आज तक अपने बच्चों को. आज अगर हम समझ के अपने ऊपर और बच्चों के ऊपर एटलीस्ट थोड़ा सा काम करना शुरू करें तो टीवी से हम निकल तो नहीं पाते कंप्लीट.
1: नहीं, हम बच्चों को कहते हैं टीवी मत देखो क्योंकि हमें लगता है बहुत ज्यादा टाइम वो उसी के सामने स्पेंड कर रहे हैं, उतना टाइम उन्हें पढ़ना चाहिए.

0: धीरे धीरे धीरे उसको वापस उस स्टेज पर लेकर आना पड़ता है। तो टीवी का इम्पैक्ट, मीडिया का इम्पैक्ट हमें समझना पड़ेगा कि वो हमारे माइंड की क्रिएटिविटी को धीरे धीरे, क्रिएटिविटी इन द सेंस पावर टू चूज माय थॉट्स, उस पर इम्पैक्ट डालता है। एंड टुडे एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत
1: तो
0: कुछ,
1: हम सब इतने अच्छा। अनदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू टॉक इज दैट ये तो एंटरटेनमेंट वो है जो मुझे सचमुच में आई वाज गेटिंग इन्वॉल्व्ड, यू नो, मे बी सीरियल्स थे या फिल्म्स थे। लेकिन आज जो रियलिटी शोज के नाम पर हमें देख परोसा जा रहा है और हम उसे देखने पे मजबूर हैं, क्या हमारी हैबिट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम स्विच में नहीं ऑफ कर पाते उसको? सोचते जाते हैं, हम बोलते जाते हैं ये क्या दिखाया जा रहा है, ये ऐसा, ये मतलब सच के नाम पे क्या दिखा रहे हैं, शादी के नाम पे क्या दिखाया जा रहा है, रियलिटी शोज में बच्चों के साथ किस तरह का उनका परफॉर्मेंस है, मतलब कितना एक ऐसा सिनेरियो सामने आता है जो हम सबको तकलीफ दे रहा है,
0: लेकिन फिर भी हम सब बैठ कर देख रहे हैं,
1: डिस्कस कर रहे हैं उसको।
0: वो तो फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यू नो, आज का रात का एपिसोड, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वॉक पर जब आप जाएंगे, जॉगिंग जाएंगे या ऑफिस जाएंगे, वो आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो वो नेगेटिविटी सिर्फ सुनने तक और देखने तक नहीं, लेकिन उसके बाद उसके बारे में इतनी बार,
1: तो हमारा एडिक्शन ये हो गया है टीवी का कि हम ना चाहते हुए भी उसे देख रहे हैं।
0: समवेयर वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अपने अंदर क्या फीड कर रहे हैं। आज बहुत सारी बातें जो हम समझते थे कि हमारे लिए गलत है या सोसाइटी की मर्यादाओं के हिसाब से हमने कहा कि दिस इज, आज उन्हीं बातों को बहुत ओपनली बात भी की जा रही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसको कहीं ना कहीं एक सोशल एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है, यू नो, कि दिस इज ओके। एंड इनफैक्ट उसको इतना, जब दुनिया से एक्सेप्टेंस मिल रहा है, उसको इतना ग्लैमराइज किया जा रहा है, सारे उसको प्रेज कर रहे हैं, तो हर एक का माइंडसेट कैसा क्रिएट होता जाएगा, दिस इज ओके, पीपल आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। एंड जितना हम उस तरह का इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डालेंगे, हमारी सोच की क्वालिटी क्या होती जाएगी, हमारा राइट्स और रॉन्ग, जो हम कभी कभी सोचते तो थे कि ये राइट है या ये रॉन्ग है, अब तो शायद वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोचना नहीं पड़ेगा।
1: और सबसे बड़ी बात, हम ना देखना भी जाएं तब भी हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमें इम्पैक्ट का नहीं पता, हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट माय माइंड, हम कहते हैं एक बार देखने में क्या हर्ज है, पता तो चले चर्चा किस बात की हो रही है, क्या है ऐसा इसमें, देखें तो क्या बात हो रही है, एंड देन वी स्टार्ट, यू नो, अप्रूविंग।
0: Yes, we do. And then our mind starts taking that, na? वो हमारे अंदर फिर, आज आप बच्चों का प्रोग्राम देख लो, तो बच्चे उसमें किस तरह से ड्रेस अप कर रहे हैं, बच्चे उसमें किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने वो गीत को कितनी बार देखा होगा कि वो लोग उसी तरह उसको इनैक्ट कर पा रहे हैं। एंड वी से इट्स ओके, ये बच्चों का प्रोग्राम है, तो हमारे घर में बच्चे बैठ कर उसको देख रहे हैं, कल अगर बच्चे वही कपड़े पहनना चाहते हैं, फिर हम उसके लिए इतना बड़ा इश्यू बना दें घर पे, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो इन्फ्लुएंस तो हमने दिया था। और वो बच्चे ने देखा कि जब सामने उस आर्टिस्ट ने इस तरह के कपड़े पहने, इस तरह का परफॉर्मेंस दिया, उसको सबसे इतनी प्रेज मिली, एवरीवन इज लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस कि मुझे प्रेज चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, और जब मैंने देखा इस चीज को एक्सेप्टेंस मिलती है, व्हाई विल आई नॉट ट्राई टू कॉपी इट इन माय लाइफ, तो फिर आई विल आल्सो वांट कि मुझे ऐसे वाले कपड़े पहनने हैं, मुझे ये सीखना है, मुझे ऐसे, बट समवेयर वी आर इंस्ट्रूमेंटल, और ये सब कुछ खुशी के लिए हो रहा है।
1: बॉटम लाइन वॉज खुशी,
0: खुशी के लिए हो रहा है, तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
1: इंडस्ट्री इज गिविंग मी हैप्पीनेस, आई हैव टू रियली रियली चेक दिस
0: सिस्टम। एंड इसको कहीं ना कहीं घर में एक कल्चर क्रिएट करना होगा कि क्या हमने वॉच करना है और कितना उसको वॉच करना है और कितना उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट।
1: इनफैक्ट अब हमें टीवी देखना ही है, हमें पिक्चर देखनी है, कम से कम हम ये तो तय कर सकते हैं कि हम क्या देखें, यू नो, दिस इज समथिंग विच वी रियली हैव टू थिंक। एंड नाउ अगर आपको बच्चों को भी मना करना है कि कितना टीवी देखना है, क्या देखना है, खुद को भी कहना है, हस्बैंड को भी कहना है, यू हैव अ पॉइंट, यू नो, देयर इज अ लॉजिक। टुडे यू गेट दैट लॉजिक अपने लिए भी, अब आप कन्विक्शन से कह पाएंगे, कन्विक्शन से तय कर पाएंगे कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। कोई सवाल, कोई मन में बात उठती है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ चाहते हैं कि शेयर करें, कोई सजेशन भी उठ रहा है, स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555, हमारा ईमेल आईडी

0: है omshanti@bkmail.org।
1: सर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं एक बहुत परिवर्तन की बात है और एक ऐसा बिलीफ सिस्टम कि अभी तक ये था कि टेलीविजन ठीक है, मीडिया है, उसका इन्फ्लुएंस हाँ नहीं देखना चाहिए, आपने कहा कि आंखें खराब हो जाती हैं शायद या टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हाउ मच इट्स एक्चुअली इम्पैक्टिंग, हमें कितना हमारा पूरा माइंड का कंट्रोल पूरी सिचुएशंस पे जा रहा है और हमारी हैबिट बनती जा रही है, आने वाले जो सिचुएशंस हैं उन्हें हम अपने कंट्रोल देते जाते हैं फिर तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक। और आपसे हम विदा लेते हैं लेकिन यही कहेंगे कि आप इस श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे हम और कई बिलीफ सिस्टम्स को देखेंगे किस तरह से वो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे मैं बदल सकता हूँ उन्हें। आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। ऐसा नहीं लगता कि ओम शांति अब एक मंत्र बन गया है, एक ऐसा मंत्र जो हर तरफ सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ ये एहसास हमें होता जा रहा है। आपका इतना सारा प्यार हमारे पास पहुंच रहा है, आपके फोन कॉल्स, आपके ईमेल्स पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि एक पूरे परिवार की तरह हम जुड़े हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं, वो आत्मा होने का एहसास हमें जोड़ता है। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं, आप सबका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज एक बार फिर इस सफर को शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, आज की बातचीत शुरू करें और एक नए सफर पर चले, उससे पहले थोड़ी सी बात ये करना चाहेंगे कि जो एक मैं बोल रही हूँ कि जिस तरह से परिवार हमारा जुड़ता जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतने कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए।
1: मुझे लगता है सभी तरफ से, पूरे इंडिया से भी बाहर से, सभी देशों से और सभी एज ग्रुप, सभी रिलीजन्स, सो इट्स लाइक अ बिग फैमिली, यू नो, एवरीवन हैज जस्ट जॉइंड इन एंड इट्स सो वंडरफुल टू हैव एवरीवन टुगेदर एंड एवरीवन जस्ट सेंड्स इन लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स व्हिच वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि सभी बड़े इतनी दुआएं भेजते हैं, इतनी गुड विशेस भेजते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल चीज जो लगती है कि मेजोरिटी आर फीलिंग कि उनके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। कई हमें ये भी लिखते हैं कि यू नो, कोई हमारे घर में ट्रेजेडी हो गई या कुछ ऐसी बात थी या कुछ एक अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे थे, और रेगुलर प्रोग्राम देखने से और मेडिटेशन का अभ्यास करने से दे हैव बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट एंड विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, यू नो, कि इट जस्ट गोज टू प्रूफ कि जहाँ आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो तो परिवर्तन कितना सहज है। जो आज तक हम सोच रहे थे नहीं, अपनी आदतों से मुक्त होना कितना मुश्किल है, वो कितना सहज अब लगने लग गया है।
0: अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगी मैं, हमारे साथ भी दर्शक भी बहुत बार ये सोचते हैं कि ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है, जो कितना सहज रूप से, जिसको इतना कॉम्प्लिकेटेड समझते थे, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लगती थी, इतनी आसानी से सॉल्व होती नजर आ रही हैं, तो आप इतनी छोटी सी हैं, इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे समझ पाई हैं और कैसे उनके इतने बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर पा रही हैं, तो ये एक पहेली सा अभी भी बहुत से दर्शकों के मन में है।
1: हम शुरू से यही कहते आए हैं कि ये ज्ञान सारा जो हमें मिल रहा है, ये डायरेक्ट इस समय, it's not just to say it but it's something to be experienced, ke ye direct निराकार परमात्मा जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो परमात्मा स्वयं आकर इस समय हमें ये ज्ञान देते हैं। आज दिन तक महान आत्माओं ने हमें ज्ञान दिया, संत आत्माओं ने ज्ञान दिया और जो बहुत श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल लगता था। जिन्होंने हमें ज्ञान दिया उनके लिए वो बहुत सहज था और वो अपने जीवन में धारण कर पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शायद समझने में मुश्किल था, शायद हमारी बुद्धि उतनी शार्प नहीं थी उसको समझने के लिए। लेकिन जब परमात्मा डायरेक्ट आकर हमें ज्ञान देते हैं तो वो सुप्रीम टीचर है, और सुप्रीम टीचर का अर्थ ही है जो मुश्किल से मुश्किल बात को बहुत सिंपल कर देते हैं। तो जो आज दिन तक मुश्किल लगता था कि आत्मा का अनुभव कैसे करे, यू नो, बिकॉज आई हैड ऑल्सो रेड सो मेनी बुक्स एंड लिसन टू सो मेनी पीपल, बट वो सारा कुछ सुनने के बाद कहीं ना कहीं पूरा एक और एक कंफ्यूजन हो जाता था और लगता था समझ में तो आ गया, अनुभव कैसे करते हैं। तो वो आत्म अनुभूति एक कॉन्सेप्ट ही बन के रह गया कि ये पता नहीं कब होगा, और शिव बाबा ने आकर उसको इतना सिंपल कर दिया कि आप हो ही आत्मा, मतलब आप सारा दिन तो अपने आप को अनुभव कर रहे हो, अब सिर्फ जब आप अपने ओरिजिनल संस्कारों को अनुभव करोगे यू विल रियलाइज दैट इट्स सो सिंपल, इट्स सो ब्यूटीफुल। और फिर सबसे बड़ी बात तो परमात्मा की खोज, हम सब भगवान को ढूंढ रहे थे लेकिन हमारी कैपेसिटी में कहाँ था भगवान को ढूंढना, वो तो भगवान खुद ही आकर तो अपना परिचय दे सकता, तो वो परिचय तो कोई भी और नहीं दे सकता।
0: बिल्कुल, और जिस तरह से हम उन्हें परम पिता मानते हैं, तो पिता जब समझाता है तो अपने बच्चे को जब समझा रहे हैं तो उसी की भाषा में इतनी आसानी
1: और उस लेवल से, बिल्कुल उस लेवल से समझाते, और क्योंकि सत्य ज्ञान सुप्रीम टीचर सुप्रीम फादर आकर देते हैं और हमें वही बातें बताते हैं जो हम जीवन में धारण कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी जो हम जीवन में धारण नहीं कर सकते। और फिर बताते बताते चाहे वो बहुत हाई बात भी हो वो हमारे लिए इतना इजी कर देते हैं और बात को धारण करने का तरीका भी बता देते हैं. सो इट्स एवरीथिंग इज डन. तो परमात्मा कहते हैं अब सब कुछ आपको मिल गया, समझ भी मिल गई, अब एक कदम हिम्मत का आप बढ़ाओ, एक कदम हिम्मत का आपका और हजार कदम मदद के मेरे साथ में. दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. आज दिन तक हम एफर्ट कर रहे थे, इट वॉज नॉट कि हम अपने आप को चेंज करने की एफर्ट नहीं कर रहे थे, बट हम एफर्ट कर रहे थे, जस्ट मी द इंडिविजुअल. तो आत्मा तो इतनी डिस्चार्ज्ड है, वो एफर्ट करती भी तो उसको बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जब परमात्म शक्ति साथ में जुड़ जाती है तो एफर्ट थोड़ा सा, मदद बहुत सारी साथ में, तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी बहुत इजी हो जाता है.
0: सिस्टर शिवानी, एक और बात, अभी हमने क्योंकि राजयोग को भी हमारे बहुत से दर्शकों ने समझा, सब कुछ बाबा का परिचय मिला, संगम युग की बात आपने की कि ये वो युग है चाहे घनघोर अंधेरा है लेकिन फिर भी उसका साथ मिला है और ये सबसे सुंदर बात है. फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी जिंदगी जीते हुए सब कुछ समझते हुए भी वो जो जब इमोशंस सामने आ जाती हैं, जब सिचुएशन सामने आ जाती हैं, उनकी हैंडलिंग में जो अंदर का जो टर्मोइल है, जो इमोशन है, वो अभी भी कहीं रुकावट करता है, तो उसको थोड़ा और गहराई में जाने की अभी भी जरूरत लगती है.
1: हम जो कर रहे हैं, जैसे सारे भाई बहने कहते हैं कि हम रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं और उससे उनको बहुत प्राप्ति हो रही है, क्योंकि रोज जब हम परमात्मा द्वारा दिया गया इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनेंगे, और वो रोज पढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन है जो रोज डलती जाएगी, और उसको तरीका भी मिलेगा इम्प्लीमेंट करने का, और फिर अगर हम हिम्मत करते हैं तो हम उस तरीके को अपनाना शुरू करते हैं तो परिवर्तन तो आएगा ही. एक है कि हम इस परिवर्तन की यात्रा पर चलें. अब दूसरा है अगर आप इस यात्रा को और तीव्र गति से लेकर जाना चाहते हैं, अभी भी चल रही है और बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन इसको अगर आप और फास्ट स्पीड से लेकर जाना चाहते हैं और इसको आप और इजी बनाना चाहते हैं, यू नो इट्स बोथ द थिंग्स, इट विल बी फास्ट एंड इजी, तो मेडिटेशन का और गहरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेडिटेशन से हमें पावर मिलती है. हमें नॉलेज और पावर दोनों चीजें चाहिए. अभी हम प्रोग्राम सुनते हैं, हमें नॉलेज मिल रही है तो नॉलेज से एफर्ट हो रहा है, लेकिन पावर चाहिए और पावर के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है. अब कई भाई बहने हमें लिखते हैं कि हम कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता है या कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए सेंटर पर अगर समय निकाल कर जाएं, क्योंकि दैट इज वेयर इट विल बिकम वेरी इजी. सेंटर का एक वायुमंडल होता है, वहां बहने हैं जो हमें गाइड कर सकती हैं. हर सेंटर पे एक मेडिटेशन का रूम अलग से बना होता है.

0: होता है। तो पूरे सेंटर का तो वायुमंडल होता ही बहुत पावरफुल है, लेकिन वो जो मेडिटेशन रूम होता है उसमें भाई बहने रेगुलर बहुत वर्षों से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो दैट रूम इज लाइक अ चार्जर। आप जैसे ही उस रूम में बैठेंगे आपको एफर्ट कम और रिजल्ट ज्यादा मिलेगी। अब यही चीज को जब हम घर पे करते हैं तो घर का वायुमंडल थोड़ा सा यू नो इट्स गॉट एवरीथिंग इन इट, तो उसमें हमें एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिटेशन घर पे नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी हमें वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कनेक्ट करना। तो जब हम उस चार्जर में जाकर बैठ जाएंगे, हमें बहने भी वहां हेल्प करने के लिए होंगे, इट जस्ट बिकम सो इजी। तो अगर आप दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर भी जाते हैं, अगर रोज जा पाए तो यू विल बी फ्लाइंग आफ्टर सम टाइम, आपको लगेगा कि एफर्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर रोज नहीं भी जा पाते, संडे सैटरडे जो भी डे सूट करता, आप देखेंगे दैट विल ब्रिंग अ चेंज।
1: इनफैक्ट वही बात है कि हर बात हमारे इस पूरे सफर में ये रही है कि अनुभव तो और उसके लिए एक ट्रायल, एक कोशिश जरूर करनी, वो हमें ही पहला कदम उठाना है। तो वो सेंटर तक जाने का पहला कदम भी जो है वो हमें ही उठाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 2 महीने बाद देखेंगे कि हमारा अनुभव हम कहाँ खुद खड़े
0: हो। 2 महीने के बाद आपके वो सिस्टम के अंदर फिट हो जाएगा, यू नो इट विल बी कि आपको सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप उठकर वहां पहुंच जाएंगे। यू नो इनिशियली हमें कुछ भी करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, यू नो एक्सरसाइज भी जब हम सोचते हैं करने का तो टालते रहते हैं पहले, तो यू नो कल कर लेंगे कल कर लेंगे, क्योंकि अभी तक उसका मुझे प्राप्ति नहीं मिली है तो मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है। 10 दिन कर ले वो एफर्ट और वो एक्सरसाइज से बेनिफिट दिखे कि अरे बॉडी फील्स वेरी गुड, फिर सोचना थोड़ी पड़ता है करें या नहीं करें, नेचुरल हो जाता है, वी फील लाइक डूइंग इट। फिर हम ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं कि जिस दिन नहीं करते हैं तो उस दिन लगता है कि आज कुछ मिसिंग है, तो सेम थिंग हो जाएगा। उसके बाद हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा सेंटर जाएं नहीं जाएं, टाइम निकालें टाइम नहीं मिल रहा, टाइम ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा क्योंकि आप सारा दिन इतने हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली एंड इट विल बी वन ऑफ द थिंग्स इन योर डेली रूटीन। जैसे कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती हैं जो सारा दिन में, जो टाइम ना होते हुए भी हम उनको मिस नहीं करते। भोजन करना हम मिस नहीं करेंगे, 1 या 2 बार मिस कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बिना ये शरीर नहीं चलेगा। तो वो काम जो हम करना चाहते हैं वो भी कैसे करेंगे। इसी तरह आत्मा के लिए भोजन है, हम सेंटर पे जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये आत्मा को चार्ज करता है, तो वो मेरे को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देगा। तो अगर मेरी एफिशिएंसी को कोई चीज बढ़ा रही है, why will I not take out time for that? I will definitely go for that.
1: Okay, so it's a promise to ourselves actually. एक अपने आप से वादा करेंगे कि ये एफर्ट एक आखिरी कदम शायद।
0: It's only for those who want to do it. See again, it's not that you have to do because there's no such thing as have to go to anywhere. लेकिन अगर क्योंकि आप बहुत समय से देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं अब आगे क्या, अब इस यात्रा को और आगे कैसे बढ़ाएं, then that is the step.
1: वही जो जिज्ञासु है उसी के लिए वो आगे का सफर होता है, और मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो उस आगे के सफर पे भी जाना चाहते हैं। What exactly is emotion? You know, मतलब क्या है वो बेसिकली।
0: आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर हम देखें या एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के साथ एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है विच इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। लगभग लेट्स से 10 ईयर्स बैक से ये कॉन्सेप्ट निकला है, उसके पहले ऐसा कोई वर्ड नहीं था इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ जिसके लिए हम कहते हैं। IQ वेरी कॉमन, पहले से हम सुनते आए कि इंटेलिजेंस, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस वी डिडंट नो। तो एक है रैशनल इंटेलिजेंस जो IQ हम कहते हैं कि हमारी लॉजिक कितनी अच्छी है, यू नो एनालाइजिंग पावर कितनी अच्छी है, हम रैशनलाइज कितना अच्छा कर पाते हैं। तो रैशनल इंटेलिजेंस पर हम बहुत समय से चलते आए और आज इतना कुछ जो हमने क्रिएट किया है दैट इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ रैशनल इंटेलिजेंस जो कि इट्स वेरी गुड। लेकिन उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक क्या हुआ कि हम बहुत ज्यादा बाहर बाहर बाहर की तरफ जहां जाते गए तो कहीं हम इन द प्रोसेस अंदर से जो कनेक्शन था वो टूटता गया। वी वेंट लाइक दिस। आज हम कनेक्टेड बहुत अच्छा है सब एक दूसरे से, पहले हमें 15 दिन लगते शायद एक चिट्ठी भेजने कहीं पर, यू नो लेकिन वो याद कितनी अच्छी थी, वो चिट्ठी फिर भी जो जाती थी वो कितनी फीलिंग्स और भावनाओं से भरी हुई थी। आज हम एक सेकंड में ईमेल भेज सकते हैं, एक सेकंड में सेल उठाकर उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से शायद बात ही नहीं करना चाहते। तो वो जो रिलेशनशिप्स थे, क्योंकि अंदर से हम जितने खाली होते गए या अपने आप से डिस्कनेक्ट होते गए, तो हम औरों से भी डिस्कनेक्ट होते गए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हम ब्रॉडली अगर सोचे तो उसको कहेंगे समवन हु इज अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, यू नो, अवेयरनेस, कि एक जागृता हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अभी रैशनल इंटेलिजेंस है, जागृता है कि बाहर क्या चल रहा है। आई नो एवरीथिंग कि दुनिया में क्या चल रहा है, कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, आई नो एवरीथिंग, दैट्स रैशनल इंटेलिजेंस, वो सब पता है। स्पेस में क्या चल रहा है, समुद्र के एकदम गहराई में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है,
1: मैं
0: सी तब जाकर एक क्वेश्चन मार्क आने लगता है। मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस, उसका पूरा सिस्टम क्या है, उसको कौन क्रिएट कर रहा है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ या बाहर वाले क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ आकर मोस्ट ऑफ अस आर लाइक पता नहीं, एंड फिर क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर नहीं आंसर्स निकाल पाते, तो कहीं ना कहीं हम उस पर सोचना ही बंद कर देते हैं, एंड देन अगेन वी गो बैक टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सी दैट इज हाउ इट हैपेंड, क्योंकि हमें अंदर नहीं आंसर मिल रहा था, हम और बाहर जाने लगे और अंदर से और दूर होते चले गए,
1: क्योंकि हमें इतनी आदत हो चुकी थी आंसर्स पाने की। बाहर हर चीज का हमें एनालिटिकल पावर इतनी ज्यादा हो गई थी कि हर बात का आंसर मिल रहा था।
0: बाहर जो आंसर मिलता है वो इंस्टेंट मिलता है, यू नो, इंस्टेंट। बाहर जो आंसर मिलता है वो प्रूफ से मिलता है, और अंदर जो आंसर मिलता है वो अनुभव से मिलता है। तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब वो अनुभव करना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसके लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। बट वी जस्ट थॉट दैट we're too fast, we're just moving too fast. And why were we moving too fast? Because hum bhool gaye ki main kaun hu. Maine socha main sharir hu. Main sharir hu, to sharir ko khushi kahan se milegi? Physical cheezon se milegi. Sharir ki life kitni hai? Bas itni hai. To itne mein mujhe sab kuch batod lena hai. To I just went fast and fast and fast. And sab kuch mil gaya, लेकिन खुशी नहीं मिली, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट द बॉडी वांटेड। शरीर को जो चाहिए था वो सब मिल गया, कंफर्ट सारे मिल गए, लेकिन जिसको खुशी चाहिए थी उसकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तो इसीलिए नाउ वी हैव गॉन बैक टू आस्किंग आवरसेल्फ दैट क्वेश्चन कि हु एम आई,
1: व्हाट एम आई,
0: व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, खुशी कहां से मिले, मेडिटेशन, यू नो, सी ये सिर्फ अभी होने लगा, बिकॉज हमने वो पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी और जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। सो नाउ वी रियलाइज्ड कि इट्स अ डिफरेंट जर्नी। एक्चुअली हम दोनों जर्नी साथ साथ कर सकते थे। इसलिए कई बार लोग कहते हैं अभी नहीं प्रोफेशनल लाइफ कर लो, फिर बाद में स्पिरिचुअल लाइफ करना, बट नहीं, आपको खुशी रिटायर होने के बाद थोड़ी चाहिए।
1: इनफैक्ट एक और अभी मुझे कुछ सुनने को मिला कि कीप योर प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ डिफरेंट।
0: या हाउ कैन यू से दैट, इट्स लाइक सेइंग यू नो फिजिकल मेंटल, ये भी तो दो स्तर है। तीसरा स्तर है स्पिरिचुअल। क्या आप कोई जब ऑफिस में आएगा आप उसको कहेंगे कीप योर फिजिकल एंड मेंटल लाइफ सेपरेट? नो, बिकॉज दैट पर्सन इज अ पैकेज, पर्सनालिटी है वो, एंड वो पर्सनालिटी तभी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाती है जब मेंटली भी हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है, एंड नाउ स्पिरिचुअली भी हेल्दी है। सो यू कांट रियली से कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अलग रखो। इनफैक्ट जितना उसको इंटीग्रेट करते जाओगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, वो और भी ज्यादा अच्छी होती जाएगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट समथिंग वेरी बिग। अगेन इसको भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। आज इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, सेमिनार, एंड वो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि कई बार उसका जो सार होता है कि एसेंस में वो क्या है, इट जस्ट गेट्स लॉस्ट समवेयर।
1: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, यू नो, बिकॉज़ अब हम उस दौर में हैं, सडनली आई सी लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू नो, कहीं कितने कल्ट्स और कितने, इतना सारा है, इतना कंफ्यूजन अब स्पिरिचुअलिटी का भी आ गया है कि हम बोलने तो लग गए हैं वही भाषा, लेकिन अंदर वही इतनी कंफ्यूजन है। हाउ टू एक्चुअली यू नो सी व्हाट इज द रियल थिंग, हाउ टू रियली अंडरस्टैंड,
0: क्योंकि उसको भी शायद हम सिर्फ बाहर कर रहे हैं।
1: हाँ, और बिल्कुल बोल रहे हैं, वही भाषा बोलने लग गए हैं,
0: क्योंकि पढ़ ली ना।
1: हाँ,
0: पढ़ ली,
1: सुन लिया,
0: सुन ली। अभी तक भी सब कुछ रैशनल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था और उसी को कर रहा था, अनुभव नहीं कर रहा था। अभी उसी की आदत पड़ी हुई है, तो अंदर जाने का समय नहीं निकाल रहे हैं। तो किसी भी किताब से कुछ पढ़ लिया, किसी भी वर्कशॉप में कुछ सुन लिया, उसी को एक दूसरे के साथ चर्चा में ले आए और कहा वेरी गुड बुक, आपने ये बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मोस्ट रेड बुक इन द वर्ल्ड, एवरी वन इज रीडिंग, बट वेयर इज द प्रूफ दैट आई एम रीडिंग दैट बुक, दैट प्रूफ हैज टू कम इन टू मी, बट आई जस्ट रेड इट, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, सबको बताया आप भी पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, क्लोज द बुक एंड फिनिश्ड, एंड देन आई गो टू द मार्केट एंड आई बाय द नेक्स्ट बुक, बट आई एम नॉट यूजिंग इट. तो ज्ञान इज नॉट जस्ट रीडिंग, लिसनिंग एंड डिस्कसिंग, ज्ञान मतलब अवेयरनेस, क्या आप, इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अवेयरनेस ऑफ मेरे अंदर क्या चल रहा है. अब जो मैंने पढ़ा या जो सुना उसको मैं इंटरनलाइज कैसे करूं, एक सिर्फ एक सेंटेंस को ले लीजिए जो आपने पढ़ा, एंड यू विल नीड वन वीक टू वर्क ऑन इट, इट्स नॉट दैट सिंपल, लेकिन एक बार आपने उसके साथ वर्क कर लिया, इट्स देयर विद यू फॉर अ लाइफ टाइम, उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो आपके अनुभव में आ गया, और एक बार अनुभव की हुई चीज अगली बार एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो आपके सिस्टम में नेचुरल आ जाती है. तो अवेयरनेस आ जाएगी अबाउट माय इमोशंस, माय फीलिंग्स, अवेयरनेस आते ही कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल ओवर माय इमोशंस, मास्टरी ओवर माय फीलिंग्स. अभी क्या है, मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, कभी कुछ आ जाता, कभी कुछ आ जाता, तो ये लो इमोशनल इंटेलिजेंस है. इस व्यक्ति को हम कहेंगे कि उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, वेरी लो इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी लो ईक्यू. तो जितना अवेयरनेस आएगी कि ये मेरी इमोशन है, ये अभी क्रिएट हो रही है, क्रिएट होते कि अवेयरनेस आएगी, गुस्सा क्रिएट हो रहा है, मुझे आने लगा, आई एम फीलिंग दैट एंगर, जैसे आई एम अवेयर, इफ आई एम नॉट अवेयर वो आ जाएगा, आई विल शाउट एट एवरीबॉडी एंड फिनिश्ड, एंड आफ्टर दैट आई विल बी अवेयर कि ये सारा कुछ हो गया, दैट्स लो. लेकिन इफ आई एम अवेयर जब वो क्रिएट होना शुरू हो रहा है, आई कैन कंट्रोल इट राइट देयर. और ये एक जर्नी है जिसको हम करेंगे थोड़े दिन, कि ये जब हम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में आते जाएंगे, एंड दैट इज अ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस.
1: If you talk about emotions, what exactly is meant by emotion? Because emotional strength, emotions को भी बहुत अभी भी हम बहुत positively लेते हैं कि मेरी emotions बहुत strong है, बहुत strongly feel करता हूँ मैं, या
0: feel करता हूँ. See, मैं strongly feel करता हूँ. That's okay. Emotions different, feeling different. अभी क्या हुआ है कि बिकॉज वी नॉट अवेयर कि वो एग्जैक्टली क्या है, तो हम इमोशन वर्ड और फीलिंग वर्ड को एक ही भाषा में यूज कर लेते हैं, कि एज इफ दे बोथ द सेम थिंग, बट एक्चुअली दे टोटली,
1: इमोशन, बीइंग इमोशनल एंड हैविंग फीलिंग्स इज अ टोटली डिफरेंट थिंग.
0: टोटली डिफरेंट थिंग. अभी बीइंग इमोशनल इज इवन टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, लाइक वी सेड बीइंग सेंसिटिव, यू नो, बीइंग सेंसिटिव, हम इसे, आई एम वेरी इमोशनल, कि क्या मेरे पास, मेरे इमोशंस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई रो रहा है तो मैं भी रो देता हूँ, तो दैट्स नॉट अ स्ट्रेंथ एक्चुअली, इट जस्ट शोज कि आप कितनी जल्दी
1: डिप्लीट
0: हो जाते हैं, कि आपका अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, परिस्थिति और सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाता है, और आप फील करते हैं कि वो इमोशंस आपके अंदर क्रिएट हो जाते हैं, तो एक्चुअली आई एम नॉट इन कंट्रोल ओवर माई सेल्फ. इमोशंस, वेरी सिंपली इफ वी टेक इट, इवन साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स वुड टेक इमोशन इन अ हेल्दी वे, दे थिंक इट्स हेल्दी क्रिएशन
1: एक्चुअली,
0: या बट अगर स्पिरिचुअल लेवल पर हम उसको समझते हैं एट अ डीपर लेवल, तो इमोशन इज एक्चुअली अ डिस्टर्बेंस, अ डिस्टर्बेंस इन द एनर्जी ऑफ माई कॉन्शियसनेस, विच हैपन्स वेन समथिंग और समवन टू विच आई एम अटैच्ड इज थ्रेटन्ड और मूव्ड. सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तो मेरी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो बिल्कुल स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है. आप आए और आपने ऐसे हाथ मारो और ये कप टूट गया. इफ दैट कप इज वेरी प्रेशियस टू मी, यू नो, जैसे कईयों का होता है घर में दैट फ्लावर वाज इज वेरी प्रेशियस टू मी, या ये क्रॉकरी इज वेरी प्रेशियस, मतलब आई एम अटैच्ड टू दैट, तो टूटा तो ये, लेकिन डिस्टर्बेंस यहां क्रिएट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ माय अटैचमेंट ये कप था, और इस ऑब्जेक्ट को किसी ने आकर हिला दिया, और जैसे ही मेरे अटैचमेंट के ऑब्जेक्ट को किसी ने हिला दिया, मेरी जो एनर्जी अंदर वो डिस्टर्ब हो जाती है, एंड दैट कुड बी एन ऑब्जेक्ट, इट कुड बी अ पर्सन, यू नो, my relation, somebody I'm very close to, somebody I'm very attached to, उनको कुछ हो गया, अगर वो बिल्कुल ठीक है, I'm okay, energy is okay, उनको कुछ हो गया, energy यहाँ disturbed, क्योंकि attached got disturbed, I got disturbed. The emotion हमेशा एक disturbance के रूप में create होगा, and the different kinds of emotions, even dictionary में अगर आप देखो कि what is the meaning of emotion, it says agitated mind. Absolutely, because stable था, लेकिन कहीं कुछ हुआ और यहाँ एक agitation शुरू हो जाती है. और सारा दिन में अगर हम देखें कि हम कितने प्रकार के emotions create करते हैं.
1: But that really happens, you know, कि
0: आप सारा दिन में हो रहा है. आप step by step just keep watching, it's happening every time. सारा दिन में check करें कि ये disturbance कितनी बार होती है. कितनी, और आप पाएंगे कि इट्स जस्ट टू ऑफन, इट्स हैपनिंग वेरी वेरी ऑफन, बिकॉज अटैचमेंट्स बहुत सारी हैं. अटैचमेंट्स ऑब्जेक्ट से हैं, अटैचमेंट्स लोगों से हैं, अटैचमेंट्स इस शरीर से हैं, अटैचमेंट्स अपने बारे में जो सोच के रखा है. आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अटैचमेंट है उस इमेज के साथ. किसी ने आकर कह दिया आपका तो काम सारा गलत है, डिस्टर्ब्ड. क्यों? क्योंकि मेरी वो जो इमेज थी, किसी ने आकर उस इमेज को हिला दिया, तो जैसे ही वो इमेज हिलेगी मैं हिल जाऊंगी. सो वन डे जस्ट स्पेंड इन दिस एंड यू विल रियलाइज कि हाउ मेनी टाइम्स इट गोज, एंड दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग सो ऑफन. इसीलिए लोग कहते हैं थोड़ी सी शांति चाहिए. क्यों थोड़ी सी शांति चाहिए, जबकि आई एम अ पीसफुल बींग? क्योंकि ये स्टेबिलिटी वाली जो स्थिति है ये सारा दिन में बहुत कम रह रही है, वो डिस्टर्बेंस बहुत फ्रीक्वेंटली क्रिएट हो रही है. अब जब हम अवेयर होते जाएंगे कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, नाउ आई विल बी एबल टू टेक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इट.
1: एंड बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू दैट इमोशन, द अवेयरनेस विल स्टॉप मी.
0: अभी पिछले एक दो मास में हर रोज टेलीविजन पर शाम को जो मैच आता था, क्रिकेट मैच, विच इज ओके, आई मीन इट्स नॉट द क्रिकेट मैच इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन एक पूरा देश or millions of people, very mature people, glued to that television and unke emotions. You see? Ab koi kahega, but this is good.
1: Euphoria.
0: It's healthy. It's very unhealthy. It's very, very unhealthy. Kyunki aap apni stability ko ek minute aise, क्योंकि एक मिनट एक सिक्स हो जाएगा तो एक मिनट कोई आउट होगा. वेरिएशन बहुत ज्यादा है, और अगर आपने उसको अपने ऊपर हावी होने दे दिया है तो क्या होगा कि आपकी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो भी एक मिनट बहुत हाई और फिर एक मिनट एकदम लो, और वो रोज, क्योंकि आप उस यू नो वंस इन अ व्हाइल इज ओके, बट बिकॉज ये दिस वेंट ऑन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड आप रोज देख रहे थे उसको दो घंटा उतनी देर, इट्स काइंड ऑफ एन एडिक्शन.
1: क्योंकि
0: इट इज टायरिंग, लेकिन वो रोज होने से क्या हुआ कि आपके मन को उस इमोशनल डिस्टर्बेंस की आदत पड़ जाती है.
1: Then you start looking for
0: it. Yes, and then you will start looking for a stimulant which will create that disturbance, and that affects the body also. क्योंकि बॉडी में भी केमिकल्स हो जाते हैं, तो बॉडी को भी आदत पड़ गई है, तो नाउ यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर things outside to create that emotional disturbance.
1: So Shivani, I'm amazed, you know, every time we pick up a topic, there's something which, like, जिसे हम ये सोच रहे होते हैं कि वो normal है, वो सहज है, वो जिंदगी में होता ही है, ऐसा ही होता ही है, it comes out कि it can be different actually, you know, and वो जो कहीं ना कहीं अनजाने में ही हम पूरी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, वो कैसे कंटेन करके हम एक बेहतर जिंदगी जिसे हम तलाश रहे हैं उसे पा सकते हैं. इस पूरी बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे. आज की इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. इमोशंस और फीलिंग्स, अभी तक हम इसे एक ही मानते थे, हमें लगता था कि अगर हम इमोशनल हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी ताकत है, अगर हम खुश हो पाते हैं या दुखी हो जाते हैं किसी को देखकर तो वो भी, कोई अगर दुख में है तो वो, अगर हम उसके साथ रिलेट कर रहे हैं और हम खुद रोने लग जाते हैं या दुखी हो जाते हैं तो समवेयर वील हैव टू एक्चुअली चेक कि हो क्या रहा है. और जैसा कि सुश्री शिवानी ने आज कहा है कि एक दिन अपने आप को देते हैं और देखते हैं कि कितनी बार हम ये जो यो-यो होता है हमारे इमोशंस के साथ, हमारे पूरी जो स्टेबिलिटी है उसके साथ, उसे चेक करें और जानने की कोशिश करें कहां कहां हम ऊपर नीचे हुए हैं. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में का ये सफर यूं ही चलता रहेगा. अगर आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह एक खुला निमंत्रण आपको देते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, जब एक परिवार शुरू करने की बात होती है तो माता पिता दोनों की आंखों में कई आशाएं होती हैं। हमारा बच्चा ऐसा होगा, हमारा जीवन ऐसा होगा, हमारा घर ऐसा होगा, बच्चे का फ्यूचर भी वो देख चुके हैं। क्या होता होगा उस परिवार के साथ जब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा जो है मानसिक रूप से असंतुलित है? क्या होता होगा उस परिवार को या उनके सपनों को जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका जो सपना है वो पूरी तरीके से अब अलग है, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो कई तरीके से मानसिक रूप से कई ऐसे अंदरूनी परेशानियों से जूझ रहा है जिसका समाधान माता पिता के पास नहीं है। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आता है जो अपनी उदारता से, अपनी दृढ़ता से और अपनी समझ से उनके जीवन की इस परेशानी को कम करने में या उसका सामना करने में उस माता पिता को मदद करता है। और इस मदद के दौरान सबसे बड़ा मदद का जो भागीदार होता है वो बच्चा होता है, जिसे खुद को नहीं समझ कि वो किन चीजों से गुजर रहा है या उसके जीवन में क्या हो रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ आज हमारी मुलाकात होने जा रही है। स्वागत है आप सभी श्रोता साथियों का यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के एपिसोड में, जहां हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर पी हनुमंत राव से, सिकंदराबाद के बहुत ही प्रतापी हॉस्पिटल स्वीकार, हॉस्पिटल ही नहीं एक स्कूल भी है, एक इंस्टीट्यूट भी है, एक रिहैबिलिटेशन

0: सेंटर है, पुनर्वास का एक यज्ञ है जहाँ कई ऐसे बच्चों का पुनर्वास किया जाता है, उनके माता पिताओं का काउंसलिंग किया जाता है। और अपने इस समाज सेवी प्रयत्न की वजह से डॉक्टर पी हनुमंत राव जी को भारत सरकार ने वर्ष 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं डॉक्टर पी हनुमंत राव जी का। डॉक्टर पी हनुमंत राव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोता साथियों की तरफ से और रेडियो मधुबन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपना टाइम शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक्स।
1: मुझे भी बहुत खुशी है, मैं बहुत मेरे शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: अक्सर ये ऐसा होता है डॉक्टर हनुमान जी, दैट हम सोचते हैं कि हमारा दिन कैसे शुरू होगा, कैसे जाएगा, कैसे होने वाला है, बट मुझे इस बात का यकीन जरूर है कि मुझे और हमारे श्रोता साथियों को इस बात का यकीन जरूर होता है कि रेडियो मधुबन जैसे ही हम खोलते हैं, दिन की शुरुआत तो अच्छी होती ही है, लेकिन दिन भर में भी जो कार्यक्रम रेडियो मधुबन प्रस्तुत करता है, उसके जरिए दिन हमारा बेहतर से बेहतर बनने लगता है। और जब कार्यक्रम यशस्वी भारत का हो, जिसमें हम भारत के यशस्वी पुत्र आप जैसे डॉक्टर पी हनुमंत राव जी से मिलते हैं, तो हमारा दिन बेहद खुशनुमा हो जाता है। जैसे कि आपकी कहानी में आता है कि आपने भारत के सैकड़ों ऐसे बच्चों का जीवन सुधारा है जिनके लिए लोगों ने उम्मीद या आस छोड़ दी थी, और तब जबकि उनके खुद के परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी, तब आपने उनका हाथ थामा और उनको एक ऐसे जीवन की दिशा दी, जीवन को जी करके न केवल वो लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी लाभान्वित कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम की या ऐसे सेवा की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, ये हम जानना चाहेंगे, इसलिए हम शुरू करना चाहते हैं आपकी कहानी, आपकी जुबानी।
1: मेरा पैदाइशी तो ओल्ड सिटी में हुआ, हैदराबाद में, चार मीनार से एक 3-4 किलोमीटर। पूरे डॉक्टर्स के परिवार में मैं पैदा हुआ। मेरे फादर, मेरे अंकल्स पूरे आरएमपीएस थे। वो जमाने में एमबीबीएस बहुत कम लोग थे, पूरे आरएमपीएस थे और बहुत पॉपुलर थे, बहुत नाम था। वो जमाने में डॉक्टर्स ही कम थे, तो हमारा एक 40 रूम्स का नर्सिंग होम था। जब हमारा जॉइंट फैमिली ब्रेकडाउन हो गया, मैं मेडिसिन में ज्वाइन हुआ, सेकेंड ईयर में ब्रेकडाउन हुआ, तो बहुत तकलीफों के सामना करना पड़ा। पूरे हमारे अंकल सब सेपरेट हो गए, तो बहुत आर्थिक तकलीफों में शुमार हो गया। एक मरतबा मेडिकल कॉलेज से निकाले गया, दो मरतबा हॉस्टल से निकाले गया, फाइनेंशियल सपोर्ट न रहने से। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं आई एम ए कंट्रीब्यूटरी प्रोडक्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। तो मैं सोचा भी नहीं था मेडिसिन कंप्लीट करता हूँ। मैं वारंगल में मेडिसिन कंप्लीट करके काकतिया मेडिकल कॉलेज से हैदराबाद आया, गांधी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन हुआ। वहां के सुपरिटेंडेंट बोले, भाई मैं हॉस्पिटल वो हॉस्टल के लिए पूछा, सर्जन हॉस्टल, नहीं नहीं तुम हैदराबाद के ना, हॉस्टल क्यों? मैं बोला, नहीं सर मैं वारंगल का हूँ, हॉस्टल चाहिए। तो फिर बाद में मैं ओल्ड सिटी गया नहीं, मेरे मेडिसिन में जब ज्वाइन हुआ ओल्ड सिटी नहीं गया, तो इधर ही मैं सिकंदराबाद में सेटअप हो गया। मेरा हाउस जॉब हो गया, सीनियर हाउस जॉब हो गया। मेरे फादर को ओल्ड सिटी से सिकंदराबाद लाया। मेरे फादर बोले, नहीं गवर्नमेंट जॉब आया, तुम्हारा कॉल आया, चले जाओ। मैं बोला, गवर्नमेंट जॉब अभी करना नहीं है मेरे को, मेरे को आगे पढ़ना है। नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं सकता, मैं घर भी चला नहीं सकता। तो मैं पूछा, भाई घर चलाने में कितना पैसा चाहिए? 600 रुपए। ठीक है, मैं वो दे दूंगा, मेरे को आप डिस्टर्ब मत करो। तो वो लोगों को सिकंदराबाद लाया, मगर माँ नहीं ठहरा, मैं हॉस्टल में ही ठहरा, गांधी हॉस्टल में। तो मेरा स्टाइपेंड जो आता था पूरा 600 वो लोगों को देता था। हम चार बहन है, चार भाई हैं, हम लोग टोटल 10 मेंबर्स का फैमिली है। तो मैं हाउस सर्जन से ही प्रैक्टिस शुरू करा था, बिकॉज आई एम बॉर्न इन ए जॉइंट फैमिली। मैं जब से ही डॉक्टरी करता था, इंजेक्शन देना, दवाया देना, मिक्सर हवा बनाना। तो इमिडिएटली मैं जैसा वारंगल से आया और जब शुरू करा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी शुरू करा। तो थोड़ा कुछ जो भी कमाता था, मेरा लिविंग चलता था, मेरा स्टाइपेंड फैमिली को देता था। वैसा मैं एमडी पीडियाट्रिक्स में ज्वाइन हुआ। हालांकि पीडियाट्रिक्स मेरा इंटरेस्ट नहीं था, एमडी जनरल मेडिसिन था, मगर उसमें ढकले गया, मेरा सीट और कोई दिए। उस जमाने में इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, जो मनमाने करते थे वो। तो मेरा सीट और एक इन्फ्लुएंशियल आदमी लिया। मैं 3 महीने तक रेगुलर नहीं गया, मेरे को पीडियाट्रिक इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को जनरल मेडिसिन जाना है।

0: बाद में मेरे सीनियर लोग एडवाइस करे, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स, नहीं नहीं तुम लड़े तो तुम्हारा लाइफ खराब हो जाता, तुम्हारे फेल कर देंगे, तुम तो जो मिलाओ ईश्वर की कृपा समझो, चैन हो जाओ। तो फिर मैं कंसंट्रेट करके एमडी पीडीएस कर लिया। सोचा मेरे फादर और ये लोग जो है आरएमपी रह के इतना सेवा करे, सर्दी खांसी बुखार ये रूटीन एलिमेंट्स को देखते थे। मैं एमडी पीडीएस करा, मैं भी वही काम करूंगा, ये पीडीएस होने के बाद कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करा, बॉम्बे गया, मेरा प्रैक्टिस को और एक दोस्त को बिठा के बॉम्बे गया। बॉम्बे में एक चार महीने पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन, जब जब वो तीन चार साल के नीचे खुला था, वहाँ मैं एक ही डॉक्टर था, दूसरे पूरे फिजियोथेरेपिस्ट, दूसरे दूसरे स्पेशलिटी वाले थे, सब लोग थोड़ा एक अलग ही नजर से देख रहे थे, इतना बड़ा क्वालिफिकेशन रह के कोर्स ज्वाइन करा इन, पूरा पैरामेडिकल के थे बहुत से। तो मैं इसलिए ज्वाइन हुआ कि मेरे को दूसरा नॉलेज भी है, रिहैबिलिटेशन क्या चीज है, कैसा करना है, वो ध्यान से मैं वो मिशन से मैं वहाँ ट्रेनिंग को ओरिएंटेशन गया, वहाँ के डायरेक्टर को इनवाइट करके मेरा पार्ट ऑफ मैं क्लिनिक में स्टार्ट करा एज ए हैदराबाद स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर। वो नाम तो सबको समझ में आया, व्हाट इज स्पेशल स्कूल, जमाने में स्पेशल एजुकेशन बोले तो भी मालूम नहीं था, स्पेशल स्कूल मालूम नहीं था। लोग मेरे को आगे डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को एडमिशन दो, अरे बोला ये ऐसा नहीं भाई, ये स्पेशल बच्चों के वास्ते है, ये ऐसा नॉर्मल बच्चों के वास्ते नहीं। तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। मेरे प्रैक्टिस में एक शॉप लिया और एक शॉप लिया और एक शॉप लिया, चार शॉप्स पीछे जो है, और दो घर भी ब्लॉक्स ले लिया था किराए को। बाद में सोचा ये मेंटली रिटायर्ड एक ही नहीं है, डिप बच्चों को भी मैं अपनी सेवा जरूरत है बोल के डिप स्कूल स्टार्ट करा, लोगों को हॉस्टल भी स्टार्ट करा। और बहुत भीड़ बढ़ने लगा तो मैं सोचा गवर्नमेंट को अपील करेंगे। मेरे एक नेबर थे डिफेंस स्टेट ऑफिसर मिस्टर डी के रेड्डी, बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे डिफेंस स्टेट ऑफिसर, उन्होंने मेरे को गाइड करा, डॉक्टर साहब आप इतना काम कर रहे हैं, आप डिफेंस का जमीन के वास्ते अपील करो। तो उन्होंने बहुत सहायता करे, डिफेंस का लैंड, एक एकड़ लैंड सिकंदराबाद में जुबली बस स्टेशन के सामने, वो जब तो वैल्यू नहीं था, अभी बहुत बड़ा वैल्यू है उसका, सबकी नजर अपने ऊपर ही है। और अब उस तरीके से अपन बहुत लोगों की ईर्ष्या के शिकार हुए, मगर सबका सामना करा, ईश्वर की कृपा है कि अपने को गिराया नहीं। तो आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। एक मरतबा हमारे सीएम डॉक्टर वाईएसआर रेड्डी को बुलाया था, हम एक बिल्डिंग पांच माले का फाइव स्टोरी बिल्डिंग को मैं अग्रीमेंट करा एक दोस्त से, अरे वो दोस्त पंडित राव बोल के थे, उन्होंने भाई इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया दो साल से खाली रखे, मेरे को दे दो। तो इतना पैसा आप कहाँ से दे सकते डॉक्टर साहब, मैं बोला भाई एवरी मंथ देऊंगा मैं थोड़ा। तो अग्रीमेंट करे हम, वहां पर जो है ड्रग रिएक्शन स्टार्ट करा, ये नशीली दवाओं के शिकार होकर बहुत से लोग तकलीफ उठा रहे थे, जहां जहां मेरे का दिल को तकलीफ हुआ ये काम करना है या कुछ करना है, ये किसी का दुख बांटना है। तो वहाँ ड्रग रिएक्शन चलाया, डेफ स्कूल यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया, मेंटली रिटायर्ड स्कूल भी शिफ्ट कर दिया, हॉस्टल शिफ्ट करा वहाँ पर, और होम फॉर द एजेड भी बनाया वहीं। तो बहुत से काफी बिल्डिंग था, फाइव स्टोरी बिल्डिंग था, 45 फ्लैट थे उसमें, काफी एक 15-20 साल चलाया वहाँ। चलाने के एक 10 साल के बाद जब मैं पूरा पैसा पे कर दिया, जब चीफ मिनिस्टर को बुलाया तो डॉक्टर साहब तो 10 साल से बिल्डिंग में आकुपे करा हुआ है, आज हमारे से इनॉग्रेट कर रहे हैं। साहब अभी तक हम ओनर नहीं थे, अभी स्वीकार इज ओनर, उस वजह से आपसे डेडिकेशन कराया। तो बहुत उन्होंने खुश होकर क्या करा, नहीं नहीं ये सब कुछ आने दो, मैं आपसे बात करना है। तो मेरे बाजू बिठा के बात करा, ऐसा सेंटर आप कड़प्पा में खोलो। तो कड़प्पा में अपने को जमाने में 40 साल के नीचे मेरे को अलग ही इंप्रेशन था, लोग मार लेते मर्डर कर लेते सब बहुत फैक्शनिस्ट, वो मैं बोला मैं नहीं आता था बोला। तो ये परस्यूट देन मेरे में भी कुछ लालचीपना हुआ, अरे ये आदमी को तो अपन यूज कर लेते और आगे इंस्टीट्यूशन को ले जा सकते, उससे मैं क्या करे ठीक है चलाएंगे। तो कड़प्पा में जाके एक सेंटर ओपन करा, उन्होंने पहले तो जगह नहीं दिया, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टार्ट करा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फीस चार्ज नहीं कर सकता, फ्री रहता, दो फ्लोर मेरे को दे दिया। तो मैं दो कंपोनेंट्स थे मेरे स्वीकार एक्टिविटी में, स्वीकार एक्टिविटी में सेवा, एक जो है सर्विस है विकलांग को, हर तरीके के विकलांग को सेवा देना है, मेरा मोटो ये था रिहैबिलिटेशन फ्रॉम टूम टू टूम, फायदा हुए से जब से उन्होंने जब टूम में जाता है, ग्रेवयार्ड को जब जाता है, तो कितने भी कहीं भी हर किस्म का रिहैबिलिटेशन, दैट इज द नेम आई कॉल इट स्वीकार। बोलो तो वे लोगों को एक्सेप्ट करने की क्षमता रहना अपने पास, दिल रहना चाहिए। तो स्वीकार के बाद उपकार बोल के लगा और एक ऑर्गेनाइजेशन, तो सेवा करना है। उसके बाद क्या है आश्रय, उसको आश्रय देना, नहीं तो बिगड़ आदमी, ही विल बी लॉस्ट। आश्रय के बाद सुरक्षा देना है। तो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन आई मेड इज अ सुरक्षा, स्वीकार, उपकार, आश्रय, सुरक्षा, ये चार ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन करा। ये सब मेरे जो सर्विस यूनिट थे सब चार ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया, तो के इजी मैनेजमेंट के लिए। अभी मेरा डायनेमिज्म मेरा एनिमी हुआ, जैसा मैं तड़पा गया, पूरा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट मेरा था, ऑपरेशनल कॉस्ट मेरा था। अब सीएम साहब पैसे देते हूं, बोले उन्होंने बहुत बिजी हो गए थे सेकंड टाइम इलेक्शन में, तो पैसे उधर से नहीं आए। मगर एक 5 साल के बाद जमीन दिया हूँ, 10 एकड़ का जमीन दिया हूँ, वो बहुत वैल्यू चीज है, मगर उसको तो मैं छेड़ नहीं सकता, मैं बेच नहीं सकता और कुछ कमर्शियल नहीं कर सकता। तो वो भी क्या करा, मैं बोला साहब ये फ्री देता हूँ, बोले सीएम, मैं बोला नको साहब कुछ नॉमिनल चार्ज करो, अब कोई यार एनजीओ को दे देना, ये चार्ज 1 रुपया 5 रुपये, आप कितना चार्ज करो, मैं बोला 50,000 पर एकड़ लगाओ साहब। बोला नहीं यहाँ तो 1 करोड़ पर एकड़ है ना डॉक्टर साहब, सब 1 करोड़ है तो मैं तो प्लॉटिंग वॉटिंग करके तो नहीं बेच सकता, मैं हैदराबाद भी नहीं ले जा सकता। तो इनिशियन को आगे आपके बाद मेरे बाद कोई भी चलाएगा, तो फाउंडेशन स्टोन उन्हीं से कराया। उससे पहला क्या करा, वो सर्विस यूनिट अपने शिंदे साहब गवर्नर थे, वो नया गवर्नमेंट प्रोविंसियल गवर्नर साहब से इनॉग्रेट कराया सर्विस यूनिट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ट। उसके 3 महीने के बाद सीएम साहब से और एक इनॉग्रेशन कराया, डॉक्टर साहब ये क्या 3 महीने नीचे कराया, अब गवर्नर जी को बुला के अभी मेरे से करा रहे साहब, आप जो है ट्रेनिंग कॉलेज को इनॉग्रेट कर रहे हैं, एक डॉक्टर हनुमंतराव कितने लोगों को सर्विस देगा। एक कहावत है, इफ यू गिव एफिशिएंट चैरिटी यू विल ईट इन द मॉर्निंग शिट इन द इवनिंग, इफ यू टीच ए पर्सन फिशिंग ही विल कैच फिश फॉर हिमसेल्फ फॉर द फैमिली फॉर द सोसाइटी लाइफ लॉन्ग एंड ही विल टीच 100 पीपल फिशिंग। तो विद्या दान इज द ग्रेटेस्ट दान द अन्नदान। बहुत से स्वामी जी भी अग्री करते है ये जमाने में तो विद्या दान बहुत बड़ी महत्व है, क्यों बोलते खाना फ्री खिलाया तो हर एक आदमी बैठ जाता है उसमें। वो एक कहावत है, इंडिया हैज इनफ फॉर द नीडी नॉट फॉर द ग्रीडी, देयर इज अ शॉर्टेज बिकॉज ऑफ मोर ग्रीडी पीपल आर देयर। मैं इतने मरता देखा, मैं 2-3 जगह फेल हुआ, मैं सोचा सोसाइटी सामने आगा एक हेल्पिंग हैंड देते समझा, मगर चलो डिसअपॉइंट हो गया, मैं कोई चिंता की बात नहीं है। तो और क्या कह रहा, मेरा डायनेमिज्म से कोस्टल आंध्र से बहुत से लोग आ रहे थे, मैं बोला भाई वहां एक सेंटर खोलेंगे, गुंडर में जाके खोल दिया सेंटर। और मेरे वाइफ का नेटिव प्लेस तांडूर बोल के है, विकाराबाद के करीब है वो, एक 250 किलोमीटर है। तो वहां जाके खोला, एक 5 एकड़ जमीन खरीदा स्वीकार के नाम पे मेरा पैसे से, तो अच्छा बिल्डिंग बनाया 1-2 करोड़ से, वहां भी स्टार्ट करा, वहां भी सीएम स्टार्ट करे। और गुंटूर का जो है वहां के कलेक्टर और वाइस चांसलर इनॉग्रेट करे। तो तीनों सेंटर्स को चलाते गया, मैं सीएम साहब को पैसा पूछा, दे दो बोले, और उन्होंने देहांत हो गए, पास दे गए। देन मेरा मिशन में बहुत बड़ा रुकावट शुरू हो गया, मगर मैं रोका नहीं, मैं बोला ये मिशन तो चालू रखना है। तो अभी बैंक लोन्स लेना शुरू करा, कड़पा में बैंक लोन लेके, तांडूर में बैंक लोन लेके बिल्डिंग बनाया, कड़पा में जमीन दिए तलक भी सीएम साहब थे, मगर बाद में बिल्डिंग मैं बनाया मेरे पैसे से, 1-2 फ्लोर्स का बिल्डिंग, 10,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बनाया। यहाँ भी एक 5,000 का स्क्वायर फीट तांडूर में बनाया, मगर गुंडूर में बिल्डिंग ओन बिल्डिंग नहीं बनाया, किराए का बिल्डिंग मेरा एक दोस्त का नर्सिंग होम क्लोज हो गया तो वो लिया, 25,000 रेंट पर मंथ देता था, वो भी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट था, उन्हें भी काफी सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट दिया, अब हर जगह सब मेरे दोस्त बोले अरे बंद कर दो तुम, पूरा फाइनेंशियली क्या कर रहे हो तुम, मुश्किल हो जाता, बंद कर दो। मैं बोला नहीं नहीं कहीं ना कहीं से हेल्प आएगा। ये तो आई हैव डन ऑलवेज, आई हैड अ फेथ, आई हैव डन गॉड्स वर्क, आई नीड नॉट लुक आउट, ही विल टेक केयर। वो मेरा बहुत बड़ा जिद था, वो मेरा फेथ था। हलो हलो 25 करोड़ लोन कर दिया मैं, और कौन सा भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं था। अभी लोन से ज्यादा लोग प्रेशर करना शुरू करे, प्रॉपर्टीज में बहुत बनाया था स्वीकार के नाम पे। मेरा दोस्त में बोलते थे क्या तुम रियल एस्टेट कर रहे क्या, बोला ये मैं तो स्वीकार के वास्ते खरीदा पैसा पूरा प्रॉपर्टीज। तो 32 एकर्स लैंड था स्वीकार, हैदराबाद से 30 एकर्स के डिस्टेंस में, 32 किलोमीटर के डिस्टेंस में 32 एकर जमीन लेके वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रूरल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मेंटली चैलेंज्ड। पूरे आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से भी आते थे लोग, बड़े बच्चे। तो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर द मेंटली चैलेंज वो भी चलाया, काफी साल चलाया, सिर्फ 25 साल से ज्यादा चलाया। मैं जैसा मैं आगे बढ़ते गया तो आई स्टार्टेड सिंकिंग। अब मैं एक सर्विसेज पे नहीं रुका, और एक मिस्टेक नहीं, आई हैव डन मेनी मिस्टेक्स बट आई डोंट थिंक अगेन इट्स नॉट अ मिस्टेक। हु एम आई टू डू, ही मेड मी डू, आई हैव डन, आई डोंट हैव रिग्रेट्स। तो खाली सर्विस करे तो क्या फायदा बोल के टीचिंग शुरू करा, डिप्लोमा से शुरू करके 1, 2, 3 डिप्लोमा इन हियरिंग इम्पेयर्ड। जो पढ़ते हैं वो लोग हियरिंग इम्पेयर्ड को ट्रेनिंग देते हैं, मेंटली डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। जो स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग लेते हैं नॉर्मल लोग, वो मंद बुद्धि बच्चों की सेवा करते ट्रेनिंग देते। वैसी दिन साइकोलॉजी, अब इतने लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सुइसाइड, मर्डर, स्टैबिंग, स्कूल ड्रॉप आउट, बच्चे मिसबिहेवियर और ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते थे, अल्कोहलिस्ट हो जाते थे। मैं बोला ये सब दवाएं रोकना है, ये सब रोकना चाहिए। एक इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ स्टार्ट कर, दैट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन प्राइवेट इन आंध्र एंड तेलंगाना। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट था एर्रागड्डा, दैट इज बहुत पुराना है, ब्रिटिश टाइम से था। मैं प्राइवेट में स्टार्ट करा तो मैं एक ही था, और रूरल में वहां भी लगाया। वहां लगाने के बाद क्या है, मेंटली इन लोग थे, मेंटली हैंडीकैप थे, तो एक आदमी बॉडी में गिर के सुसाइड कर लिया। तो उन्हें नोट लिखा, नहीं डॉक्टर इज वेरी काइंड, दे आर ऑल लुकिंग आफ्टर अस वेरी वेल, ही क्रिएटेड शेल्टर फॉर अस, वैसा ऐसा अच्छा ही लिखा, अच्छा लिख के मर गया। तो मेरे को वहां से, अब जब सेलफोन वेलफोन नहीं था, मैसेज आया ऐसा ऐसा एक आदमी मर गया। अरे बोला निकाल दो आदमी को अंदर से, बॉडी से निकालो। वो एक्सीडेंटली मेरे साथ एक इंस्पेक्टर था, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं निकालना पड़ता, आप पंचनामा कराओ, आप इंस्ट्रक्शन बराबर दो, वो लोगों को पुलिस को बुलाओ, बोलो गांव वालों को बुलाओ, बोलो पंचनामा करके जब भी बॉडी निकालना है। तो इट वॉज ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। सो वो जमीन था, बहुत साल वहां भी चला। अब कोर्सेज बढ़ाते गया, डिप्लोमा से डिग्री, डिग्री में से पीजी, पीजी में से डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी स्टार्ट करा। ये कोर्सेज स्टार्ट करने में अपने वायस रेड्डी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों बोले तो मेरे को कौन सुनता था, यूनिवर्सिटी वाला कोई नहीं सुनता, आई एम ए नॉन एंटिटी। तो उन्होंने सेक्रेटरी को डॉक्टर साहब जो भी सपोर्ट होना बोलते दे दो डॉक्टर हनुमंतराव को, कोई चीज रुकना नहीं है। तो मैं कोर्सेज स्टार्ट करा, यूनिवर्सिटी वाले रिफ्यूज करते थे, क्यों हमारे पास ये डिपार्टमेंट नहीं है, आप कोर्स का स्टार्ट करते, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है। बोला भाई हम स्पेशलिस्ट देगा, ऑल ओवर द कंट्री से स्पेशलिस्ट को आपके बोर्ड में रहेगा, दे विल मॉनिटर दिस। तो ऐसा कोर्सेज का परमिशन तो मिला उनका, स्वर्गवासी होने के बाद हम बहुत उलझन में फंस गए। अब लड़ाई लड़ते गए, बहुत से प्रॉपर्टीज बेच दिया, गुंडूर का क्लोज डाउन कर दिया, तांडूर का क्लोज डाउन कर दिया, 17 ईयर चला है सब। आर्टिफिशियल कृत्रिम अंग निर्माण वो भी क्लोज कर दिया, उम्फर्दी क्लोज कर दिया, बहुत से क्लोज करा। अभी थोड़े कोर्सेज चल रहे हैं स्वीकार में, सिकंदराबाद में, उसमें भी क्या बहुत से बाधाएं आ रहे हैं। ये जो इंस्पेक्शन को आते हैं मेडिकल काउंसिल के, वैसा रिहैबिलिटेशन काउंसिल बोल के है, वो दिल्ली में है, उससे पहले ही मैं स्टार्ट कर रहा था ये सेंटर। रिहैबिलिटेशन काउंसिल जन्म नहीं हुए से पहले हम सोच रहे, बिकॉज आई एम चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर कोई नहीं था सिकंदराबाद हैदराबाद में, मैं ही स्टार्ट कर रहा था। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली चैलेंज या खोले, मैं खोलने के 10 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोले, मगर किसी में नजर में नहीं आए, लोगों को कोई ध्यान नहीं दिए, कोई सपोर्ट नहीं आया किसी भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस आते था, दैट वाज पिटेंस ओनली फॉर स्कूल का आता था, मेंटली चैलेंज स्कूल का आता था, डेफ स्कूल का आता था, बाकी सब इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माय डायनेमिज्म, आई क्रिएटेड प्रॉब्लम एंड माय डायनेमिज्म बिकेम माय एनिमी, बट आई सक्सीडेड. नाउ स्लोली आई हैड टू वाइंड अप. नाउ आई आस्क पीपल, इन्वाइट करा, मैं बोला देखो भाई मेरे को कुछ मत दो, आप इसमें भागीदार बनो अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप नाम लो मैनेज एंड स्पॉन्सर्ड बाय, नाम लिख लो, मैं तो अपना नाम कहीं नहीं लिखाना मुद्रा बोल के, अपना कर्म निभाया हमने, हम कर दिया, तो जो भगवान हमसे कराए हम कर दिया, नाम हमसे कोई, आई डोंट बिलीव इन दैट. तो बहुत से कंपनी को बोला चेक पावर दो, कमिटी में ज्वाइन हो, मगर अभी तक तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स तो नहीं आया, मगर लोग बहुत से थोड़े एक्सपर्ट करने को देते, हमारे कमिटी में मेंबर दो, तुम्हारे पास कमेटी मेंबर्स क्या सेवा करे, कुछ भी नहीं करे, खाली नाम दर्शन मूर्ति है. मैं बोला वो सब एक्शन मूर्ति है तो काम आगे नहीं बढ़ता.
1: लेकिन आपकी जो इस कहानी में मैंने एक चीज देखा कि देखने में लगता है कि ये तो कितना अच्छा काम है, ये तो मैं भी करना चाहूंगा, ये तो बहुत सुंदर सेवा है, मुझे भी करना चाहिए, ये भाव लोगों में जरूर आएगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस सुंदर सेवा के पीछे कितना कठोर परिश्रम है, कितना मेहनत है, कितना चैलेंजेस है, और इन सभी परिस्थितियों को पार करने में एक व्यक्ति के अंदर कितनी दृढ़ता होनी चाहिए तब जाकर के वो कुछ ऐसा कर पाता है, ये एक बहुत बड़ी सीख है. लेकिन जब मैं आपकी कहानी को सुन रहा था तो मेरा ध्यान उस टाइम पे गया जब आपने बताया कि आपके परिवार में सभी चिकित्सक थे, सभी डॉक्टर थे, और इसलिए चिकित्सक बनना या डॉक्टर बनना जायज ही लग रहा था. लेकिन आपने ये भी बताया कि उस दौरान आपको बहुत मॉनेटरी सिचुएशंस आए, बहुत सारा आपके सामने ऐसा परिस्थिति आया जहां पर धन की वजह से आपको कॉलेज से निकाला गया या हॉस्टल से निकाला गया, लेकिन फिर भी आप उठ खड़े हुए और अपने पढ़ाई की. बार बार ये जो गिरना और उठना चलता रहा, उसमें आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से गिरने के बावजूद भी आप खड़े हो जाते थे, या आपके अंदर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप कभी झुके नहीं?
0: बस मैं ईश्वर की कृपा ही समझता हूँ, और कुछ नहीं है. अपन तो बिल्कुल स्मॉल है, वी आर वेरी स्मॉल, इट इज ऑल, ही इज द पावर, ही इज द पावर विद इन अस. मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा नाम हनुमान है, बोला भाई ये तो शक्ति है
1: जी. जैसे हनुमान के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं था, वो उन्होंने पर्वत भी दिखा, ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने पर्वत हाथों में उठाया और संजीवनी बूटी एक लेने गए थे, पूरा पर्वत ले आए, तो ऐसे ही आप एक का भला करने निकले थे और आपने पूरे पर्वत समान लोगों, मतलब एक बहुत बड़े हिस्सा का आपने जीवन कल्याण किया है, बहुत बड़े समुदाय का जीवन कल्याण किया है. एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है कि जब आप बॉम्बे गए पढ़ने के लिए और आपके परिवार को आवश्यकता थी उस समय एक ऐसे व्यक्ति की जो कि कमा करके डायरेक्टली उनको सपोर्ट करे, बट उस समय आपने अपना बहुत बड़ा जो मोटो है या आपके जीवन का उद्देश्य है, आपने समाज सेवा, भले चिकित्सा के द्वारा ही हो, लेकिन आपने उन बच्चों के प्रति अपना जीवन और अपना समय, अपनी शक्ति को लगा दिया जिनके प्रति लोगों का इतना भाव नहीं होता है. लोग उन लोगों से बहुत बेउम्मीद होते ही हैं, उनके परिवार वाले भी बेउम्मीद होते हैं कि ये तो मेंटली चैलेंज्ड हैं, मानसिक रूप से ये थोड़े से उतने परिपक्व नहीं हैं, आगे चल के क्या कर पाएंगे, तो परिवार वाले काफी दुखी होते हैं. ऐसे में आपने उनका हाथ थामा, आपके परिवार ने क्या साथ दिया आपका या आपके परिवार वाले?
0: मेरा ये एक बड़ा यज्ञ है, मैं तो बोलता हूँ ये बड़ा यज्ञ है, यज्ञ में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग मदद करे, अकेला यज्ञ एक आदमी नहीं करता है, एक यज्ञ जो है बहुत ग्रुप से बनाया जाता है, उसमें ज्यादा भागीदारी तो मेरे पत्नी है डॉक्टर पॉसिबिलिटी निर्मला राव, तो बाद में मेरे बच्चे, मेरा पत्नी भी डॉक्टर है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, मैं बिफोर मैरिज इंटरव्यू करा, मैं शी कम्स बहुत बड़े फैमिली से भी आते, उनके दो ब्रदर्स मिनिस्टर थे, तो बहुत बड़ा योगदान मेरे बीवी का था, क्यों बोलते मेरे ओन प्रॉपर्टीज भी बेचना पड़ा, बहुत से मरतबा मेरा ओन हाउस भी मैं हाइपोथिकेट करना पड़ा, परसों जनवरी में रिलीज करा, फिर अभी परसों मैं ज्यादा अभी सैलरी नहीं दे सक रहा था, वैसे स्टेज में आ गया, तो क्या करा मैं एक बैंक को ओवरड्राफ्ट देने के लिए, एक फ्रेंड जो है डॉक्टर राम करी बोल के है, उन्होंने एक बैंक से इंफ्लुएंस डाल के मैं भाई डॉक्टर साहब को मिनिमम 1 करोड़ ओवरड्राफ्ट दो, मेरे को सैलरी टाइम पे देने का है, मेरे को थोड़ा 1-6 महीने में संभाल लिया ना आगे आगे जा सकते, तो ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी करने के लिए फिर मेरा घर हाइपोथेक करना पड़ रहा, अभी वो प्रोसेस में है। तो कभी मेरे मिसेस मेरे पत्नी जो है बीच में नहीं आया, ये मत करो वो मत करो, मैं जो भी करा उसके साथ दिए, वो लोग मेरे साथ भी तकलीफ उठाए। मेरे को 2 डॉटर्स है, एक जो है ऑस्ट्रेलिया में है, वो जो है फैशन डिजाइनर है। मेरे सेकंड डॉटर जो है, तो बड़ी डॉटर का नाम ममता राव है, छोटी डॉटर का नाम नम्रता, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है वो भी, उसको भी मैं सुपर स्पेशलिटी कराया, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। ये बहुत डिमांड ब्रांचेस थे, नियोनेटोलॉजी वो है। मैं बोला नहीं, जो सोसाइटी में शॉर्टेज है उसको दो, तुम ज्यादा लोगों को सर्विस कर सकते। वैसे मेरे सन इन लॉ भी है, मेरे दामाद जी डॉक्टर आनंद प्रसाद, उन्होंने भी नियोनेटोलॉजी करना चाह रहा था, तो आई हैड टू बैप्टाइज हिम, बैप्टाइज करके न्यूरोलॉजी में शिफ्ट कराया। वो टाइम पे काउंसलिंग जरूरत रहता, गाइडेंस जरूरत रहता, और एक सज्जन मैं सब लोग मेरे बहुत से दोस्त थे इंग्लैंड में अमेरिका में, मैंने इंग्लैंड को अभी आना मुश्किल है वो ये बोले, तो मैं इंटरनेट में सर्च करके 6 इंडियन कंसल्टेंट को ढूंढ निकाला न्यूरोलॉजिस्ट को, उसमें जो 3 लोग बहुत बड़ा इंटरेस्ट बताया, उसमें और एक केरला का आदमी बहुत इंटरेस्ट बताया, डॉक्टर साहब यू सेंड बैक योर सन इन लॉ, आई विल टेक केयर ऑफ हिम एंड आई विल बी हैप्पी टू ट्रेन माय बॉयज बैक होम, इंडिया नीड्स। वो आदमी अभी अमेरिका में है, वो बहुत हेल्प करा हमारे सन इन लॉ को, विद इन 15 दिन में उन्होंने वीसा भेजा दिया, वो हम भेजा दिया, वहां जाके हॉस्टल में अकोमोडेशन दिया, यू हैव टू पे ओनली फॉर द हॉस्टल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द हॉस्पिटल। तो मेरा सन इन लॉ न्यूरोलॉजी बना के, वो न्यूरोलॉजी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी हैदराबाद में नहीं था।
1: इसका मतलब ये केवल ऐसा नहीं है कि आपने जैसे पहले भी कहा कि केवल आपका सामर्थ्य नहीं है, कई लोगों का योगदान है इस यज्ञ में, जिसमें आपका पूरा परिवार भी है सम्मिलित और आसपास के आपके दोस्त साथी सभी सम्मिलित हैं। लेकिन ये जो बात आपने कही कि जब लोग उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई बार वो केवल धन संपदा और वैभव ऐश्वर्य ये सब कैसे प्राप्त हो उसके लिए सोचते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि समाज में अभी किस चीज की आवश्यकता है, समाज में किस चीज की नीड है, उस आवश्यकता को परिपूर्ण करने के लिए मैं अपनी उच्च शिक्षा का समय लगाऊं। ये सोच जो है बच्चों में या युवाओं में डेवलप करना बहुत जरूरी है, जो कि आपने किया अपने बच्चों में भी और अपने जैसे परिवार वालों के लिए आपने कहा, और इसके वजह से आज उनके जीवन में ये परिवर्तन हुआ। लेकिन आपके साथ जब उच्च शिक्षा का समय आया, जब आप MD करना चाहते थे और आपको बच्चों के लिए उच्च शिक्षा करना, पीडियाट्रिशियन बनने का आपको भाग्य मिला, उस समय आप वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं कि अगर मुझे पीडियाट्रिशियन नहीं बनकर के अगर मैं जनरल फिजिशियन का MD कर लिया होता तो क्या आपका लाइफ डिफरेंट होता, और आप कुछ बदलना चाहते अगर आप बाय टाइम मशीन पहुंच जाए तो?
0: नहीं, इतना कर नहीं पाता था। ये बच्चों में एक बच्चे भगवान के स्वरूप है, ये दैव, स्वामी जी साई बाबा जी बोलते थे दे आर दैव स्वरूपास, ये लोगों को कोई आशा नहीं रहता, ग्रीड नहीं रहता, नीड नहीं रहता, सो एनीथिंग विदाउट नीड एंड ग्रीड इज डिवाइन।
1: नहीं, कोई भी चीज जो कि लोभ और आकांक्षाओं से जो परे है वो बहुत दिव्य होता है, और बच्चे जो है बड़े दैवी स्वरूप के होते हैं। इन बच्चों की जब आप सेवा करते हैं तो ये स्पेशल बच्चे हैं, इनकी आवश्यकताएं अधिक होती हैं दूसरे बच्चों से, इनके प्रति समय और सामर्थ्य और व्यक्ति का जो उदारता है वो उसका सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा चाहिए रेगुलर बच्चों से। कैसे कंपेंसेट कर पाते हैं आप समय को?
0: बहुत से बच्चे वो मैं जब टाइम पे स्टार्ट करता था मंदबुद्धि बच्चे बहुत रहते थे, अभी मंदबुद्धि बच्चे कम हो गए। क्यों बोले तो साइंस बहुत एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, मगर दूसरे किस्म के डिसेबिलिटीज आ रहे हैं भाई। ऑटिज्म बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फीचर है। बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल रहता, दिखने में बिल्कुल नॉर्मल रहता, मगर उसका प्रवर्तन बहुत अजीब रहता है। एक जगह नहीं बैठता है, ऊख तोड़ता फोड़ता, घर से बाहर निकल जाता, एक बंगले से और एक बंगले में कूदने को भी जाता। उसको को ये डेंजर है बोल के पता नहीं लगता, गर्म की चीज भी पकड़ लेता है, लोगों को मारता काटता। ये बहुत बड़े दुख की बात रहता है फैमिली में। एक बच्चा ऑटिज्म है तो अब उसके अंदर में बहुत बड़ा रिसर्च करा, तो अभी दवाएं लिखता हूँ मैं, बहुत से दवाएं लिखता हूँ, बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट भी है दवाएं नहीं लिखना। मेरा लॉजिक क्या है, मैं तो दवाया कोई चीज नहीं बना रहा हूँ। अवेलेबल मेडिसिन आई एम यूजिंग, दोज मेडिसिन वर यूज इन एडल्ट्स आर बीइंग यूज इन एडल्ट्स इवन टुडे। वही दवाएं कम मात्रा में बच्चों को दे तुम, तो ये आर्टिस्टिक बच्चे है। अभी मेडिसिन यूज करता हूँ, अभी लोगों को मैं समझाने को कोशिश कर रहा हूँ, जो भी चांस मिला वो एडल्ट मेडिसिन से कम मात्रा में बच्चों को यूज करे तो क्या है, उन्हें स्टेबल हो जाता। अभी 90% बच्चों को 90% बच्चों को क्या कर रहे हैं ये लोग, तो मेडिसिन से क्या है। अभी मेडिसिन के एक मेंटेलिटी है, रिहैबिलिटेशन फील्ड में अभी मोस्ट ऑफ लेडीज आर डोमिनेटिंग, लेडीज एंड नॉन डॉक्टर्स, तो उसमें क्या है, वो लोगों को मैसेज नहीं जा रहा। वो लोगों को कन्विंस करना बोल तो बहुत पब्लिसिटी करना पड़ता, ये जो जो बच्चों को बेनिफिट हो रहा है वो लोगों को बताना पड़ता। देर शुड बी लॉट ऑफ सेशंस दैट मेडिसिन आर यूजफुल फॉर दिस चिल्ड्रन। मैं पीडियाट्रिशियन रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट एंड आई हैव डन पीएचडी इन साइकोलॉजी ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी। एट द एज ऑफ 50 आई हैव रिटन एग्जाम फॉर 5 days, देन आई टुक 3 years टू सबमिट माई थीसिस एंड गॉट द पीएचडी। Not honorary PhD as a showering, नहीं है। I got President of India award 7 times. ये पद्मश्री परसों आया, 5 times it was recommended. अभी 6th time बोला मैं ये last chance लेता हूँ self nomination. अब मोदी जी साहब के ये हया में self nomination भी है, तो मैं मेरा PA को बोला, वो मेरे computer उतना नया था, तो बोला भाई तो चलो upload करते जा, किसी को नहीं बोलेंगे। आई डिडंट टेल माय वाइफ आल्सो। जनवरी में फोन आया, होम मिनिस्टर से फोन आया, देयर इज अ गुड न्यूज, वी वांट टू वी विल कांग्रेचुलेट यू। मैंने बोला सर क्या बात है, बोलते ऐसे ऐसे यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर पद्म अवार्ड। वो बोले नहीं डू यू एक्सेप्ट, मैं बोला श्योर इट इज ऑनर। तो वैसा हुआ, जनवरी में अनाउंसमेंट हुआ, उगादी के दिन एग्जैक्टली 1 year नाउ टूडे। और एक चीज क्या है, इंसिडेंटली युगादि के दिन मैं स्वीकार स्टार्ट करा।
1: अच्छा। तो स्वीकार को भी युगादि के दिन पे उसके जन्मदिन की बहुत
0: मार्च 17, 1977, 47 years हो गए अभी। तो अभी तक तो चल रहा है, अभी तो ज्यादा लोग ऑल ओवर द कंट्री से, फॉरेन से भी आ रहे हैं लोग ये मेडिसिन दे रहे हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो सम्मान है, जैसे आपने बताया 7 बार आपको राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ और इस वर्ष 2023 का आपको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, क्या इन सम्मान और पुरस्कारों की वजह से आपकी जो जर्नी है, जो यात्रा, वो थोड़ी सहज होती है या मुश्किलात उतनी ही आते रहते?
0: मुश्किलात में तो कुछ कमी नहीं हुआ, मगर एक ही क्या है, मैं आई गॉट रिचार्ज, माई एनर्जी गेट्स रिचार्ज। मैं डिमोरलाइज हुआ तो ये सब चीजें मेरे को रिचार्ज कर देते, आगे बढ़ाते रहते, प्रोपेल करते रहते, तो कहीं रुक नहीं पाया। ये जर्नी तो चलाते जा रहा हूँ आज तक भी। तो ये पद्मश्री पुरस्कार आने के बाद बहुत से लोगों को मालूम हुआ, उससे पहले बीच राय अवार्ड भी आया था, वो भी बहुत बड़ा अवार्ड है, प्रेसिडेंट से दिए हुए मेडिकल फील्ड में बड़ा अवार्ड है वो भी, मगर पब्लिक को, जनरल पब्लिक को नहीं मालूम।
1: जब आप राष्ट्रपति भवन गए पद्मश्री सम्मान लेने के लिए और जब आप राष्ट्रपति महोदया से मिले, तो क्या बातचीत हुई आपकी या कैसा रहा आपका ये?
0: नहीं अभी सब तो मैं आपको भिजाना, मैं भिजाता हूँ, मेरा वीडियो है अभी सब थे।
1: आपका स्वीकार का मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा है, बट ये पुरस्कार का आप बता रहे?
0: पुरस्कार थे, PM साहब थे, अमित शाह थे, पूरे जयशंकर जी थे, शांतिवनम के एंड दाजी थे
1: जी,
0: उनको मैं सामने देखा था तो उनको भी जाके चरण प्रणाम करा कि मोदे सब डिवाइन सोल्स है, वो लोगों को मिलना तो मुश्किल है। मैं बोला अपोजिट में, मेरे अपोजिट में बैठे थे, मैं उठ के जाके उधर चरण प्रणाम करके आया। तो वो एक सौभाग्य है, जब दर्शन हुआ तो भाई चलो अभी पीएम साहब वाला सबको मिले, एक एक को आके एक एक को करचालन करे, तो उनके सामने अपन बात नहीं कर सकते, इतना बड़ा पर्सनालिटी है ना, अपन अपना मुंह बंद हो जाता। तो फिर भी बोला मैं सो एंड सो और क्या बात कर सकते उनसे
1: जी।
0: इस सच्चे पर्सनालिटी एक, बस अभी क्या बोल सकते, अभी देखना है अभी कैसा कैसा अपना कंट्री तो आगे बढ़ रहा है। अब उन्होंने इतने चीजों के सामना कर रहे हैं, हम तो नाचीज है, हम जो चीज को हम सामना कर रहे हैं तो ये तो बहुत कम है।
1: ये मुझे जो चीज समझ में आता है कि आप वास्तव में आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन आप उसका बिल्कुल भी अभिमान नहीं करते हैं और आप बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही नम्र चित्त हैं। इसीलिए मुझे ये उत्सुकता थी कि आपके सामने जब राष्ट्रपति महोदय थे, क्योंकि वह भी एक बहुत ऐसी नम्र चित्त व्यक्तित्व है जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन बिल्कुल ही निर्माण है, कोई अभिमान नहीं है, बहुत ही परेशानियों का सामना करते हुए आज वो उस मुकाम पे पहुंची है। तो मुझे वही लगा कि जब ऐसी दो हस्तियां आमने सामने होती है तो कैसा अनुभव होता होगा, इसलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा।
0: जी जी जी।
1: मुझे एक और चीज ये जानना था कि ऐसे आपके जीवन में आपने इतने सारे बच्चों के साथ समय गुजारा है, उनको समय दे करके, उनको चिकित्सा के द्वारा, उनको काउंसलिंग के द्वारा आपने बेहद मदद पहुंचाई है, स्वीकार, उपकार, रक्षा,
0: आश्रय
1: सुरक्षा, इन चार माध्यमों से आपने उनके जीवन को एक सर्वांगीण विकास का रास्ता दिया है। इस दौरान आपके सामने कोई ऐसा केस, ऐसा कोई बच्चा आया हो जिसकी कहानी आपके दिल को छू गई या जिसके द्वारा एक आपको शिक्षा मिली, कोई ऐसी कहानी आई क्या? दो
0: ऐसा तो बहुत से है, एक बात बोल के भी नहीं है, बहुत से है। मैं एक दिन एक स्वीकार के नाम पे एक प्लॉट लिए थे और वो साइड को जाने के लिए एक हार्डवेयर शॉप के पास रुका, वो इंक्वायरी कर रहा था, एक बच्चा आके नमस्कार करा, साहब मैं स्वीकार में पढ़ा, मैं स्वीकार में स्वीकार का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ अभी स्टील शॉप में काम कर रहा हूँ। तो मेरे साथ और एक दोस्त थे, उन्होंने बहरेन से आए हुए थे, आनंद बाला बोल के, बहुत अच्छे इंसान है। तो उन्होंने बोले डॉक्टर साहब कितना खुशी होता वो आदमी आके हंसते हुए आपको विनम्रता से नमस्ते कर रहा है। बोला हाँ भाई मेरे भी खुशी होता, वही आनंद है, वही हमारा प्रॉपर्टी है, हम तो ज्यादा कुछ कमाए नहीं है मगर भगवान नहीं गिरा है हमारे, आनंद है। तो आत्मतृप्ति बोलते है ना, आत्मतृप्ति है
1: जी, आत्मतृप्ति
0: जब नहीं रहता आदमी दुखी रहता।
1: हाँ, जी
0: दुखी रहता
1: आत्मतृप्ति ही आनंद है, और आनंद जो आपने बताया वो दूसरों की खुशी में। मुझे इसमें एक और चीज जानना था कि जैसे ये तो एक आपने ऐसा किस्सा बताया जो कि किसी बच्चे ने जिसने कुछ उपकार प्राप्त किया है स्वीकार के द्वारा और उसके जीवन में संवर्धना हुई और फिर वो आपके सामने आया, क्या कभी कोई ऐसे लोगों की कहानी आपको सामने आती है या आपको याद आता हो कोई ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा किस्सा जहाँ लोग आपके जो अगेंस्ट थे, जो आपके विपरीत दिशा में खड़े थे, आपके कार्य को देखते हुए धीरे धीरे वो बदल गए, कोई ऐसा कोई कहानी आपको याद आता?
0: नहीं, एक सेइंग है, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ, नो गुड वर्क कैन एग्जिस्ट विदाउट क्रिटिसिज्म, नो गुड वर्क कैन एग्जिस्ट विदाउट क्रिटिसिज्म, नो गुड वर्क कैन प्रोग्रेस विदाउट रेसिस्टेंस। मेरे को जितना क्रिटिसाइज कर रहे थे उतना आगे बढ़ते गया, मेरे को जितना रुकावट बढ़ते गया मैं, मेरा प्रॉब्लम और इजी होता गया। मेरे ऊपर कोर्ट केसेस है, मैं एक्सेस बनाया बिल्डिंग, मैं बोला था मेरा प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो गिराने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया गया इसको डिसमेंटलिंग नोटिस, वो भी बनाने के 15 साल के बाद। मैं बोले थोड़ी दुष्ट शक्तियां रहते है, ये दुष्ट शक्तियां क्या है, यज्ञ भंग करने के लिए राक्षस संतान भी रहता ना, ये मैं कर रहा हूँ यज्ञ है, वो यज्ञ को भंग करने के लिए बहुत से दुष्ट शक्तियां पैदा होते। तो मेरे को कोर्ट को खींचे, मैं बोला चला था क्या, अब कड़पा में 10 एकड़ तुम्हारे कई को, हमारे को दे दो 9 एकड़। कलेक्टर नोटिस दे दिया, वहां भी केस चल रहा, तो केस मेरे फेवर में आया। मगर दुखी हो जाते हम, इतना परेशान होना पड़ता, कोर्ट को जाना, वो ये सब बड़ी बड़ी चिंता की बात है। अब बिल्डिंग गिराना बोल के बोल नोटिस दिया तो कोर्ट को जाना पड़ता। मैं 1-3-4 मरता गया, मैं बोला भाई मैं कोर्ट को नहीं आता, क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या? हम अच्छे भावना से बनाए, मेरा तो प्रॉपर्टी नहीं हो, एक कुर्सी भी मेरा नहीं हो। तो मेरा पीए को लगाया, एक बच्चा है, यंग बच्चा है, पूरा उन्हें कोर्ट को घूमता, उसको पर वो GPA दे दिया, वो पूरा कोर्ट को उन्हें फिरता है। तो इतने संघर्ष करना पड़ा मेरे को, कहीं इजी वर्क नहीं चला मेरा। आज भी बहुत से बड़े बड़े बहुत पैसा ऐसे वाले नहीं दिए मेरे को पैसे, छोटे आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं रहता, उन्हें मंथली पेंशनर है तो साल को एक मरतब आके 1-20 हजार दे के जाता था। डॉक्टर साहब, अब मैं डॉक्टर साहब को मिल सकता हूँ क्या? नहीं, बराबर मिल सकते। मेरे फोन आए नीचे से, एक साहब है हर साल अपने को 20 हजार देते, उन्हें मिलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो ठीक है भाई, लेको चलते के व्हील चेयर में लाओ। नहीं नहीं, विद सपोर्ट इज वॉकिंग। नहीं, व्हील चेयर में लेके आ, बोला ये रिफ्यूज टू कम ऑन व्हील चेयर। तो आदमी को पकड़ के सपोर्ट से आ गया ऊपर, मैं उठ के नमस्कार करा, पेट में मुंडी डाला। नहीं नहीं, आप उठना नहीं, आप महान है। मैं बोला मैं कहां से महान हूँ, आप इंजन है, मैं इंजन हूँ, बगैर इंजन का इंजन नहीं चलेगा,
1: इंजन नहीं चलेगा बगैर फ्यूल के, नहीं चल सकता।
0: आपके आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बहुत एजेड था आदमी, मैं ऐसे झुक के नमस्कार किया तो वो रो लिया आदमी। मैं बोला नहीं नहीं, ये आप भी भागीदारी है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, यज्ञ एक आदमी से नहीं होता। बार बार बोलता हूँ, कोई लकड़ी डालता, कोई घी डालता, कोई पंचदान डालता, कोई प्रेयर पढ़ता। मतलब आप सब लोग भागीदारी है इसमें, तो अपने अपने अकाउंट सेपरेट है। उसके बाद ईश्वर के पास ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, बेनामी अकाउंट नहीं है वहाँ। जो आप ठीक काम करते हैं, नहीं के करते हैं, वहीं जाता है, सेपरेट अकाउंट में जाता है। मैं तो खाली एक इंसान हूँ। तो दूसरे लोग मेरे को एक दिन नीचे आ रहा था बंगले, थर्ड फ्लोर से, मेरा ऑफिस थर्ड फ्लोर पे, डॉक्टर साहब आप इतने लोगों को पैसा पूछते, मैं अकेला दे सकता हूँ पैसे, ऐसा देखा मैं। तो मैं मेरे बच्चे अच्छा कर दो देता। मैं बोला मैं नहीं कर सकता आपके बच्चे को, ईश्वर मेरे को सब कुंजियां नहीं दिया, थोड़ा ज्ञान दिया है, थोड़ा बुद्धि दिया है, थोड़ी कुंजियां दिया है, उसी को ऑपरेट करता हूँ, तो उसी की कृपा है, आप उसी को पूछो, मैं नहीं दे सकता, अब मैं आपके पैसा भी न को। तो फिर एक बात बोला, आप ऊपर वाले से बिजनेस कर रहे हैं, आप मेरे से बिजनेस नहीं कर, आपके जरा बुद्धि जो है चेंज होना है। मैं हमेशा ये करता हूँ कि किसी को तो नहीं छोड़ता, तो उसको एक झलक तो देता हूँ। क्यों बोलते हो? विद्यादान, हर एक को एक झलक दे दो। बस मैं ये तो समझा दिया, देखो आपका बच्चे को मैं अच्छा नहीं कर सका, देखा बहुत से बच्चों में तो फायदा हो रहा ना, ये स्वार्थ छोड़ दो। जब आपका नियत ठीक रहता है, भगवान की कृपा आपके ऊपर आता है।
1: ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जब व्यक्ति का नियत साफ होता है तो मुराद हासिल होता है, अर्थात जब उसकी नियत साफ है, दिल साफ है, तो ऊपर वाला भी बैठा होता है मेहरबानी उसके ऊपर झड़काने के लिए, उसके ऊपर मेहरबानी होती रहती है। मुझे आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना है, वो ये कि आज कई लोग, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, युवा जो है, एक दिशा ढूंढ रहा होता है, वो अपने जीवन में कोई जॉब ढूंढ रहा होता है या कोई स्टार्टअप करता है, चाहे वो कोई भी स्टार्टअप हो, उद्देश्य तो उसका यही होता है कि इससे लोगों का भला हो, लेकिन उस रास्ते में चलते चलते कई बार वो इतने उलझ जाते हैं कि जिस उद्देश्य से उन्होंने शुरू किया था उस काम को, वो उद्देश्य पीछे रह जाता है और भागम भाग दौड़ ये बहुत आगे निकल जाता है। क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, कौन सी चीजें एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जिससे वो किसी भी समस्या का समाधान कर सके, या कौन सी वो बातें एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जिससे जो उन्होंने उद्देश्य लिया है उस उद्देश्य को वो मूल रूप से पकड़ के रखे, उसमें कोई गोल मेल या उसमें कोई जो बाहरी तत्वों का सम्मेलन हो जाता है वो ना हो, उसकी प्यूरिटी को कैसे मेंटेन करे, किसी भी यज्ञ के भाव को कैसे संजो करके रखा जा सके।
0: मैं इंडिया में 32 कोर्सेज स्टार्ट करा था, वही माध्यम से क्या है, ज्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग करूंगा, ज्यादा लोग जाके सर्विस करेंगे। एक डॉक्टर मतलब कितने लोगों को सर्विस कर, तो बहुत से स्पेशलिस्ट आना बोल के 9700 स्पेशलिस्ट को मैं डेवलप करा। देयर इज एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वीकार टू द सोसाइटी, बट वेरी फ्यू रियलाइज माई कंट्रीब्यूशन। लोग समझते कि पैसा आता, पैसा कहां से आता, 25-35 thousand ये तो मैं डिग्री बताया, आज एक एक बच्चा जो है महीने को 2-3 lakh भी कमाता है स्पीच एंड ऑडियोलॉजी क्लिनिक लगा के। एक एक कुछ ऐसे क्लिनिक भी है हमारे स्टूडेंट मेरे पास जो पढ़े, जो 25,000 साल को दिए। मैं तो आज बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्पॉन्सर करता हूँ, क्वार्टरली मैं 25,000 देता हूँ हाई स्कूल बच्चे को। मैं उसको डिग्री कराया और कड़पा में कराया डिग्री, गुंडूर में कराया। मेरा ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, मेरा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट क्या है, वो कोई नहीं सोचा बच्चे। अभी ज्यादा परिवर्तन है जनरेशन में, कोई चीज की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। मैं परसों मीटिंग लगाया तो बोला, मैं बोला भाई तुम समझ रहे हैं कि मेरे पास 25,000 में तुम डिग्री खरीद लिए, क्या कॉस्ट हुआ मेरे को तुमको पढ़ाने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इज माइन, ऑपरेशनल कॉस्ट इज माइन, और कितना हम कितना चीजों का सामना करा, कितना दुखी हो गए तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो मगर अभी बहुत ये लोगों में स्पिरिचुअल नॉलेज के वैक्यूम हो गए, दे आर स्पिरिचुअली सार्व्ड दिस जनरेशन। तो मैं परसों बोल रहा था कृष्णा बहन से, माधवी बहन से और 2-3 लोगों से, हमारे पास ये लोगों का में परिवर्तन लाना है, अपना भी गलती है। क्यों बोले तो भगवान सबको सद्बुद्धि नहीं देता, दे नो द सब्जेक्ट व्हाट इज इन द बुक्स, दे डोंट नो व्हाट इज इन बिटवीन लाइंस, दैट इज ह्यूमन साइंस। ये ह्यूमन साइंस जो ज्ञानी रहते हैं वही दे सकते, ह्यूमन साइंस कोई किताब में नहीं पढ़ा हुआ रहता।
1: ये आपने बहुत ही अंदरूनी बात को टच किया आपने, कि व्यक्ति किताब पढ़ सकता है लेकिन किताब के अंदर में जो ज्ञान निहित है उसको समझ पाना हर एक के बस की बात नहीं होती। और आज का जो जनरेशन है उसे आवश्यकता सबसे ज्यादा अधिक आध्यात्मिक बल की है, आत्मिक बल की है, जिसके वजह से ही लोग इतनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर आध्यात्मिक बल है, आत्मिक बल है, तो वो समस्या कोई समस्या नहीं लगेगी, व्यक्ति उसका सामना आसानी से कर सकता। और दूसरी जो बात आपने कही कि महत्व, कोई भी चीज का जो गूढ़ महत्व है उसको समझना, उसे उस महत्व से सम्मान देना, ये हमारे में कहीं कमी रह जाती है। ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई। आप भारत के कई स्थानों का भ्रमण कर चुके हैं, भारत में कई जगहों पर जा चुके हैं, कौन सी ऐसी बात आपको अनोखी लगती है पूरे भारत में जो कि पूरे भारत को एक करती, भारत को अनेक या विविध बनाने वाली बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कोई एक चीज जो पूरे भारत देश को जोड़ती है आपके हिसाब से वो कौन सी बात?
0: वही सनातन धर्म है, वही स्पिरिचुअल नॉलेज है। विनी पीपल द प्रेजेंट जनरेशन स्पिरिचुअली स्टार्ड, दे आर रनिंग लाइक मैड रेस, पैसा पैसा पैसा, कितना जरूरत है, हाउ मच यू ब्रॉट, हाउ मच यू आर गोइंग टू टेक, हाउ मच हैप्पीनेस इट गिव्स, द मोर मनी आई हैव सीन पीपल दे आर मोर अनहैप्पी, Happiness is not bought with money. तो अभी मैं देखता हूँ अभी जनरेशन में, अभी आगे जनरेशन में चेंज लाना है बोले तो अपने वैसे लोग ही लाना, आध्यात्मिक धार्मिक ये सब स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेना है, बहुत से सनातन धर्म को रिवाइव करना है। अब मोदी साहब ये 5-10 साल में तो बहुत परिवर्तन लाए, बहुत से परिवर्तन लाए। अब मैं माउंट आबू भी गया था, कितना शांति रहता, कितना एक किस्म का आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। See, every human is not a human. In every human being, there will not be humanity. एक हिंदी में कहावत, हर एक आदमी इंसान नहीं होता है, हर एक इंसान में इंसानियत नहीं रहता है। So, people think that having degrees is not a human being, in my view. Having degree, having qualification, having money is inhuman. तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अब मैं 96 lakhs patients को सर्विस दिया, 9,700 स्टूडेंट्स को पीजी डिप्लोमा, पीजी पोस्ट पीजी डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अमिटी यूनिवर्सिटी और माइन, ये कोर्स। अभी क्या है, अभी बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ क्लैश इन देम, बिकॉज द मास्टर ट्रेनर्स आर वेरी फ्यू, दे आर नॉट हैविंग स्पिरिचुअल नॉलेज, दिस गैप इज इन टर्मॉइल। बगैर अटेंडेंस के बच्चे पास होना चाहते, क्लासेस को नहीं आना चाहते, और टीचर सीख रहा उसके ऊपर कुछ तो भी एलिगेशन लगाते, उसको कहीं तो भी फंसा देते। अब टीचर रिजाइन हो जाता, मेरे को मैन पावर नहीं तो कहां से लाना, बहुत बड़ा मुश्किल होता। अभी यही साल से मेरा एक कोर्स डी रिकग्नाइज करे स्पीच एंड ऑडियोलॉजी का, भाई ऑनलाइन उन्होंने दिल्ली से करता है, मेरे पीपल नॉट ट्रेन टू गिव ऑनलाइन इंस्पेक्शन को ट्रेंड नहीं है, जो आदमी उन्हें इंस्पेक्ट कर रहा उन्हें भी ट्रेंड नहीं है। मेडिकल काउंसिल के वजह से रिहैबिलिटेशन काउंसिल है संस्था, वे संस्था में मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ गैप्स आ रहा है

0: लिए चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत बड़ा मोदी जी तो कर रहे हैं, उन्हें अकेले भी करना कर रहे हैं, कोई तो भी करना पड़ता, एक नहीं और 10 लोगों के साथ करना पड़ता। वी कांट गो नेगेटिवली, ऑलवेज वी मस्ट हैव पॉजिटिव वाइब्स। आई बिलीव आई एम ए पॉजिटिव थिंकर।
1: दो चीज जो आपने बताई जो भारत को एक करती है, एक तो आध्यात्मिक भूख लोगों की या आध्यात्मिक आवश्यकताएं लोगों की जो कि समान बनाती है, और दूसरा जो आपने बताया कि वही आवश्यकता जो है जब सामर्थ्य में बदल जाती है तब पूरे भारत देश में हम परिवर्तन ला सकते हैं, भारत को यशस्वी बना सकते हैं जैसे कि आपने बनाया। हम चलते हैं एक रैपिड फायर राउंड की तरह जिसमें मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको एक शब्द में देना होगा। आर यू रेडी?
0: हाँ यस।
1: सबसे पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: सेवा विच यू शेयर अदर पर्सन प्रॉब्लम, विच यू मेक अदर पर्सन लाइफ इजी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दैट इज सेवा, निष्काम सेवा। भाई कुछ अपन कोई लोगों से अपना आनंद क्या, किसी का दुख बांट दिए, किसी को कुछ वेलफेयर का कुछ इसमें अपन हिस्सेदार बने, उसका दुखी में भागीदार कम करे, किसी को संतोष ऐड करे, बस वही सेवा। किसी कोई एक्सपेक्टेशन करना सेवा है, नहीं तो भाई को बहन को मैं सब भाइयों को सबको ऊपर लाया, वो सेवा नहीं है, वो मेरा धर्म था।
1: आशा से परे व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को अगर हम समाधान कर सके तो वो सेवा है।
0: विदाउट आशा वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। भाई बहन को करना तो वो धर्म है, कर रहे हैं। रियल सर्विस इज वन विच यू डू समथिंग टू समबडी हु इज नोबडी टू यू, समथिंग टू समबडी हु इज नोबडी टू यू, दैट इज सर्विस। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग मीन्स लविंग, लविंग इज डिवाइन, डिविनिटी इज गॉडलीनेस।
1: बहुत सुंदर आपने बताया, ये बहुत ही सुंदर बात बताया कि उसके लिए कुछ करें जो आपके लिए कुछ भी नहीं हो और जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हो, उसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वही सेवा है।
0: बस
1: दूसरा सवाल, शांति क्या है?
0: जब आत्मतृप्ति रहता है शांति रहता है।
1: आत्मतृप्ति ही शांति है। सुख क्या है?
0: जब तुम कोई चीज अपेक्षा करते हैं, कोई चीज नहीं पाते हैं, ओ जब दुखी होता आदमी, सो ज्यादा कोई चीज को न्याय कुछ फीलिंग होना नहीं अपने पास, ग्रीडी नहीं, कुछ जो जो भी दिया भाई वो दे दिया, बस मेरा भाग में इतना ही। तो उसमें दुखी होने का सवाल ही नहीं है, बस अरे के कर्मानुसार कर्म सिद्धांत जो करते रहते ना, बस अरे को आना है जाना है, अपना टाइम टेन्योर में अपना जर्नी जब है जितना करे अपन आनंद है। गॉड हैज गिवन मी अ चांस टू डू समथिंग टू समबडी हु इज नोबडी टू मी, एंड दैट टू द नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जब मदर बोलती है मेरा बच्चा बात कर रहा है अभी बहुत अच्छा है, तो हमारा दिल भर जाता है। मैं बोलता हूँ फीस आज क्यों बढ़ाया, मैं आज फीस बढ़ाया, मैं क्यों बढ़ाया, मैं तुम लोगों से अभी क्या करता हूँ, अभी कमा के क्या करता हूँ मैं पैसा, इतने साल ही मैंने नहीं कराया, मेरा 200-300 फीस था 40 साल तक, अभी मैं बड़ा है क्यों बोलते, मैं वैल्यू करने के लिए एवरीथिंग, एनी डॉक्टर क्यूर्स फ्री क्यूर्स नथिंग, कोई चीज पकड़ में आया ना उसका वैल्यू नहीं रहता, उसका वैल्यू तो रहना बोलते पार्टिसिपेशन रहना।
1: इसलिए लोगों के अंदर ये जागरूकता लाने के लिए कि जो चीजें उनके सामने रखी जा रही है वो बहुत बहुमूल्य है, इस वजह से उसका मूल्य आपने थोड़ा बढ़ाया। अगले कुछ सवाल जो है वो बड़े ही शॉर्ट है जिनका जवाब आपको एक या दो शब्द में ही देना है, तो स्वीकार क्या है?
0: स्वीकार टू एक्सेप्ट द पर्संस हु आर नॉट केयर्ड, हु आर रिजेक्टेड इन द फैमिली इवन बाय देयर ओन पेरेंट्स, डिसओन्ड, आई वांट टू एक्सेप्ट दे आर गॉड्स लेसर चिल्ड्रन, फॉरगॉटन चिल्ड्रन ऑफ सोसाइटी, सो दैट इज स्वीकार। वन मस्ट हैव अ बिग हार्ट। मदर इज रिजेक्टेड, शी इज फ्रस्ट्रेटेड, शी इज कर्सिंग द गॉड, क्यों दिया मेरे को ऐसा बच्चा। उसमें यू आर क्रिएटिंग होप टू द पीपल हु लॉस्ट होप, यू आर क्रिएटिंग ए स्माइल ऑन देयर फेसेस।
1: तो इसका मतलब स्वीकार जो है वो आशा है, एक शब्द में अगर बोले तो।
0: हाँ।
1: उपकार क्या है?
0: भाई मैं एक्सेप्ट करने से कोई मतलब ही नहीं है उसको, अगर मैं कोई अच्छा नहीं करूंगा कोई मतलब ही नहीं है। आई हैव टू गिव बैक, गॉड हैज गिवन मी टैलेंट, गॉड हैज गिवन मी एनर्जी, God has given me money also. So, let me give it. Let me create a ray of hope on the others.
1: इसका मतलब अगर स्वीकार किया लेकिन साथ में कुछ वैल्यू नहीं ऐड किया, उसमें कुछ उपकार नहीं किया, तो उस स्वीकारने का कोई मतलब
0: भी नहीं है। मतलब

0: इसका मतलब स्वीकार अगर आशा है तो उपकार उसका अर्थ है। वो स्वीकारने का अर्थ जो है वो उपकार है, कि सही मायने में स्वीकारना अर्थात उसका कुछ उपकार करना। भारत क्या है?
1: एक भारत पुण्य भूमि है। ये जो अपन भारतवासी है, भारत में जन्म लिए है, भारत माता के सुपुत्र है, अपन धन्य है। अपन
0: आखिरी सवाल, हनुमंत राव कौन है एक शब्द में?
1: हम कुछ भी नहीं है, भगवान
0: मैंने कुछ तो है, क्या है वो सोच के बताइए।
1: का देन है और कुछ नहीं।
0: बहुत सुंदर, हनुमंत राव जो है भगवान का दिया हुआ एक देन है समाज को, जिसके द्वारा समाज में इतना प्रकाश फैल रहा है जो कईयों के जीवन के अंधकार को मिटा रहा है। डॉक्टर पी हनुमंत राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद दोबारा हम करना चाहेंगे। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने बहुमूल्य समय हमें दिया, अपने जीवन के
1: थैंक
0: इतने गूढ़ ज्ञान को हमारे साथ शेयर किया। लेकिन स्वागत इसलिए करना चाहेंगे कि आपने जो कहा कि बाकी लोग दुनिया का बहुत भला कर रहे हैं लेकिन आप भी कर रहे हैं, तो आप भी उसी दल का एक हिस्सा है, और मैं तो कहूंगा केवल हिस्सा नहीं, आप एक नेता है जिनके नेतृत्व में बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। दूसरा स्वागत इसलिए भी करना चाहेंगे कि आप दोबारा माउंट आबू आए, रेडियो मधुबन के स्टूडियो में दोबारा आए और दोबारा हमारे श्रोता साथियों के साथ जुड़े, हमसे बातें करें और भी कई विषयों पर बात करें। आज तो समय की सीमा थी इसलिए हम बात नहीं कर सके, लेकिन अगली बार हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस प्रकार से हम ऐसे लोगों का जो हमारे आसपास में है, जो कई प्रकार के मानसिक समस्याओं का शिकार है, उन्हें हम कैसे थोड़ा थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। अगले एपिसोड में दोबारा हम मिलेंगे आपके बीच में एक और ऐसी हस्ती को लेकर के आएंगे जिनके जीवन से हम हमारे जीवन को रोशन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो मधुबन। हर कार्यक्रम ही रेडियो मधुबन का शानदार होता है, लेकिन जी हाँ जरूर, यशस्वी भारत कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा 107.8 FM पर रेडियो मधुबन।

नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए।
1: मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन इसका संबंध हमारे वास्तविक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है वास्तविक जीवन में कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का महत्व। हम सभी कंप्यूटर मोबाइल का उपयोग करते हैं। जब कभी हमारा सिस्टम धीमा हो जाता है, कोई प्रोग्राम अटक जाता है या स्क्रीन पर कुछ भी काम नहीं करता, तब हम एक खास कमांड का उपयोग करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। यह कमांड हमें नियंत्रण देती है, विकल्प दिखाती है और अनावश्यक चीजों को हटाने में मदद करती है। ठीक इसी तरह यदि हम चाहें तो इस कमांड को अपने जीवन में भी समय समय पर उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल यानी नियंत्रण। जीवन में कई बार हम परिस्थितियां, लोगों या अपनी ही भावनाओं के हाथों मजबूर हो जाते हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या, चिंता, ये सब हमारे जीवन को स्लो कर देते हैं। ऐसे में कंट्रोल हमें याद दिलाता है कि हमें अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम हर परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हैं। अब आते हैं ऑल्ट पर। ऑल्ट यानी ऑल्टरनेट, विकल्प। जीवन में जब एक रास्ता बंद हो जाए, जब मेहनत के बावजूद सफलता ना मिले, तब निराश होने के बजाय हमें विकल्पों पर विचार करना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में अलग अलग विकल्प होते हैं, वैसे ही जीवन में भी हर समस्या का एक से अधिक समाधान होता है। ऑल्ट हमें सिखाता है कि हार मानना समाधान नहीं है, बल्कि नया रास्ता ढूंढना ही बुद्धिमानी है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है डिलीट। डिलीट मतलब हटाना, मिटाना। हम अपने जीवन में बहुत सी ऐसी बातें ढोते रहते हैं जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। नकारात्मक सोच, बीती हुई असफलताओं का बोझ, गलत आदतें और कभी कभी ऐसे रिश्ते भी जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर से अनावश्यक फाइलें डिलीट करते हैं और उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन और जीवन से भी इन अवरोधों को हटाने का साहस करना चाहिए। कभी कभी जीवन में समस्याएं इतनी उलझ जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में हमें अपने दिमाग का टास्क मैनेजर खोलने की आवश्यकता होती है, यानी इस स्टेज पर आत्ममंथन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। यह देखना कि कौन सी बातें हमारी ऊर्जा खा रही हैं, मींस हमारी बैटरी लो कर रही हैं, और कौन सी हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। और अंत में स्वयं को सुरक्षित रखना। जैसे हम कंप्यूटर को लॉक करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वैसे ही हमें अपने निजी जीवन की सीमाएं तय करनी चाहिए। हर बात हर व्यक्ति से साझा करना जरूरी नहीं होता। आत्मसम्मान और गोपनीयता भी मानसिक शांति का हिस्सा है। प्रिय श्रोताओं, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कंट्रोल ऑल्ट डिलीट केवल एक तकनीकी कमांड नहीं है, बल्कि जीवन का मंत्र है। यह हमें सिखाता है नियंत्रण रखें, विकल्प खोजें, अनावश्यक चीजें हटाएं और आवश्यकता पड़ने पर नई शुरुआत करें। यदि हम इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा, बल्कि हम मानसिक रूप से अधिक सशक्त और संतुलित भी बने रहेंगे। इसी विचार के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें।
0: प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: जैसा अन्न वैसा मन। तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। मैं वो ही लाइंस दोबारा पढ़ना चाहूंगा जो पिछले एपिसोड में पढ़ी थी। वी ईच डिसाइड वेदर टू मेक आर सेल्व लर्नड और इग्नोरेंट। नो वन फोर्सेस अस, no one decides for us, no one drags us along one path or the other.
2: Beautiful.
1: We are responsible for what we are.
2: Perfect. इसको जितनी बार बार बार भी हम सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार इस पे मंथन करेंगे, तो हमें एक क्लैरिटी आती है हमारी कितनी पावर है, औरों की कितनी पावर है। वन, जब हम कहते हैं कि यू नो ब्लेम मोड में जब हम जाते हैं, विक्टिम मोड में जाते हैं, सेइंग आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ, यू नो मैं ऐसा हूं बिकॉज ऑफ, एंड देन हमारे पास एक लिस्ट ऑफ सिचुएशंस है या एक लिस्ट ऑफ लोग है।
1: बहाने
2: ना, ब्लेम गेम में गए ना, विक्टिम, आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ। तो एक वो अंडरस्टैंडिंग, दूसरी वो अंडरस्टैंडिंग जब हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। ये लाइन हमें दोनों चीजें समझा रही है। वी ईच डिसाइड हु वी आर, नो वन कैन टेक मी ऑन दिस साइड और दैट साइड।
1: ये वाला तो मैं एंगल सोचा ही नहीं था।
2: ये भी तो समझ में आ गया ना,
1: हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो नया एंगल आ गया।
2: बिकॉज वी ईच डिसाइड हु वी आर,
1: वो तो मैं अपने लिए सोच रहा था।
2: दोनों तरफ से समझ में आ जाएगा ना।
1: अरे ये तो बहुत अच्छा लिखा,
2: दोनों तरफ से समझ में आ जाती है अब ये बात।
1: हम जो लोगों को बदलना चाहते हैं, व्हाट अबाउट दैट,
2: दैट विच मीन्स इस लाइन से हमें ये क्लैरिटी से समझ में आता है कि हमारे ऊपर लोगों का कितना असर पड़ सकता है और हमारा लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है, उसकी कितनी लिमिट है। हम ये समझते हैं, सी हाउ पावरलेस वी हैव बिकम एक्चुअली, जस्ट एक्सट्रीमली पावरलेस। हम जो हैं उसका ब्लेम हम लोगों पे डाल देते हैं, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि लोग हमें बना नहीं सकते वैसा। हम अपनी विक्टिम फीलिंग में रह के लोगों पर ब्लेम डाल देते हैं। एंड दूसरा, जहां तक लोगों को बदलने की बात आती है, तो हम पूरी तरह से उनको बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे पेरेंट बच्चे को, हम जैसा चाहे हम उसको बनाएं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, हमने उनको नहीं बदला, हम नहीं किसी को बदल सकते। ये कोटेशन ये भी तो बात अंडरलाइन कर रही है, वी ईच डिसाइड हु वी आर, वी ईच डिसाइड हु वी आर, नोबडी कैन टेक मी ऑन ईदर पाथ दिस वे और दैट वे।
1: यू मीन टू से, अगर मैं, जैसा मैंने बोला था कि मेरी वाइफ को आई लाइक दिस, डोंट वेयर दिस, वेयर दिस, तो अब मैंने बदला उसको या शी डिसाइडेड?
2: शी चोज, आपने तो राय दी, शी चोज,
1: तो मैंने बदला नहीं
2: ना। वी कैन नॉट चेंज एनी वन। चॉइस उनकी किस बेसिस पे थी, उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। सपोज एक पेरेंट बच्चे को, एक हस्बैंड वाइफ को, या वाइफ हस्बैंड को, या फ्रेंड फ्रेंड्स को, कोई भी किसी को एक बात कहते हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुड बी लाइक दिस, सामने वाली आत्मा चूज करती है कि उसको वो करना है या नहीं करना है। चूज करने के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सपोज राइट नाउ आप मुझे कुछ कहते हैं, आप ऐसे नहीं करो या आप ऐसे करो, ठीक है, तो आपने अपनी बात कह दी, राय दी। सपोज आपने डांट के भी राय दी या गुस्सा करके भी दी। सपोज कई बार हम बहुत इजीली कहते हैं, उन्होंने गुस्सा किया ना इसलिए मैंने कर लिया ना, उन्होंने तो सिर्फ गुस्सा किया, ठीक है, करना या नहीं करना फिर भी मेरी चॉइस है।
1: ये बात सही है।
2: अब मैंने जब चूज करना है कि मुझे आपकी बात को मानना है या नहीं मानना है, उसके कितने सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। एक, आपने जो बात मुझे कही वो मुझे सही लगी अपने लिए, आई लाइक्ड इट, कि दिस इज राइट, ये बात मेरे लिए सही है, तो वो तो मैंने फिर उस बात को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करके उस बात को अपना बना लिया कि ये बात मेरे लिए अच्छी है, तो मैंने करना शुरू कर दिया, वन ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन, आई फियर यू, मुझे डर लगता है.
1: थर्ड ऑप्शन, आई लव यू, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी.
2: थर्ड ऑप्शन इज आई वॉन्ट टू प्लीज यू, मुझे सिर्फ आपको खुश करने के लिए या आपका अप्रूवल लेने के लिए, क्या आप खुश रहे मेरे से, आप नाराज ना हो. विच कुड हैपन बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, विच कुड हैपन बिटवीन अ सीनियर एंड अ जूनियर एट वर्क, इट कैन हैपन बिटवीन एनी टू सोल्स, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द सोल. मैं आत्मा, अगेन उस मुझ आत्मा की पावर पर डिपेंड करता है. अगर मुझ आत्मा को वो बात सही लगी अपने लिए और मैंने चूज की करनी, वो मेरी शक्ति है. अगर मुझ आत्मा ने इसलिए चूज किया करना क्योंकि मैं डरती हूं, या मुझे आपको खुश करने के लिए करना है इवन दो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओनली टू प्लीज पीपल, ओनली सो दैट आई डू नॉट लूज पीपल्स एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल, सिर्फ ताकि लोग कहें कि आई एम गुड, मैं अच्छी हूं क्योंकि मैंने उनका कहना माना, उस रीजन से करना. और अगर वो चीज मैं कंफर्टेबल नहीं हूं या मेरे लिए सही नहीं है, तो वो मुझ आत्मा की कमजोरी की निशानी है. चौथा जो आपने कहा कि आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी फॉर एनी रिलेशनशिप, लेकिन मैं मजबूरी से नहीं कर रही, ये करके ये खुश होते हैं, अगर मैं ये करती हूं तो ये खुश होते हैं, तो करने में क्या जाता है, नथिंग. बट प्रोवाइडेड जो डिसीजन मैंने लिया वो करने का इट्स राइट फॉर मी. दूसरे को खुश करना इफ इट्स नॉट राइट फॉर मी, तो वो भी मुझ आत्मा की कमजोरी की निशानी है. तो कितने सारे फैक्टर्स हो गए, तो कौन किसको चेंज कर सकता है.
1: सही बात है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी नई नई शादी हुई थी, सिंस बिलोंग टू हैदराबाद, तो मैंने बोला हमारे घर में हाफ स्लीव जरा अच्छे नहीं. किसी ने फ्रेंड ने पूछा व्हाई आंटी वेयरिंग, इतने पुराने हैं तुम, मॉडर्न पहनो. बोले माय हस्बैंड डज लाइक. लेकिन जब फोन किसी का आया तो मैंने बोला उसको, बोले मैं घर पे नहीं हूँ. तो उससे बोले ये वाला काम मेरे से मत कराइए आप, मैं झूठ वाला नहीं करूंगी.
2: सिंपल, ये ब्यूटीफुल है ना. मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी हर बात मान के, कहना मान के आपके अनुसार चलना है. जो बात सही लगेगी वो करेंगे, जो बात सही नहीं लगेगी वो नहीं करेंगे.
1: उन्होंने कहा मैं अनकंफर्टेबल हूँ इसमें, नहीं कर सकती.
2: आत्मा को ये चेक करना है, मैं किसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं किसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ. कोई और आत्मा डर के या खुश करने के लिए झूठ भी बोल देती फोन पे. ये भी तो करते ही हैं हम एक दूसरे के लिए. दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल. दिस इससे हमें पता चल जाता है कि मुझ आत्मा की कितनी शक्ति है और कितनी मुझे अभी और पढ़ानी है, अपने ऊपर काम करना है. लेकिन कोई और आत्मा होती वो ये भी झूठ भी बोल देती आपके लिए, और फिर सारे जीवन ये कहती क्या करूँ, झूठ बोलना पड़ता है. मैं झूठ बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इनकी वजह से झूठ बोलना पड़ता है, विच इज अ विक्टिम फीलिंग विच मेनी ऑफ अस गिव टुडे.
1: 70s में सिस्टर हमारे पेरेंट्स फादर की जो प्रॉपर्टी थी, दुकानें थी, तो उसमें आसपास पे हम लोग जब शॉपिंग पे जाते थे तो पूरी रोड में कितने कपड़ों की दुकान, पता नहीं क्या क्या दुकानें थी. एक ही दुकान थी जहां उसने लिखा था फिक्स्ड प्राइस, एक सिंगल, और सबको मालूम था एंट्री पे इसका यहां बार्गेन नहीं कर सकते. और दूसरी दुकान वाले मेरे फ्रेंड्स कहते थे क्या करेंगे, धंधा है ना, बिजनेस में तो बोलना ही पड़ता, ऊपर नीचे ये तो युक्ति है, झूठ थोड़ा ही है. तो 99% के अगेंस्ट एक आदमी,
2: पावरफुल सोल. दिस इज द साइन कि चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, चाहे संघ का रंग कुछ भी है, चाहे परिस्थिति, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए उस आत्मा को थोड़ा सा नुकसान भी फेस करना पड़े, हो भी सकता है ना कुछ समय. इट टेक्स टाइम यू नो, व्हेन वी स्टैंडिंग ऑन आवर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स आउटसाइड वर्ल्ड के हिसाब से, हो सकता है कि हमारा कभी नुकसान भी हो थोड़ा सा, ये पॉसिबल है. लेकिन उस फेज को भी क्रॉस करना है. उस हो सकता है दूसरे लोग कम प्राइस पे दे रहे हो, आसपास दे रहे हो, तो ऑब्वियसली क्लाइंट किस तरफ जाएगा. लेकिन धीरे धीरे लोग किस तरफ जाएंगे जहां इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है.
1: फिक्स के साथ उसका प्रोडक्ट भी तो अच्छा होता था ना,
2: यही तो है ना,
1: डुप्लीकेट माल तो नहीं देता.
2: मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटेग्रिटी वाली आत्मा पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आसपास वाली दुकान कम में भी दे दे, लेकिन आपको बहुत जल्दी उनके वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दिखाई देने लग जाते हैं कि ये कम में भी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं ना कि अच्छी चीज दे भी रहे हैं कि नहीं, मुझे दिखने से तो पता नहीं चलती है, लेकिन आई सी द क्वालिटी ऑफ द सोल कि इस आत्मा की इंटेग्रिटी कहाँ है। यही चीज इसने अभी एक्स प्राइस बोली, 5 मिनट के अंदर बार्गेन करते करते उसने 50% उसका कम कर दिया। ऐसी आत्मा क्वालिटी क्या दे रही होगी मुझे चीज की, ये हर एक को समझ में आता है धीरे धीरे। तो वो फेज थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे आप उसी के पास जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर हु वी आर, वी चूज, वी आर रिस्पॉन्सिबल। ये लाइन हमें कितना पावरफुल बनाएगी, और ये लाइन हमें दूसरों को वो जैसे हैं एक्सेप्ट करने में इजी करा देगी। हमारी जीवन की जो लंबी यात्रा चल रही है ना, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करने की, वी कैन नॉट चेंज पीपल। हमारा रोल कितना है दोनों डायरेक्शन में, दूसरे हम पर प्रभाव डाल सकते हैं,
1: ठीक है,
2: हम पर भी संघ का, जैसे आपने बोला पेरेंट्स के वाइब्रेशन, ठीक है, सिचुएशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में भी ग्लोबल लेवल पे, देश के लेवल पे, समाज के लेवल पे सिचुएशंस आती हैं कुछ ऐसी, तो सिचुएशंस लोग हम पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा अपना होगा। सिमिलरली हम लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन
1: मेरा
2: उस आत्मा का होगा। ना कोई हमें चेंज कर सकता है, ना हम किसी को चेंज कर सकते हैं। लोग मुझ पर प्रभाव डाल सकते हैं, मैं लोगों पर प्रभाव डाल सकता हूँ, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता, फाइनल डिसीजन उनका है। सो नीदर अ फीलिंग ऑफ विक्टिम, कि आई एम बिकॉज व्हाट पीपल डिड टू मी, नीदर अ फीलिंग ऑफ अ कंट्रोलर कि आई कैन चेंज पीपल, सी आई चेंज सो मेनी पीपल, आई चेंज दिस वन, आई चेंज माई दिस वन, आई चेंज, नीदर वन इज पॉसिबल। ये आत्मा को बहुत पावरफुल और बहुत लाइट बना देगा। हम दोनों चीजों में आज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जहां अपनी बात आती है अपने संस्कारों की, तो हम बेचारा बन जाते हैं, हम कहते हैं क्या करें, इट्स बिकॉज ऑफ, तो वो पावर हम खो देते हैं। जहां दूसरों के संस्कारों की बात आती है, तो हम कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, इसको तो मुझे बदलना ही है।
1: मेरे पास एक गुस्से का संस्कार ज्यादा था, मैं कितना लोगों को गया, मैंने बोला गुरुजी मुझे शांति चाहिए, गुरुजी मुझे शांति, फाइनली एक गुरु ने बोला कि भाई तू शांति के कर्म तो कर,
2: सिंपल,
1: तो मांगते ही रहता है शांति, कर्म कर करता है शांति के।
2: अब ये इसी लाइन को देखते हैं, उन्होंने आप पर प्रभाव डाला, मतलब एक राय दी, एक बात बोली, आप शांति मांग रहे हैं तो आप शांति के कर्म करें, सिंपल, राय दिया, अगर उस राय का आप पर प्रभाव पड़ा तो आपने उस राय को स्वीकार किया, फिर उसको अपने जीवन में यूज करना धीरे धीरे, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दिस, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। सपोज आपकी स्थिति, आपका संस्कार चेंज हो जाता है, लेट्स से अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है, कि आपके अंदर 6 महीने पहले बहुत गुस्सा था, आप उनसे मिले, उन्होंने कहा आशीर्वाद ब्लेसिंग्स, तुम आज से शांति के कर्म करो, आपने पुरुषार्थ करना शुरू किया, 6 महीने के अंदर एक बहुत नोटिसेबल विजिबल चेंज आया, राइट, लेकिन ये जो चेंज आया, ये चेंज कौन लाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये फील करते हैं कि ये मेरा संस्कार इस गुरु ने चेंज किया, तो भी आप अपने आप को कमजोर बना देते हैं, और अगर वो जो महात्मा है वो अगर फील करते हैं कि मैंने इसको चेंज कर दिया, तो वो भी एक इल्यूजन में रह रहे हैं। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, मेरी कितनी पावर है और कितनी नहीं है, उस महात्मा की, संत आत्माओं की, पेरेंट की, फ्रेंड्स की कितनी पावर है, राय दे सकते हैं, फुल स्टॉप, फिनिश्ड, दैट्स वेयर इट एंड्स, वी बेटर नो दैट, दैट्स वेयर इट एंड्स।
1: ये संत आत्मा की आपने जो बात कही अभी, कि अगर वो समझे कि मैंने इसको ठीक किया, फिर वो सबको छुड़ा दे,
2: हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबको चेंज कर दे, एंड जिसको जो बोले वो इम्प्लीमेंट कर ले, तो कितनी पावर है। अब यही चीज हर पेरेंट को समझने की भी कोशिश है कि पेरेंटल रोल और इन्फ्लुएंस कितना है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, वर्कप्लेस, हम सोचते हम जैसा चाहे, इवन इन एन ऑफिस एक सीनियर ये फील करेगा मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसे लोग हो जाने।

0: चाहिए,
1: इट्स
0: नॉट गोइंग टू हैपन. मैं जैसा चाहूं वैसे सब चलने चाहिए, नॉट गोइंग टू हैपन. हर आत्मा, वो कोटेशन, डिसाइड्स हु दे आर. हमारा रोल इन्फ्लुएंस ऑल्सो हाउ, राइट एडवाइस, सही राय, और उससे भी ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस, सही वाइब्रेशन. अगर जिन्होंने आपको कहा कि तुम शांति के कर्म तो करते हो, मतलब आज से शांति के कर्म करो,
1: राइट, क्या शांति के कर्म करते हो, जो शांति मांग रहे हो,
0: लेकिन वो बात का प्रभाव भी तब पड़ेगा अगर वो आत्मा खुद शांति के कर्म करती है तो. नहीं तो वो तो बात का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा. चेंज तो कर ही नहीं सकते, प्रभाव भी नहीं पड़ेगा. अगर हम एक बात बोल रहे हैं लेकिन हम उसको लिव नहीं कर रहे, तो वो बात तो ऐसे ही उड़ जाएगी.
1: वही बात होगी ना कि मैं सिगरेट पियो, बच्चे को बोलो नहीं पियो. मैं एक बच्चे को बोलूं कि बोल दो डैडी घर पे नहीं है फोन पे, और बोले तुम झूठ मत बोलो, वही बात होगी.
0: तो कितनी पावर है. वन, वी डोंट हैव पावर टू चेंज पीपल. Definitely. We have power to influence people. But that power to influence people will also be there only if we are living what we are radiating and what we are saying to them. Nahi to power to influence bhi nahi hai.
1: This is a very, very, very important
0: point. Power to
1: point.
0: influence bhi nahi hai phir to.
1: Matlab, jo bhi agar supposing main bachcho ko kuch bol raha hu, to pehle mujhe wo karna chahiye. वो मैं करता हूँ तभी जाके उनको असर होगा.
0: पावर टू इन्फ्लुएंस होगा नहीं ना उस बात का, क्योंकि उस बात में पावर नहीं है. फिर किसी की बात को हम क्या कहते हैं, उन्होंने कहा एंड मुझे जैसे टच हो गई वो बात, मुझे मेरे दिल को छू गई, नहीं बोलते हम, दैट थिंग जस्ट हिट मी व्हेन दैट पर्सन सेड दैट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उन्होंने बोला. अच्छा, कई बार हम क्या कहते हैं, ये बात मैंने इतनी बार सुनी है, मुझे तो पता है ये बात, कितने लोगों ने मुझे आज तक बोली थी, कितनी जगह मैंने पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने कही ना तो मुझे जैसे कि जस्ट हिट कर गई. वो क्यों हिट, किसकी बात करेगी? हिट वो बात करेगी जो पावर के साथ आएगी. और पावर के साथ किसकी बात आएगी? जो इम्प्लीमेंट की हुई, जिसको आपने भी एक बार कहा था कि जो तपी हुई बात आएगी,
1: तपस्वी,
0: उसके अंदर पावर होनी चाहिए. तप मतलब क्या? तब मतलब उस बोल में शक्ति, उस बोल में कितनी पावर है. नहीं तो हम किसी को एक अच्छी बात कह भी रहे हैं, अच्छी राय दे भी रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन नेगेटिव है, हम कुछ और कर रहे हैं, हम ऑपोजिट कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस तो वाइब्रेशन का ज्यादा होगा ना, बोल से ज्यादा.
1: जैसे किसी को मैं थर्ड पार्टी की कहानी या 100 साल पुरानी कोई कहानी सुनाऊं और आप बीती सुनाओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मेरे साथ ऐसा हुआ बोलूं तो वो भी बंदे को मेरे इमोशन के साथ वो एक हो जाता है.
0: अगर मैं सैड है ना,
1: क्यों मैं सैडनेस में, तो उसका भी चेहरा ऐसे हो जाता है. और पिक्चर की सुनाओ तो ऐसे अच्छा अच्छा.
0: जब आप पिक्चर की सुना रहे, सपोज आप मुझे यहाँ बैठ के एक स्क्रिप्ट सुना रहे, एक मूवी सुना रहे, तो सिर्फ वर्ड्स है उसके बारे में, वाइब्रेशन नहीं है उसकी.
1: ये वाला तपा हुआ ज्ञान है, एक्सपीरियंस्ड है, मेरा स्वयं
0: तपा हुआ, मतलब वाइब्रेशन ऑफ कन्विक्शन एंड एक्सपीरियंस.
1: हाँ, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस,
0: वाइब्रेशन उसकी आनी चाहिए ना. वाइब्रेशन ऑफ कन्विक्शन एंड एक्सपीरियंस सामने वाले के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव
1: डालता है. स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं कई बार लेक्चर में जाता हूँ सिस्टर, जो हम कंप्यूटर में पढ़ लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, वही अगर आदमी खड़ा होकर रट्टू रट्टू मार के वो बोलते हैं तो मुझे नींद आ जाती है. ऑर्डिनरी आदमी भी जो बिना कागज के, बिना उसके, जब तपा हुआ अपना तपस्या वाला ज्ञान सुनाता है शक्ति से, ऐसे याद मेरा पूरा एक एक वर्ड सुनाई देता है.
0: एक छोटा बच्चा भी हमें सिखा के जा सकता है. सीख तो हम किसी से भी सकते हैं. सीखने के लिए हमें कहीं जरूरी नहीं है ऐसी जगह जाना है. सीखना मतलब दूसरों के गुण, दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होकर उस गुण और संस्कार को अपना बनाना, वो तो हमें किसी के अंदर भी दिखाई दे सकता है. इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीवन. अगर हम अपना एंटीना हमेशा रखे उस डायरेक्शन में कि मुझे कैच करना है, मुझे सीखना है, वील गेट टू लर्न फ्रॉम एवरीवन वी मीट.
1: मैं आज से कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट आई डोंट इवन रिमेम्बर, 30 मोर देन 30 ईयर्स. मैं कुछ ऐसी कर रहा था किसी प्रोड्यूसर से, यू नो, थोड़ा सा झुक के बात कर रहा था, कुछ काम चाहिए था, तो पीछे से कहा था सुरेश भाई, कि आपको शोभा नहीं दे रहा है, यू नो आई वॉज मेकिंग अ ड्रिंक फॉर हिम, तो बोला ये आप मत करिए, आपको शोभा नहीं देता। तो मैं ऐसा हिला, वो कौन था क्या था मुझे आज तक याद नहीं है सिस्टर। उसके बाद मैंने अपनी रेस्पेक्ट रखी, मैंने बोला इतना झुकना नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि कोई कब आके सिखा जाता है, और सारी जिंदगी के लिए वो मुझे सिखा गया, फिर मैं कभी नहीं किया, फिर मैंने मांगा ही नहीं।
0: दिस इज इट, मतलब जिसने कहा वो बात उसकी वो अपने जीवन की धारणा थी।
1: लेकिन मैं दूसरों को देखता था ना कि इनसे वो लोग खुश रहते हैं, ऐसा करने वाले ये बिहेवियर, तो मुझे ना चाहते हुए वो बिहेवियर मैं ट्राई कर रहा था।
0: राइट,
1: तो ऐसा टच किया। आई स्टिल डोंट नो हु ही वाज, यहाँ हाथ लगाया था।
0: सी, अभी तो हम जानते ही नहीं, देखा ही नहीं, पता ही नहीं, लेकिन शब्द में कितनी पावर थी
1: उसकी, फीलिंग में और उसका मेरे बारे में
0: भावना, इंटेंशन। सो वाइब्रेशंस कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। लेकिन इससे अभी हमें क्लैरिटी से समझ में आ जाता है लोगों की हम पर कितनी पावर है और हमारी लोगों पर कितनी पावर है। इसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ये हमारे जीवन जीने के नजरिए को बदल देती है। आज हम अपने लिए कह देते हैं मेरी गलती नहीं, और दूसरे के लिए कह देते ये ठीक क्यों नहीं हो जाता। अपने को चेंज करने के लिए हमें दिखता है कि कितना मुश्किल है। आज अपना एक संस्कार उठा लीजिए, कोई भी एक, एनीथिंग, एनी वन संस्कार, एंड जस्ट सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कभी आज से मैं ये नहीं करूंगा, हो गया। ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता है। जब हमें अपना एक संस्कार चेंज करने में, अपना जिसमें कंप्लीट हमारी पावर है, जब अपना एक संस्कार चेंज करने में एफर्ट, अटेंशन, फिर उसमें भी कभी हम हारते हैं, फिर कभी ओवरकम करते हैं, कभी नहीं कर पाते, इट्स अ जर्नी ना। जब अपना एक संस्कार चेंज करने में इतनी जर्नी, अटेंशन, एफर्ट जाता है, तो हमारे बोलने से दूसरे का संस्कार चेंज हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसा ये कभी कैसे हो सकता है? हम इतना इजीली दूसरों को कह देते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं, ऐसे होने
1: चाहिए। इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम?
0: इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम? क्यों हम बोलते हैं इतना भी नहीं कर सकते?
1: इतनी भी समझ नहीं है क्या तुम में? इतना तो सोचो, उम्र देखो, क्या क्या बोल देते हैं हम?
0: बिकॉज कुछ संस्कार जो हमारे पास है वो हमारे लिए बहुत कम्फर्टेबल है। राइट, सपोज आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो आपके लिए इतनी नेचुरल चीज है, तो मतलब वो कुछ एफर्ट नहीं है ना। सो जो चीज का हमें एफर्ट नहीं होता, तो हम उसको जैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो है ही, मतलब ये कैसे नहीं हो सकता किसी के पास, ये तो है ही। तो आप अभी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, पेड़ को भी हिला सकते हैं। सपोज मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, तो मेरे लिए तो आधा किलोमीटर चलना भी एक एफर्ट है। लेकिन तब उस चीज को देखकर कि कैसे चल रहे हैं, इनको आधा किलोमीटर चलना मुश्किल है, और वो भी कितना धीरे धीरे, ऐसे कोई चलता है क्या? वो भी टेढ़ा होके ऐसे, ऐसे कोई चलता है? तो देन यू विल मेक फन ऑफ मी, यू विल रिडिक्यूल मी, यू विल क्रिटिसाइज मी ऑल्सो, कि इतना भी नहीं करना आता।
1: ये जो आपने बात की, ये क्रिटिसाइज, रिडिक्यूल वर्सेस जो हाथ मुझे आया जिस आत्मा का, ये आपको शोभा नहीं देता। तो सिस्टर मैं उसके बाद हर चीज वो मैंने बांध लिया, मतलब आ गया, कहीं भी कोई भी चीज जो शोभा नहीं देती उसके बाद मैंने कभी नहीं किया, चाहे मंत्री होए, चाहे फिल्म होए, चाहे अच्छे से अच्छा रोल होए, या कोई मतलब दुनिया का कोई किंग बोले क्या चाहिए, जहां शोभा मतलब मुझे जो शोभा नहीं देती, अपने से झुक के अपने आप को गिरा के, कभी लोग भले मुझे बोले एरोगेंट, बड़ा अकड़ू है या बड़ा अहंकार है, नहीं, मैंने उसकी बात को पकड़ ही लिया था।
0: अब उस बात को भी हम और गहराई से देखेंगे, क्योंकि राय दूसरे ने दी, राय किस भाव से दी, किस भावना से दी, किस सिचुएशन में दी, और किस तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए दी, और फिर क्या हमने उसको देखा कि उसने मेरे जीवन को कंफर्टेबल बनाया? मुझे कौन सी चीज शोभा नहीं देता?
1: जो भी रॉयल्टी नहीं है,
0: जो भी रॉयल्टी नहीं है,
1: नहीं करूंगा,
0: नहीं करूंगा। अब इस लाइन को और गहराई से लेना है, जो भी रॉयल्टी नहीं है वो नहीं करूंगा। बहुत सूक्ष्म, जैसे आपने अभी कहा ना कि जो चीज हम कर रहे हैं, जैसे इस पर्टिकुलर लाइन के लिए भी कि ये शोभा नहीं देता, लेकिन ये लाइन इम्प्लीमेंट करते करते मेरे जीवन में अहंकार बढ़ रहा था या नम्र

0: एज इट इज नहीं इम्प्लीमेंट करनी होती। दिस इज द
1: पावर। मैंने दूसरे की दी हुई राय इम्प्लीमेंट नहीं की, मेरे अंदर कुछ जाग गया
0: उसे। That's okay, but उसको
1: और मैं वैसा बन गया, लेकिन
0: That's fine.
1: लेकिन आई एक्सेप्ट कि मेरी, मैंने कभी भी उसको नम्रता से नहीं किया।
0: सो इसीलिए जब हमें कोई राय दे, एनीथिंग, नॉट जस्ट पर्टिकुलर इंसिडेंट, जस्ट अदरवाइज, उस राय को लेना है, अपने लिए चेकिंग करनी है,
1: बढ़ता गया मेरा,
0: मेरे लिए क्या कम्फर्टेबल है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर उस राय को इम्प्लीमेंट करना है। सपोज हमने राय को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हमें लगा कि नहीं इतना नहीं ऐसे, फिर हमें उसको चेंज करना है। तो यही जो आप कह रहे थे पहले कि हम बहुत इजीली लोगों को कह देते हैं कि तुम इतना भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर सीइंग पीपल थ्रू आवर संस्कार। आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के थ्रू अगर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पर यू नो एडवाइस देंगे या कमेंट करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी राइट फॉर मी।
1: सही बात।
0: और आप इतना इजीली मुझे कह देंगे, इतना भी नहीं कर सकते,
1: चार रोटी नहीं खा सकते, हाँ, तो दो ही खाते।
0: सो वी आर सीइंग पीपल थ्रू आवर संस्कार, वी हैव टू सी पीपल थ्रू देयर संस्कार।
1: सिस्टर, देयर संस्कार का मतलब ये है कि हम उसको कहीं ना कहीं इस तरह बोल के वीक भी तो फील कराते हैं ना।
0: राइट।
1: ये मैं बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा अगले एपिसोड।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: वी ईच डिसाइड हु वी आर, नो वन ड्रैग्स अस अलोंग वन पाथ और द अदर, व्हिच मींस वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हु वी आर and cannot blame situations, past or people. It also means other people will choose their path. We cannot force them to change. We can give our opinion to people. To accept it or not is their choice. They can accept because they found it right, or they fear us, or they seek our approval and want to please us, or they will do it for our happiness. Whatever may be the reason, choice and decision is theirs. We have not changed them. People and situations can influence us, but the final decision will be ours. We can influence people, but the final decision will be theirs. No one can change us, and we cannot change anyone. Neither a victim feeling that we are who we are because of others, nor a feeling of being a controller. When we give advice to others, our vibrations and words both radiate to them. If we believe and live that advice, if it is a part of our energy field, then our vibrations and words will be in harmony and will create a powerful impact on them. Our vibrations influence others more than our words.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 55 9 660.

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, व्हेरेवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वांट, सो देन इट्स माय चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस। आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी। अहो ऐकलत का हो आमचा रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।

भारत के अनेकों रंग हैं, अनेकों भाषाएं हैं और साथ में हैं अनेकों प्रदेश जो मिलकर निर्माण करते हैं भारत का। तो चलिए आपको ले चलते हैं भारत के दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित उस राज्य में जहां वास्को द गामा सबसे पहले व्यापार के लिए आए थे, और करीब से जानते हैं इस जगह के सभी पहलुओं को। चलिए चलते हैं केरल। केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर स्थित है। स्वतंत्र भारत में जब छोटे छोटे रियासतों का विलय हुआ तब ट्रावणकोर तथा कोचिन रियासतों को मिलाकर 1 जुलाई 1949 को ट्रावणकोर कोचिन राज्य बना दिया गया, लेकिन मलबार मद्रास प्रांत के अधीन ही रहा। बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत ट्रावणकोर कोचिन राज्य तथा मलबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का निर्माण किया गया। इस राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। केरल का इतिहास अपने वाणिज्य से निकट से जुड़ा है, जो हाल तक अपने मसालों के व्यापार के इर्द गिर्द घूमता था। भारत के स्पाइस कॉस्ट के रूप में विख्यात प्राचीन केरल ने विश्व भर के पर्यटकों और व्यापारियों की मेजबानी की है, जिनमें शामिल है ग्रीक, रोमन, अरबी, चाइनीज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। इनमें से लगभग सभी ने इस भूमि पर अनेक रूपों में, जैसे स्थापत्य, व्यंजन विधि, साहित्य में अपनी छाप छोड़ी।

केरल शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। सामान्यतः कहा जाता है कि चेर स्थल और कीचड़ और अलम प्रदेश शब्दों के योग से केरल शब्द बना है। केरलम शब्द से ये अर्थ भी निकलता है कि वो भूभाग जो समुद्र से निकला है अथवा समुद्र और पर्वत का संगम स्थान है। केरल को प्राचीन विदेशी यायावरों ने मलबार नाम से भी पुकारा है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि केरलम यानी केरों का देश या नारियलों का देश। पौराणिक मान्यता है कि परशुराम की कुल्हाड़ी से केरल की उत्पत्ति हुई। प्रारंभ में लोग पहाड़ी इलाकों में रहते थे। प्राचीन प्रस्तर युग के कतियब खंडहर केरल के कुछ भागों से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन खंडहरों के बाद महाप्रस्तर स्मारिकाएं आती है जो केरल में मनुष्य के अधिवास की प्रामाणिक जानकारी देती है, जो अधिकतर श्मशान रूप में है। कूड़ाकल्ल यानी छतरी नुमा चट्टान, टोपीकल्ल यानी टोपी नुमा चट्टान, कल मेशा यानी पत्थर से बनी मेज, मुनियरा यानी मुनियों की खोटी, नन्नंगाड़ी एक तरह की कब्र अथवा पात्र जिसमें अस्थियां डाली जाती है, आदि विभिन्न प्रकार की महाप्रस्तर युगीन कब्रें खोज निकाली गई है। इनका काल ईसा पूर्व 500 से ईस्वी सन 300 तक माना जाता है। अधिकतर महाप्रस्तर युगीन स्मारिकाएं पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त, ये इस बात का प्रमाण है कि आदिकालीन अधिवास स्थान वही था। केरल में आवास केंद्रों के विकास का दूसरा चरण संगम काल माना जाता है। इसी काल में प्राचीन तमिल साहित्य निर्मित हुआ था। संगम काल सन 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक था। इस काल में भारत के अनान्य प्रदेशों से लोग केरल में आकर बसने लगे। इसी काल में वहां बौद्ध और जैन धर्मों का प्रचार भी हुआ था। ब्राह्मण लोग भी केरल पहुंच गए। केरल के विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मणों की कुल मिलाकर 64 बस्तियां थी। ईसा की पहली शताब्दी में ही ईसाई धर्म केरल में पहुंच गया था। कानाई के सेंट थॉमस के नेतृत्व में सन 345 में पश्चिम एशिया के 7 कबीलों के 400 ईसाई धर्मावलंबी केरल आकर बसे, जिनसे केरल में ईसाई धर्म प्रचार को बल मिला। जिस केरल के साथ अरबों का समुद्र मार्ग से व्यापार चल रहा था, उस केरल का इस्लाम धर्म से ईसा की 8वीं शती में ही परिचित होना और केरल द्वारा उसका स्वागत किया जाना एकदम स्वाभाविक था।

प्राचीन केरल को इतिहासकार तमिल भूभाग का अंग समझते थे। केरल की निजी विशेषताओं के विकास में जो तत्व सहायक हुए उनमें मुख्य है लोगों का प्रकृति प्रेम, आवास केंद्रों का विकास, उत्पादन केंद्रों का उदय और भाषा का विकास। जब क्षेत्रीय शक्तियों के हाथ में कृषि और संसाधनों का नियंत्रण आ गया तब केरल को सामाजिक परिवर्तन का सामना करना पड़ा जो अनेक पीढ़ियां तक चला। फलस्वरूप छोटी छोटी रियासतों से लेकर बड़े बड़े राज्यों तक का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप केरल का एक नया इतिहास बना जो साम्राज्यों और युद्धों का इतिहास है, भाषा और साहित्य के विकास का इतिहास है, विदेशी सेनाओं के आगमन तथा उनके दीर्घकालीन उपनिवेश बन जाने का इतिहास है, जाति पाति और शोषण का इतिहास है, शिक्षा में हुई प्रगति और वैज्ञानिक क्षेत्रों में हुई तरक्की का इतिहास है, व्यापारिक प्रगति और सामाजिक नवजागरण और जनतांत्रिक संस्थाओं के आविर्भावों का भी इतिहास है। भारत में हुए किसी भी अन्य विरोध से पहले केरल के पड़ोसी राजा ने 1793 से 1805 में अपनी मृत्यु तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किया। अपने राज्य के घरेलू मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में उन्होंने दो युद्ध लड़े। 1793 से लेकर 1797 तक कोटेम प्रबंधन के सवाल पर और 1800 से 1805 तक वायनाड पर मालिकाना के मुद्दे पर उन्होंने युद्ध किया। केरल राज्य के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया जिनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे केपी केशव मेनन। जब केरल प्रदेश कांग्रेस समिति बनी तो उन्हें पहला सचिव चुना गया और 1925 में वे समिति के पहले उपाध्यक्ष भी बनाए गए। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए छिड़े कई आंदोलनों में भाग लिया जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, साइमन कमीशन का बहिष्कार इत्यादि। राज्य की एक और वीरांगना थी श्रीमती एवी कुट्टीमालुअम्मा जिन्होंने खादी और स्वदेशी कार्यकर्ता के रूप में अपनी सामाजिक जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने अपने 2 महीने छोटे बच्चे के साथ सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में हिस्सा लिया और 2 साल के लिए कारावास भी गई। उन्होंने महिलाओं को लेकर कालीकट में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया, स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। केरल के एक महान व्यक्तित्व थे ई इकंड वारियर। महात्मा गांधी से मिलना उनके लिए एक नया दृष्टांत लाया। उन्होंने राजनीतिक तौर पर भी अपनी भूमिका अदा की तथा कांग्रेस के अंतर्गत कई आंदोलनों में भाग भी लिया।

केरल में जन्मे एक महापुरुष थे के केलप्पन। उन्होंने एक तरफ सामाजिक सुधार के लिए काम किया तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार से भी लोहा लिया। उन्हें केरला गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और हरिजनों के उत्थान के लिए मेहनत से काम किया तथा कई हरिजन छात्रावास एवं विद्यालय स्थापित किए। भौगोलिक दृष्टि से केरल पर्वतीय क्षेत्रों, घाटियों, मध्यवर्ती मैदानों तथा समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है। केरल नदियों और तालाबों के संबंध में बहुत ही समृद्ध है। केरल में 44 नदियां बहती है, जिनमें 41 नदियां पश्चिम की ओर और 3 पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये नदियां अपनी सहायक नदियों और उपधाराओं के साथ केरल की प्राकृतिक संपदा को बढ़ाती है। समुद्री झीलें केरल का मुख्य आकर्षण है। आर्थिक दृष्टि से भी प्राकृतिक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी केरल राज्य के एक अंतः क्षेत्र दक्षिण भारत में माही नगर स्थित है। यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट के कारण भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में केरल का प्रमुख स्थान है। इसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। केरल राज्य में अंग्रेजी भाषा को प्रमुख स्थान प्राप्त है। मलयालम भाषा की भांति अंग्रेजी भाषा भी शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। तमिल और कन्नड़ भाषाओं को अल्पसंख्यक भाषा कहा जाता है। मलयालम द्राविड परिवार की भाषाओं में से एक है। मलयालम भाषा की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैं। एक मत है कि किसी आदि द्राविड भाषा से विकसित होकर मलयालम एक स्वतंत्र भाषा हुई, और दूसरा मत है कि मलयालम तमिल तथा संस्कृत से उत्पन्न भाषा है। सीखने के लिए मलयालम भाषा विश्व की सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। सभी विद्वान मानते हैं कि भाषा के परिवर्तन के कारण मलयालम भाषा का उदय हुआ। तमिल और संस्कृत दोनों ही भाषाओं के साथ मलयालम का बहुत ही गहन संबंध है। साहित्यिक भाषा के रूप में मलयालम भाषा का विकास 23वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हुआ। 23वीं शताब्दी में लिखित रामचरितम को मलयालम भाषा का आदि काव्य माना जाता है। कृषि के वैसे तो भारत के अधिकतम प्रदेशों में मुख्य भूमिका है, पर केरल राज्य में कृषि की विशेषता ये है कि यहाँ व्यापारिक फसलें अधिक उगाई जाती है। राज्य के लगभग 50% नागरिक कृषि पर निर्भर है। नारियल, रबर, काली मिर्च, अदरक, चाय, इलायची, काजू तथा कॉफी आदि का उत्पादन केरल में प्रमुख रूप से होता है। दूसरी फसलों में सुपारी, केला, अदरक तथा हल्दी आदि है। केरल राज्य में जायफल, दालचीनी, लौंग आदि मसालों के वृक्ष भी उगाए जाते हैं। चावल तथा टैपियोका केरल के मुख्य खाद्य फसलें हैं। चलिए दोस्तों, आप सुनते हैं केरल के ऊपर एक सुंदर सा गीत।

आशा है एक गीत आपको पसंद आया होगा। केरल की संस्कृति वास्तव में भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप की तरह केरल की संस्कृति का भी एक पुरातन इतिहास है जो अपने आप में महत्वपूर्ण होने का दावा करता है। केरल की संस्कृति भी एक समग्र और महानगरीय संस्कृति है जिसमें कई लोगों और जातियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केरल के लोगों के बीच समग्र और विविधतावादी सहिष्णुता और दृष्टिकोण की उदारता की भावना का उद्भव अभी है जिससे नेतृत्व संस्कृति का विकास लगातार जारी है। केरल ने हर चुनौती का माकूल जवाब देते हुए प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है और साथ ही पुरानी परंपराओं और नए मूल्यों का मानवीय तथ्यों से संलयन भी किया है। भारतीय उपमहाद्वीप की तरह केरल की संस्कृति का भी एक पुरातन इतिहास है जो अपने आप में महत्वपूर्ण होने का दावा करता है। केरल के सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कला रूपों में लोक कलाओं, अनुष्ठान कलाओं और मंदिर कलाओं से लेकर आधुनिक कला रूपों तक की भूमिका उल्लेखनीय है। केरलीय कलाओं को सामान्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक दृश्य कला और दूसरी श्रव्य कला। दृश्य कला के अंतर्गत रंग कलाएं, अनुष्ठान कलाएं, चित्रकला और सिनेमा भी आते हैं। केरल की चित्रकला की अगर बात करें तो प्राचीन काल में जब से केरल की पर्वतीय गुफाओं में मनुष्य निवास करने लगे थे तब से चित्रकला की परंपरा आरंभ हुई होगी। प्राचीन गुफाओं के चित्रांकन इसका प्रमाण है। इस प्रकार के चित्र जिन गुफाओं में उपलब्ध है वे है वायनाड की एडक्कल गुफा, इडुक्की में मरयूर की एडुतले गुफा आदि। कोल्लम जिले के तेनमला की चंतरुनीवन गुफा में भी गुफा चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में प्रधान है पत्थर की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गुफा चित्र और शिला चित्र। राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकारों में से एक थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र है। हिंदू मिथकों का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल उनके चित्रों में दिखता है। लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा गुजरात स्थित संग्रहालय में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। उन्होंने लगभग 30 वर्ष भारतीय चित्रकला की साधना में लगाए। मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोलकर उन्होंने अपने चित्रों का प्रकाशन किया था। उनके चित्र विविध विषय के हैं, किंतु उनमें पौराणिक विषयों के और राजाओं के व्यक्ति चित्रों का आधिक्य है। विदेशों में उनकी कृतियों का स्वागत हुआ, उनका सम्मान बढ़ा और पदक पुरस्कार मिले। पौराणिक वेशभूषा के सच्चे स्वरूप के अध्ययन के लिए उन्होंने देशाटन भी किया था। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है कथकली, जो मलाबार, कोचिन और ट्रावनकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। 17वीं शताब्दी में कुटारकर तंबुरान ने जिस रामनाटम का आविष्कार किया था उसी की विकसित रूप है कथकली। ये रंग कला नृत्य नाट्य कला का सुंदरतम रूप है। भारतीय अभिनय कला की नृत्य नामक रंग कला के अंतर्गत कथकली की गणना होती है। रंगीन वेशभूषा पहने कलाकार गायकों द्वारा गाए जाने वाले कदा संदर्भों का हस्त मुद्राओं एवं नृत्य नाट्यों द्वारा अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इसमें कलाकार स्वयं न तो संवाद बोलता है और न ही गीत गाता है। कथकली के साहित्यिक रूप को आटक कथा कहते हैं। गायक गण वाद्यों के वादन के साथ आटक कथाएं गाते हैं। कलाकार उन पर अभिनय करके दिखाते हैं। कथा का विषय भारतीय पुराणों और इतिहासों से लिया जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी कथाओं को भी विषय रूप में स्वीकृत किया गया है। दोस्तों चलिए अब सुनते हैं कथकली संगीत का एक छोटा

आशा है ये भी आपको अच्छा लगा होगा। केरल में अनेक प्रतिभाशाली लोगों ने जन्म लिया, उन्हीं में से एक है खेल जगत का जाना माना नाम, भारत की बेहतरीन एथलीट पीटी उषा। पीटी उषा ने कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उनकी कुछ उपलब्धियों में से है 1990 में बीजिंग एशियाई खेलों में 3 रजत पदक, 1998 में फुकुओका की एशियाई दौड़कूद प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण 1 रजत व 2 कांस्य पदक। भारतीय खेल को उनके अनेक तथा विशेष योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। केरल में ही जन्मे ई श्रीधरन भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर है। वे 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निर्देशक रहे। उन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। कोंकण रेलवे श्रीधरन जी का सबसे बड़ा योगदान है। उन्हें 2008 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। चलिए अब केरल के त्योहारों को मनाने आपको ले चलते हैं। केरल में अनेक रंगारंग त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर त्योहार धार्मिक है जो हिंदू पुराणों से प्रेरित है। ओणम केरला का विशिष्ट त्योहार है जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। यह त्योहार खगोल शास्त्रीय नव वर्ष के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ओणम केरल के लोगों के लिए इस आशा का प्रतीक भी है कि एक स्वर्णिम युग यहाँ था तथा एक स्वर्णिम युग आने वाला भी है। इस अवसर पर लोग अपने घरों का नवीकरण करवाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, स्वादिष्ट भोजन भी बनाते हैं और राजा महाबली जी, जो उनकी मान्यता अनुसार एक प्राचीन और समृद्ध केरल पर राज करते थे, उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सुनते हैं ओणम के ऊपर एक सुंदर सा गीत।

केरल में नवरात्रि पर्व भी सरस्वती पूजा के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि का त्योहार पेरियार नदी के तट पर भव्य तरीके से मनाया जाता है और इसकी तुलना कुंभ मेले से की जाती है। शबरीमला के अय्यप्पा मंदिर में इसी दौरान मगर विलक भी आयोजित होता है। भगवान अय्यप्पा की पूजा करने के लिए साधक को 41 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है तथा शुद्ध भोजन स्वीकार करना होता है, तभी ये साधना सफल मानी जाती है। वल्लम कली या नौका दौड़ केरल का अपने ढंग का अनोखा आयोजन है। पुन्नमडा झील में आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जो एक प्रतियोगिता है, इनको छोड़कर पुन्नमडा झील में आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, इसको छोड़कर शेष सभी नौका दौड़ उत्सवों का कोई न कोई धार्मिक महत्व है। त्रिशूर के वडक्कमनाथ मंदिर में हर वर्ष अप्रैल में पूरम त्योहार मनाया जाता है, जिसमें सजे धजे हाथियों की भव्य शोभा यात्रा निकलती है और आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर एक और बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले त्योहार त्रिशूर पूरम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और रंगारंग त्योहार माना जाता है। क्रिसमस और ईस्टर जो ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है, ये भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। पंबा नदी के तट पर हर वर्ष मरामन सम्मेलन होता है, जहां एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा जमावड़ा लगता है और जहां मिलाद-ए-शरीफ, रमजान रोजे, ईद-उल-फितर का त्योहार भी मनाते हैं।

केरल घूमने के लिए एक आकर्षक स्थल है। पर्यटन गतिविधियों के लिए केरल में स्थायी और सफल वृद्धि के लिए अपेक्षित वातावरण पहले से विद्यमान है। पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण तत्व है प्राकृतिक सौंदर्य, सामान्य जलवायु, स्वच्छ पर्यावरण, मैत्री भाव वाले शांति प्रिय लोग है जो सांस्कृतिक विविधता के प्रति बेहद सहिष्णु है और अनूठे पर्यावरण को निर्मित करने का क्षमता रखते हैं। केरल देश में सर्वप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। समुद्र तट, गर्म मौसम, समुद्री झीलें, पर्वतीय स्थल, जलप्रपात, वन्य जीवन, आयुर्वेद, वर्ष भर त्योहार तथा विविध पेड़ पौधे केरल के पर्यटकों के लिए एक अनूठा गंतव्य स्थल बनाते हैं। यहाँ गुरुवायूर आनकोटा नामक उद्यान है जहाँ 60 से 85 हाथी है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा हाथी उद्यान बनाते हैं। पर्यटन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण स्थल है पूर्व का विनीस कहा जाने वाला आलपुड़ा, जहाँ का इतिहास केरल के सामुद्रिक इतिहास में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। आज यह अपने नौका दौड़, बैकवाटर छुट्टियों, समुद्री तटों, समुद्री उत्पादों और कॉयर उपयोग के लिए जाना जाता है। आलपुड़ा बीच एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। विजया बीच पार्क की मनोरंजन सुविधाएं पर्यटकों को खास तौर पर आकर्षित करती है। यहाँ पास में एक लाइट हाउस भी है जो पर्यटकों को खूब लुभाता है। आलपुड़ा का एक अन्य आकर्षण है हाउस बोट में जल विहार करना। अगर आपको प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाना है तो केरल से बेहतर जगह कोई भी नहीं है। यहाँ का वातावरण और सुंदर परिदृश्य देश विदेश से आने वाले हर दिल को लुभा लेते हैं।

0: चलिए अब वक्त हो चला है हम वापस आ जाएं इस खूबसूरत प्रदेश की सैर से और आपसे ले अलविदा एक राष्ट्र एक कहानी। जय हिंद।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका हम सफर सनी। चलिए बात करते हैं आज 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज को हम लोग इस कार्यक्रम में सुनाते हैं और आप सभी भी बड़ा ही चाव से इस कार्यक्रम को सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को। और जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को सुना है उनका मैसेज आता है कि ये पुराने कलेक्शन शायद ही हम लोग इस समय में सुन पाए, लेकिन आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से ऐसे 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज का जो कलेक्शन है आप हमें सुनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में आप जो गाना किसने गाया, संगीत किसने दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप देते हैं तो वो और अच्छा हमें लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का, ये मैसेजेस पढ़ के हमें बहुत खुशी होती है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ मैं ले चलता हूँ जो क्लासिकल है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग की अक्षर वाले सारे गीत 50s एंड 60s के आपको सुनाएंगे। तो की अक्षर का एक क्लासिकल गीत था जो 1965 में रिलीज हुई थी। जी हाँ, अनिल बिस्वास साहब ने इसे संगीत से संवारा था। छोटी छोटी बातें इस एल्बम से आपको सुनाने वाला हूँ मैं। और ये गाना जैसे कि ये

जी हाँ, कुछ और जमाना कहता है लेकिन हमारा दिल कुछ और कहता है। कई बार जीवन में इस तरह के कश्मकश हम सभी के बीच में आता है कि लोग कुछ और कहते हैं और हमारा दिल कुछ और कहता है। तो वह ये ऐसे भाव भरा ये क्लासिकल गाना है और जिसे खास मीना कुमारी पर पिक्चराइज किया था और इसे खास लिखा है शैलेंद्र साहब ने, मीना कपूर ने इसे गाया है। अनिल विश्वास का बहुत ही खूबसूरत संगीत, छोटी छोटी बातों का ये खूबसूरत गाना जो 1965 में रिलीज हुई थी। तो ये निर्देशक, लेखक और निर्माता के रूप में एकमात्र फिल्म उनके घर बैनर राजवंशी प्रोडक्शन के तहत बनी थी। तो चलिए, ये भारतीय फिल्म परिवार की एक नाटकीय फिल्म है जिसे देखकर आपको अपने घर की बातें याद आती है। तो आइए अब सीधे मैं ले चलता हूँ कार्यक्रम की शुरुआत में ये क्लासिकल गीत आपके लिए खास। और इस फिल्म के कलाकार थे मोतीलाल और नादिरा और इस फिल्म को उस जमाने में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खाबों का सफर, मैं हूं आपका हम सफर। जी हां, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ले चलता हूं एक और फिल्म की तरफ जो 1950s यानी 58 में रिलीज हुई थी। एक फिल्म जिसका नाम था लाजवंती। ये एक फिल्म ऐसी बनी थी जो एक महिला किरदार पर बनी थी। जी हां, कविता नाम की एक महिला पर फिल्म बनी थी और ये बहुत ही प्यारी और कर्तव्य दक्ष पत्नी रही, लेकिन उसके पत्नी द्वारा बेवफाई का आरोप इस पर लगाया जाता है और कविता का पति उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है और उसे उसके बच्चे से भी अलग करता है। तो एक महिला पत्नी की जो रोल है इसमें बताया गया है, ये कशमकश जो है किस तरह से चलता है वो यहाँ देखने को मिलता है और इस कशमकश में एक महिला जो है कैसे अपने रोल को अदा करती है, तो ये इस लाजवंती फिल्म में बताया गया है। तो इसका ये खूबसूरत गाना है जैसे कि ये

जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत मजेदार गाना है और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आइए, इस गाने को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और आशा भोसले ने इसे आवाज दिया है, सचिन देव बर्मन ने इसे संगीत से सवारा है। तो चलिए इस खूबसूरत गीत का आनंद उठाते हैं। नरगिस बलराज सहानी, कुमारी नाज और लीला मिश्रा पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। खाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज आपको हम सुना रहे हैं। लाजवंती फिल्म के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। 60s की बात करें तो 1966 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अनुपमा। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी जो महिला करियर पर महिला चरित्र पर फिल्माया गया था। आप देखे होंगे कि कई बार माता जो है, एक पत्नी पहली बार माँ बनती है तो डिलीवरी के इस दौरान जो है एक बड़ी कशमकश होती है। कई बार डॉक्टर जो है ऑपरेशन थिएटर में ये बताते हैं कि आप बच्चे को बचाना है या माँ को बचाना है, आपके ऊपर है कि आप किसे बचाना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे एक परिवार पर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटता है ये आपको पता चलता है, और ऐसे सिचुएशन को इस अनुपमा फिल्म में बताया गया है। और इसमें होता है ऐसे कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते ही वो चल जाती है, और उनके पति मोहन जो है अपनी बेटी को देखकर खुश भी होते हैं लेकिन उसे घृणा भी करते हैं क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ चली गई, और हालत बदतर होते जाते हैं। और इस तरह की जो सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना है।

जी हाँ, कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने कहा और कुछ नहीं भी कहा। तो ऐसे ही एक खूबसूरत भाव है प्यार का, दिल की बातें इसमें हैं। तो ये खूबसूरत गाना लिखा है कैफी आजमी ने, लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में आप सुनेंगे हेमंत कुमार का संगीत के साथ 1966 का ये खूबसूरत गाना आपके नाम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। जी हाँ, ये गाना आपने सुना अनुपमा फिल्म से, जिसमें कलाकार थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, दुर्गा खोटे और देवन वर्मा। आप सभी जानते हैं देवन वर्मा एक कॉमेडी एक्टर हुआ करते थे।

उस जमाने के बहुत ही पॉपुलर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए 1967 की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। बहारों के सपने, ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी उस जमाने में। और बहारों के सपने ये एक फिल्म जो है 23 जून 1967 को रिलीज हुई थी। इसके गाने बड़े खूबसूरत थे। ये गाना जैसे कि

जी हाँ, गम की शाम क्या होती है, ये इस गाने का भाव है। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा है और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। राहुल देव बर्मन का खूबसूरत संगीत से सजा बहारों के सपने इस एल्बम का ये गाना अभी आपके नाम। और इस फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेम नाथ और मदन पुरी।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं, 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत पीछे की तरफ ले चलता हूँ, 50s एंड 60s नहीं 40s की तरफ ले चलता हूँ, 1946 की तरफ। एक फिल्म रिलीज हुई थी, अनमोल घड़ी। जी हाँ, और उस जमाने में जो है लता मंगेशकर इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन उस जमाने में पॉपुलर थे नूरजहां। जी हाँ, नूरजहां की आवाज आपने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी होगी तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जैसे कि नूरजहां की आवाज में ये गाना।

नूर जहां जो है उस समय की बहुत ही पॉपुलर गायिका रही, बहुत ही फेमस गायिका रही। तो आइए, यस अनमोल घड़ी इस एल्बम में ये स्टोरी बताया गया है बचपन के प्रेमी का। लता और चंदन नाम के दो प्रेमी हैं और ये दोनों अलग होते हैं। जब लता मुंबई आती है वह उपनाम रेनू के नाम से पहचानी जाती हैं और एक गायिका बनती हैं, और चंदर उसकी कविता से प्रभावित होता है और उसे मिलने की इच्छा रखता है। तो इस तरह से ये एक मिलना और बिछड़ने की कहानी है, और बिछड़े प्रेमी फिर से बाद में मिल जाते हैं, ऐसी कहानी इसमें बताई गई है। तो अनमोल घड़ी का एक खूबसूरत गीत आपको मैं सुना रहा हूँ जो आपने सुना थोड़ा सा। तो आइए, नूरजहां की खूबसूरत आवाज में नौशाद साहब का संगीत अनमोल घड़ी का ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपके लिए अभी।

0: या बाटो।
1: अनमोल गढ़ी का एक खूबसूरत गाना आपने सुना जो 1946 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, सीधे 20 साल के बाद यानी 46 के बाद 66-68 की तरफ मैं ले चलता हूँ, जिस समय एक फिल्म आई थी 1968 में इजाजत। जी हाँ, ये एक आदिवासी पर फिल्म आया गया था और एक आदिवासी लड़के की कहानी है। आदिवासी लड़का अपने माँ का प्रतिशोध चाहता है जिस अमीर आदमी ने उपयोग कर छोड़ दिया था। वो यही इतिहास को दोहरा पाता है जब उसका सौतेला भाई आदिवासी लड़की से प्यार करता है लेकिन शादी से इनकार करता है। तो यहाँ पर नहले को दहला जैसे को तैसा का जवाब इस फिल्म में देने की कोशिश की है। स्टोरी इस तरह का है, फिल्म का गाना है ये।

साहिर लुधियानवी साहब का लिखा ये खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूबसूरत संगीत 1968 का, अभी आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खाबों का सफर इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आपने जो गाना सुना, क्या मिल ये ऐसे लोगों से, शायद वो गाना उस जमाने में पॉपुलर तो था ही, लेकिन आज भी एक बात ही खूबसूरत मैसेज देता है। और इस फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, तनुजा, जय ललिता और महमूद अली। जी हाँ, इस पर पिक्चराइज किया गया था। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 60s में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी जिसके गाने और फिल्म दोनों ही हिट हुए थे और जिसके हीरो थे देवानंद। जी हाँ, देवानंद का एक फिल्म, शायद आपको नाम याद आ गया होगा अगर आपने फिल्म देखी हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गाइड का। गाइड में एक बहुत ही खूबसूरत गाना है कि अक्षर से जैसे कि ये

ये फिल्म एक गाइड का है, यानी जो लोग टूरिस्ट प्लेस में रहते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं उनको वहां की बातें, वहां का इतिहास सुनाते हैं और दिखाते हैं। तो बिल्कुल गाइड बनकर देवानंद इस फिल्म में काम करते हैं, लेकिन आखिरी में सन्यासी बन जाते हैं और वो एक अच्छे सन्यासी बन जाते हैं। तो गाइड फिल्म में एक राजू नाम का गाइड बना हुआ है देवानंद, और उनकी ये फिल्म पूरी स्टोरी बनी हुई है। तो आपने देखा होगा तो शायद आपको पूरी फिल्म याद आ गई होगी, अगर नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखिए। इस फिल्म के कलाकार हैं देवानंद वेदारेमन, लीला चिटनिस, किशोर और अनवर हुसैन। इस फिल्म का एक गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, शैलेंद्र साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, अभी आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबो का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं 60s के और 50s के। तो चलिए एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। 1969 का एक फिल्म आई थी 1969 में, जिसका नाम था आराधना। आराधना फिल्म जो रिलीज हुई थी 1969 में, उसमें एक गाना था जो कि अक्षर से शुरू होता है, जैसे कि ये

आनंद बख्शी साहब का लिखा और लता और किशोर दा का गाया हुआ ये गाना सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा है। चलिए इस फिल्म का ये गाना आपको सुनाते हैं। और इस फिल्म की जो स्टोरी है वो आराधना जो है नाम से ही पता चलता है कि किस तरह का स्टोरी इसमें होगा। अरुण वंदना ये दो कलाकार है चुपके से शादी करते हैं और कुछ समय बाद अरुण की विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। उनके बच्चे को अनाथालय भेजने के लिए वंदना को बाद में उनके परिवार वाले मजबूर करते हैं। तो ये आराधना फिल्म की कहानी है, थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। और इस फिल्म में कलाकार थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फरीदा जलाल, सुदीप कुमार और अशोक कुमार इस फिल्म के कलाकार थे। तो चलिए इसी गाने के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। इसी तरह कुछ 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज को लेकर मैं आऊंगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्यारे प्यारे गीत सुनाएंगे। और आज का ये एपिसोड में जो के अक्षर वाले गाने थे ये आपको कैसे लगे इसके बारे में आप जरूर बताइए, अपने भावनाओं को व्यक्त कीजिए, हमें और खुशी मिलेगी आपके मैसेजेस को देखकर। तो चलिए सलाम नमस्ते खवा गनीसा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, a new way of responding, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

इश्क, हर दिल का कातिल इश्क इश्क, फिर भी है मंजिल इश्क इश्क, हाय इश्क इश्क, हाय इश्क इश्क, इश्क, इश्क, इश्क, इश्क, इश्क, इश्क।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पदनाथ कृष्ण कन्हैया गोपी के संग राज बजावत नाथ जावत दाता तैया तैया गेंद से गेंद के लिए यमुना बुज नित्य कियो तहनाग न थैया गोप के इंद चढ़ो बुज ऊपर गोप सर्प सब हा हा थैया लाय उठाय लियो गिर नख पर बंक सजावत देन चढ़ैया जग के मोहन मन में माये नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है, हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है, आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे, ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हेलो पुराना स्तंभ जी।
1: हेलो मनु।
0: सॉरी, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली मेरी एक नई दोस्त बनी है और उसको ब्यूटी पार्लर छोड़ के आना था, इसलिए मुझे देर हो गई।
1: ओह, ब्यूटी पार्लर, तो तुम साथ नहीं गई?
0: नहीं नहीं, एक्चुअली ना, उसका रंग थोड़ा सांवला है, इसलिए वो कुछ उपाय कर रही है गोरे होने के लिए।
1: अच्छा, और गोरा होना इतना जरूरी क्यों है?
0: अरे, क्योंकि सुंदर होना किसे अच्छा नहीं लगता। फेसबुक पे लाइक्स भी तो तब भी मिलते हैं, और दादी तो कहती है सांवले रंग वाली लड़कियों की शादी भी जल्दी नहीं होती।
1: तुम्हारी जनरेशन कहती है हम मॉडर्न हैं और ख्यालात वही घिसे पिटे। सुंदर होने की काले गोरे से क्या भेंट? तुम्हारी वो नई दोस्त अपने बारे में ही हीन भावना का शिकार है। सभी रंग खूबसूरत है मनु। सोचो, वो देश जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, सबका रंग सांवला होता है, क्या वहाँ कोई सुंदर नहीं होता?
0: हाँ, वैसे बॉलीवुड में भी कोंकणा सेन, नंदिता दास जैसी अभिनेत्रियों ने इस मिथ को तोड़ा है।
1: बिल्कुल सही, बाहरी खूबसूरती को भी रंग से मत आंको और अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि खूबसूरती आती है आत्मविश्वास से। और कोई बुरा बर्ताव करे भी तो ये उसकी संकुचित मानसिकता है।
0: ओके पुराना स्तंभ जी। अच्छा, क्या अब आप मुझे ज्ञानेश्वर महाराज की कहानी सुनाएंगे?
1: जरूर सुनाऊंगा, तो सुनो। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के पास आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। संत ज्ञानेश्वर के शरीर का जीवन काल बहुत ज्यादा नहीं रहा।
0: अच्छा?
1: उन्होंने 21 वर्ष की उम्र तक ही जीवन यापन किया।
0: ओह।
1: उसके बाद उन्होंने समाधि ले ली। संत ज्ञानेश्वर के जीवन काल में कई कष्ट उनके सामने आए।
0: अच्छा?
1: कारण था ब्राह्मण समाज द्वारा उनके परिवार का बहिष्कार। इस बहिष्कार का कारण जानने के लिए वहाँ चलते हैं जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई।
0: कहाँ से?
1: यानी संत ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल पंत की कहानी की ओर। विट्ठल पंत शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वे तीर्थ यात्राएं करते, भगवान का सिमरन करने में ही सुख की अनुभूति करते थे। उन्हें वहां साधु सन्यासियों का संग प्राप्त होता। विट्ठल पंत एक बार तीर्थ यात्रा पूर्ण कर पुणे के पास आळंदी नामक गांव में आए। उस समय सिद्धो पंत नामक एक सदाचारी ब्राह्मण वहाँ पटवारी थे।
0: अच्छा।
1: वे विट्ठल पंत की निष्ठा और प्रभु प्रेम से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह विट्ठल पंत से करवा दिया। विट्ठल पंत भक्ति रस में सदा डूबे रहते। कुछ समय में ही उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। और परिवार की पूरी जिम्मेवारी उन पर ही आ गई। विट्ठल पंत का सामाजिक क्रियाकलापों में मन नहीं लगता था और अधिकतर समय भगवान को याद करने में ही व्यतीत होता था।
0: अच्छा।
1: अब धीरे धीरे उनके अंदर सन्यास लेने की इच्छा जागृत होने लगी, किंतु पत्नी के बिना पूछे वे सन्यास ग्रहण नहीं कर सकते थे, इसलिए बार बार ये सवाल वे रुक्मणी के सामने रखते। रुक्मणी उनको बार बार समझाती थी। एक बार क्रोधित हो रुक्मणी ने उन्हें जाने के लिए कह दिया और उन्हीं क्रोध के बोलों को अनुमति मान विट्ठल पंत काशी की तरफ चल दिए। काशी जाकर उन्होंने महाराज से सन्यास की दीक्षा ली।
0: अच्छा।
1: और उन्हें ये बताया कि वे बंधन मुक्त है, अर्थात शादीशुदा नहीं है।
0: अच्छा।
1: झूठ का सहारा लेकर उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। एक बार उनके गुरु तीर्थ यात्रा पर जाते समय आलंदी गांव में रुके, जहां संयोगवश उनका मिलना रुक्मिणी से हुआ। रुक्मिणी से उन्हें ज्ञात हुआ कि काशी में उनका शिष्य ही विट्ठल है, जो कि रुक्मिणी का पति है, और उसे छोड़कर सन्यास ले लिया है। गुरु जी ने तुरंत काशी की तरफ प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने विट्ठल को अपने पाप का प्रायश्चित करने, सन्यास छोड़ गृहस्थ में जाने की आज्ञा दी। विट्ठल गुरु की आज्ञा मान लौट तो गए, मगर उस समय ब्राह्मण समाज में सन्यास ग्रहण कर चुके किसी व्यक्ति को वापस आने की अनुमति नहीं थी।
0: अरे,
1: उन्हें अशुद्ध माना गया और ब्राह्मण समाज ने उनका बहिष्कार किया।

0: हो जाए, उन्हें ब्राह्मणों में जगह मिल जाए। उस समय जनेऊ होना ब्राह्मणों के लिए बेहद जरूरी हुआ करता था।
1: अच्छा।
0: लेकिन बार बार प्रयास करने पर भी ये नहीं हो सका। विट्ठल को कई बार अपमानित और लज्जित भी होना पड़ा। बताते हैं कि पूरे परिवार ने त्र्यंबकेश्वर जाने का निर्णय लिया। तब एक अचंभित कर देने वाली घटना हुई।
1: और वो क्या?
0: जिसने निवृत्तिनाथ को ज्ञानदेव का गुरु बना दिया। चारों ही बच्चे पहले से ही ज्ञान की ओर रुचि रखने वाले और प्रभु को संपूर्ण श्रद्धा से सिमरन करने वाले थे।

0: इसके बाद विट्ठल ने एक बार फिर ब्राह्मणों से गुहार की कि वे उनके बच्चों को सजा ना दें। तब कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें देहांत प्रायश्चित करने के लिए कहा।
1: ओह नो,
0: अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विट्ठल पंत ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और परमात्मा के हाथ चारों बच्चों की डोर सौंप विट्ठल पंत के साथ साथ रुक्मणी ने भी जल समाधि ले ली। हालांकि माता पिता दोनों की मृत्यु के पश्चात भी ब्राह्मण समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।
1: फिर क्या हुआ?
0: उन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए भिक्षा का सहारा लिया। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे फल फूल पेड़ से तोड़ खाते या व्रत करते। इतना सब सहन करने के बावजूद भी समाज का उनके प्रति व्यवहार कड़ा ही रहा। पिता का देहांत प्रायश्चित भी समाज में बच्चों की पवित्रता सिद्ध नहीं कर पाया और उनका शुद्धिकरण नहीं किया गया। एक बार फिर चारों बच्चे निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई आलंदी के पंडितों के पास ये बात लेकर गए कि उनका जनेऊ किया जाए और उनको ब्राह्मण समाज में जगह दी जाए।
1: अच्छा,
0: तब आलंदी के ब्राह्मणों ने बच्चों को पैठण जाने की हिदायत दी और कहा कि उनका शुद्धिकरण वहीं हो सकता है। ये सुन चारों ही बच्चे पैठण की ओर रवाना हो गए। जब वे सभी पैठण पहुंचे तो वहां के ब्राह्मणों की सभा बुलाई गई जिसमें उन सभी के सामने कुछ शर्तें रखी गई। कहते हैं ज्ञानदेव को अपमानित करने के लिए एक भैंस से किसी ने उनकी तुलना की और तब ज्ञानदेव यानी ज्ञानेश्वर महाराज ने उस भैंस के मुख से भी वेद का उच्चारण करवाकर सबको चकित कर दिया।
1: अच्छा,
0: पैठण के पंडितों ने तो उन्हें मान्यता दे दी।
1: अरे पा,
0: और निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ता भाई चारों ही बच्चे आलंदी लौट गए। परंतु अभी भी उनकी मुश्किलों का अंत कहाँ हुआ था। आगे क्या होगा ये जानने के लिए तो तुम बड़ी व्याकुल होंगी।
1: हाँ हाँ, जल्दी बताइए।
0: मैं भी ज्ञानदेव यानी ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में अब आगे की कहानी सुनने के लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य धारण करना होगा मनु।
1: हाँ, मतलब अब संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की धैर्यता की क्वालिटी के बारे में सुना है तो अप्लाई भी करना पड़ेगा क्या?
0: और क्या, नहीं तो किसी गुण का वर्णन करने से क्या फायदा जब तक हम उसे धारण नहीं कर सकते।
1: धैर्यता की जरूरत तो मुझे भी है, मेरे सभी दोस्तों को भी है।
0: हाँ हाँ, हम सभी को है। फिर भी जब गुणों की बात की जाती है तो समझा ये जाता है कि गुणों की आवश्यकता दूसरों को ज्यादा है।
1: हाँ हाँ।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ।
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की बात करते हैं तो खुशी का इंडेक्स भी बना लिया हमने। जी हाँ, हमने देखा कि हर रोज हमारी खुशी का जो लेवल है वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। तब इस पूरी श्रृंखला में हमने कोशिश की है कि ये बातें देखें जो हमारी जिस पर हमारी खुशी निर्भर कर रही थी। हमने देखा सिचुएशंस थे, लोग थे, लेकिन एक बात जो सामने आई वो ये कि ना तो वो लोग या वो सिचुएशंस मुझे खुशी दे रही थी, ना चीजें मुझे खुशी दे पा रही थी, बल्कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। और अगर आपको पिछली कड़ी याद हो, हमने बात की थी कि मेरा जो थॉट है, मेरा जो संकल्प है, मेरी जो सोच है, वही बहुत सारी चीजें तय करती है। हमने पूरा की पूरी साइकिल देखी थी, उसी साइकिल को थोड़ा और आज आगे बढ़ाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरी जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो अगर अपनी मेरी ओन क्रिएशन है तो वो कैसे संभव है कि मैं अपने उस इंडेक्स को स्टेबल रख पाऊं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछले कड़ी को देखते हैं तो थॉट जो था वो एक डेस्टिनी तक लेके जा रहा था। अगर हम इस पर पहले भी कई बार बात की है कि हमारे जो एक सोच है या हमारा संकल्प है वो हमारी डेस्टिनी तय करता है। कई पड़ाव हमने बीच में से गुजरे थे, उसमें से डेस्टिनी तक अभी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मेरा भाग्य तय कर सकता है। एक छोटा सा रिकैप हम चाहेंगे कि आपसे ले लें कि किस तरह से मेरी थॉट की जो पूरी प्रोसीजर है वो चल रहा होता है।
1: जबकि सिचुएशंस हमारे सामने आते या लोगों का व्यवहार हमारे सामने आता या हमारे जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आता तो हम उसका जिम्मेवार किसी न किसी और को ठहरा देते और फिर हम कहते मेरे भाग्य में ही ये है। जैसे ही मैंने ब्लेम किसी और पर रखा, सिचुएशन पर, व्यक्ति पर, अपने भाग्य पर या फिर परमात्मा पर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। ये मेरे साथ हो रहा है लेकिन इसका जिम्मेवार कोई और है। जब वो कोई और ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। सो समवेयर वट एवर वॉज हैपनिंग इन माई लाइफ, गुड और बैड, इट वॉज समवन एल्स दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो जब हम उस थॉट के साथ जीवन जी रहे थे तो कहीं ना कहीं फिर मेरे कंट्रोल में तो मेरा जीवन नहीं है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सिचुएशंस एंड पीपल आउटसाइड। तो अगर मेरा जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, प्रमोशन सब कुछ अच्छा, पैकेज अच्छा, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। घर पे सारा चीजें टाइम टू टाइम आ रही थी, फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस वर फेवरेबल। जैसे ही सिचुएशंस में परिवर्तन आया तो मेरा वो इंडेक्स गिर गया। जैसे आज हम फाइनेंशियल इंडेक्स को भी देखें, वो डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन है। ग्लोबल लेवल पर अगर पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल कुछ भी ऊपर नीचे होता है index. वो इंडेक्स चेंज होता है। तो सारा दिन चेक क्या किया जाता है कि सिचुएशन सिनारियो में क्या हो रहा है, बिकॉज वी नो कि इसका हमारे फाइनेंशियल इंडेक्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने खुशी के इंडेक्स पर भी उसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल दिया और हमने समझा ये तो ठीक है, ये तो नेचुरल ही है कि जब बाहर सिचुएशन फेवरेबल
0: तभी मैं खुश,
1: बाहर सिचुएशन ऊपर नीचे तो मैं अंदर डिस्टर्ब।
0: शिवानी तभी तो ये सब कुछ हो रहा था जब मेरे को, मुझे पता ही नहीं था कुछ और बात, जब मैं एक ही तरीके से जीना सीख रहा था कि सिचुएशन ठीक है, लोग ठीक हैं या कोई भी चीजें मेरे पास हैं तो मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं उन्हीं को तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी।
1: एब्सोल्युटली। तो एक है उनको कंट्रोल करना, उनका ध्यान रखना, और एक अपना ध्यान रखना। तो मैं रखना तो अपना ध्यान चाहती हूँ, मैं खुशी चाहती हूँ। आज आस्क एनीवन एंड दे वांट वन थिंग, यू टेल देम वन थिंग जो आपको चाहिए, दे विल नॉट से गाड़ी बंगला, दे विल से हैप्पीनेस। लेकिन वो हैप्पीनेस लाने के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए। लेकिन हमने क्या सोचा कि मेरी हैप्पीनेस इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट है, तो मैंने यहाँ ध्यान रखने की बजाय जहां वो क्रिएट होती है मैंने वहां ध्यान रखना शुरू कर दिया जिनकी वजह से मैंने सोचा ये क्रिएट होती है। आप मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं खुश होंगे, ये मैंने अपने अंदर प्रोग्रामिंग कर दी। तो मेरा सारा एम ऑब्जेक्टिव क्या होने लगा, आप किस तरह से मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ जिससे आप मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे। इट डजेंट मीन कि मैं आपके लिए अच्छा नहीं करूँ, बट उसके पीछे का इंटेंशन क्या था।
0: इंटेंशन
1: ये है मैं आपसे अच्छी तरह से बात करूंगी, भले मैं कंफर्टेबल हूं अंदर वो करने से नहीं, पर मुझे वो करना है जो आपको ठीक लगेगा, क्योंकि आपको ठीक लगेगा तो आप खुश होंगे, आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगे। सो एवरीथिंग वॉज बींग डन फॉर हैप्पीनेस, विच वॉज ओके फॉर सम टाइम, इट सीम्ड टू बी गोइंग ओके। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशंस और लोगों में परिवर्तन की गति फास्ट होती गई तो समवेयर आई थॉट के दिस इज गोइंग टू फास्ट,
0: वो मेरे बस में नहीं रहने लग गया,
1: तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहने लग गया एंड आई सॉ कि माय इंडेक्स वाज क्रैशिंग एवरी डे. पर मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे क्या करे, सिचुएशन ही ऐसी है तो खुशी तो कम होनी ही है. तब हमने स्वीकार कर लिया जीवन दर्द में जीना. आज मेजोरिटी आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, हमने अपने दर्द को, दर्द इन एनी फॉर्म, दर्द कुड बी चिंता, इट कुड बी फियर, इट कुड बी एंग्जाइटी, इट कुड बी स्ट्रेस, एंगर, व्हाटएवर, हम उसको स्वीकार करके उसको नेचुरल समझ के जीवन जीने लगे. और हमने अपने आप को कहा ये नेचुरल है, क्यों, क्योंकि बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है. तो फिर क्या होगा, क्योंकि मेरे मन की स्थिति इन सब पर डिपेंडेंट है, ये सब ठीक नहीं है तो ये ठीक कैसे हो सकता है. तो हमने उसको स्वीकार करके अपना जीवन व्यतीत करने थे. चाहिए थी खुशी, स्वीकार कर लिया दर्द को और फिर दर्द में ही जीवन जीने लगे. और फिर सारा दिन अपने आप से कहते रहे खुशी चाहिए, खुशी चाहिए. जो चाहिए उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा ना.
0: इनफैक्ट यहाँ एक बात अगर हम देखें, सब लोगों का जो पूरा व्यवहार है, जो जो जो कुछ भी हो रहा है, जब उन्होंने ये सोचा या हमने ये सोचा हुआ था कि इन पर डिपेंड कर रही है मेरी खुशी, तो मैं उन पे काम कर रही थी. See, I kept on working, yeah. And I'm still working.
1: Which is absolutely fine.
0: No,
1: but who
0: saying.
1: kept on working?
0: I.
1: But I in pain.
0: Ah, because I was looking for happiness.
1: Yes, so once I'm in pain and I keep on working, whatever work I do, uska net result?
0: Pain will be.
1: तो ये जब हमने स्पिरिचुअलिटी ने सिर्फ इतना ही फोकस शिफ्ट किया, स्पिरिचुअलिटी हमारी थिंकिंग के प्रोसेस को एक नई दिशा देती है, मेडिटेशन फिर उसको एम्पावर करता है कि उसको कैसे करना है. तो जब स्पिरिचुअलिटी हमें ये नॉलेज दिया कि थॉट आपकी क्रिएशन है, फिर थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, ओके दैट इज आफ्टर दैट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात thoughts मेरी क्रिएशन है. बिफोर दिस तो आई वॉज नॉट इवन लिविंग इन दैट अवेयरनेस. आई थॉट आपकी वजह से थॉट क्रिएट हो रहा है, तो थॉट मेरी क्रिएशन है या थॉट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो आप पर डिपेंडेंट है. तो समवेयर माय थॉट्स वर नॉट इन माय कंट्रोल, माय थॉट्स वर इन द कंट्रोल ऑफ.
0: इनफैक्ट अभी भी अगर हम देखें, अगर हम केयरफुल नहीं रहते हैं तो कुछ भी होते ही वो थॉट क्रिएट हो जाता है.
1: तो हम अवेयर
0: नहीं है,
1: क्योंकि हम अवेयर नहीं है उस चीज के लिए. तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा माइंडसेट को चेंज किया, वेरी बिग माइंड सेट, कि आज दिन तक आई वॉज इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन एंड नाउ आई टेक द कंट्रोल इन माई हैंड. अब ये हुआ कि हाँ मुझे सब कुछ करना है, सिचुएशन आज फेवरेबल है, कल हो सकता है सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन माई स्टेट ऑफ माइंड इज स्टिल इन माई कंट्रोल. दिस वन थिंग जस्ट चेंजेस everything.
0: This actually feels very good. Again, I've come back to feeling. This thought creates very good feeling, you know, very strong feeling. But अभी भी हो नहीं पा रही है चीज़.
1: वो ऐसे it's not magic, you know. जब आप एक mindset से सालों से चलते आ रहे हैं, this is the process which has to begin. हमें आज से ही सिर्फ एक ध्यान रखना है. Situations आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, व्यवहार सब कुछ करते करते करते जैसे सब चीज का ध्यान रख रहे हैं, सिर्फ साथ साथ ध्यान रखते जाएं कि यहाँ जो थॉट क्रिएट कर रहा है वो कौन क्रिएट. जस्ट ऑब्जर्व वन डे, जस्ट डोंट डू एनीथिंग. उसको चेंज भी नहीं करने की कोशिश करो, वो नेगेटिव है तो कोई बात नहीं नेगेटिव है, लेकिन पहली चीज तो ये अवेयरनेस चाहिए कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्रिएट कौन कर रहा है. क्रिएट, आई एम क्रिएटिंग द थॉट. जस्ट नाउ my job is in, you know, at stake, yeah, my salary packages, yeah, my boss is shouting at me, everything is happening around me, lekin jo main thoughts create kar rahi hu, I just have to watch, ye fir bhi main hi create kar
0: rahi hu. Wahi main keh rahi hu ki jab feeling itni strong ho chuki hai, jaise suppose mere boss ne shout kiya mujhe, mujh pe shout kiya, bahut strongly shout kiya, matlab jo bhi sabke samne, the feeling of, you know, betrayal, feeling of being hurt, feeling of feel, you know, कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, सब कुछ, वो जो वो फीलिंग है उससे वो थॉट क्रिएट होता गया.
1: नहीं नहीं नहीं, वो जो थॉट क्रिएट की कि सबके सामने उन्होंने मुझे इंसल्ट, सी द थॉट, सबके सामने मुझे इंसल्ट की, मैंने इतना सिंसियरली काम किया था फिर भी मुझे इस तरह से डांटा, दीज आर थॉट्स विच आई. अब सिनारियो, बॉस ने मुझे डांटा, सबके सामने डांटा, वन थॉट इज इतना सिंसियरली मैंने काम किया था, सबके सामने मुझे डांट दिया, यही बात तो अलग से भी की जा सकती थी। पहली बात, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी इस तरह से। यहाँ तो मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लो ना, इन्होंने तो कभी खुश होना ही नहीं। दिस इज माय थॉट्स व्हिच आर गेटिंग क्रिएटेड, आई एम क्रिएटिंग इट। बॉस अभी वही है, ही हैज डन व्हाट ही हैड टू डू, उन्होंने अपना रोल प्ले कर लिया। उस सीन को देख कर मैंने जो क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट की वो ये, और जैसे ये वाली थॉट क्रिएट की तो हाउ विल आई फील,
0: बट एक
1: ऑब्वियसली वेरी लो। जो आपने अभी सारी बातें बोली ना, बिट्रेयल, ये दीज आर नॉट फीलिंग्स, दीज आर थॉट्स। ये थॉट क्रिएट, फीलिंग इज ओनली फीलिंग लो, वेरी डिप्रेस्ड, उमंग उत्साह नहीं है, या फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड। फीलिंग कैटेगोरिकल नहीं होती है, ये आपने कैटेगराइज किया था अभी, बिट्रे किया, इंसल्ट किया, मैं हर्ट हो गई, यू नो, ये फील, ये सारा कुछ थॉट्स है। वी काइंड ऑफ टेन टू मिक्स अप बिटवीन द टू ऑफ देम, कि ये थॉट है या फीलिंग है। थॉट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, और जिस तरह की, जिस क्वालिटी की आप थॉट क्रिएट करोगे, फिर यू विल ईदर फील गुड और यू विल फील बैड। फीलिंग्स आर नॉट स्ट्रक्चर्ड, थॉट्स आर स्ट्रक्चर्ड। फीलिंग्स में बहुत सारे ऐसे
0: fluid, actually, हाँ, feelings
1: are आपको ऐसे फीलिंग्स अलग अलग नहीं आएगी, ये इंसल्ट की फीलिंग है, ये बिट्रेयल की फीलिंग है, ये हर्ट, ना, इट्स ओनली फीलिंग लो और इट्स फीलिंग गुड। एंड दिस लो एंड हाई विल डिपेंड ऑन ये जो स्ट्रक्चर्ड थॉट्स आपने क्रिएट किया। अब उसी सिनारियो में आप कोई और क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट करो, कि मैंने जो किया, फर्स्ट आई विल चेक माई वर्क कि वो सिंसियर था या नहीं। हो सकता है उन्होंने ठीक से नहीं परसीव किया, या हो सकता है उनका मूड ठीक नहीं है। जब उनका मूड ठीक हो सके, हो जाएगा, मैं जाकर बात कर लूंगी। हाँ, उन्होंने सबके सामने मेरे को डांट दिया, लेकिन अब मैं कैसे स्टेबल रहूं। सी, वन थिंग व्हाट हैपेंस इज, उन्होंने डांट दिया, देन आई फील लो, उसके बाद मैं उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हूँ। एंड जस्ट वो जो पूरे चार लोग साथ में बैठे होंगे, उनके सामने अपना इमेज वो करने के लिए मैं उनके बारे में जाकर उन सारे लोगों, तो एक्चुअली इंसल्ट वो नहीं करते हैं मेरी। जब एक सिनारियो में आप आपको देखो कि किसी ने मुझे डांटा, मेरी कोई इंसल्ट नहीं होती है उस समय। आई थिंक कि मेरी बहुत इंसल्ट हो गई है उस समय। जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो देख रहे हैं उस सीन को, उनको भी पता है हु इज द वन हु इज इन कंट्रोल एंड हु इज द वन हु हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो किसके बारे में क्या इमेज क्रिएट करते हैं, वो उनकी अपनी परसेप्शन पे डिपेंड होगा। आई फील इंसल्टेड माई सेल्फ, आई फील लो कि मुझे व्हाट दे फील, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। मैं सोचती हूँ कि सबके सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सब लोग मेरे बारे में वही सोचेंगे जो पहले मैं अपने बारे में सोचूंगी। और अगर मैं स्टेबल रही, माई फेस डजंट शो एनी डिस्टर्बेंस, आई डोंट क्रिटिसाइज हिम, my body language is absolutely smooth, you will see everyone there is smooth. Lekin main upar niche ho gayi, disturb ho gayi, main unke bare mein galat bolne lagi, phir wo mere bare mein ab sochenge. To ye meri jo soch bahut fast chalti hai us time jab ye scenario create hota hai, unhone danta wo mere control mein nahi hai totally, lekin ab kya kya hona hai uske baad, wo sara kiske control mein hai, wo sara mere control mein
0: hai. फीलिंग लाइक आपने बोला कि क्रिएट थॉट्स, जब उन्होंने डांटा, ठीक है, तो उसमें लो फील नहीं करके आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टेबल रह पाते हैं तो बाकी लोग जो, क्योंकि मेरे लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, यू नो,
1: पूरे मेरे लिए एक्चुअली ज्यादा पहले ये होना चाहिए मैं क्या सोचूंगी, लोग क्या सोचेंगे इज रियली सेकेंडरी। एक्चुअली आज हम बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, एंड वी कुड प्रॉब्ली मेस अप विद आवर लाइफ
0: बिकॉज ऑफ वी बीन डूइंग दैट,
1: कि लोग क्या सोचेंगे। कई बार कोई दो लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कहेंगे गुस्सा तो करना ही है, अगर चुप रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे ये तो बिल्कुल, इसके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है, इसको तो, लोग क्या सोचेंगे इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं किस चीज से गुजरता हूँ वो मेरी सोच पर डिपेंड करता है। अगर इफ आई एम फीलिंग लो टूडे, आप मेरे बारे में कितना भी अच्छा सोचो, कैन यू मेक मी फील गुड? नो, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स इस बात पर डिपेंडेंट है लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आई डोंट नो हाउ मच दैट मैटर्स। मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ,
0: लोग एक्चुअली वही सोचने लगेंगे,
1: एक्चुअली इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि आप जो सोचेंगे आप वो एनर्जी क्रिएट करेंगे, जो एनर्जी आप क्रिएट करेंगे वो आपके एनवायरमेंट में फैल जाएगी, एंड वो एनर्जी दूसरे की सोच को क्रिएट करेगी। पहले मैं तो अपने बारे में अच्छा सोचू ना, आप मेरे बारे में अच्छा सोचे या नहीं सोचे हाउ डज दैट मैटर, दैट डजंट बिल्ड माई सेल्फ एस्टीम. लेकिन मेरे लिए क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरी खुशी लोगों की सोच पर डिपेंडेंट है. दैट इज वॉट आई थॉट कि अगर आप मेरे बारे में अच्छा सोचोगे तो फिर आप मेरे से अच्छा बात करोगे, फिर आप मेरे से अच्छा बात करोगे तो मुझे खुशी होगी. तो मैंने ज्यादा ये सोचा कि लोग क्या सोचेंगे. जब मुझे ये समझ में आया कि मैं क्या सोचूंगी उस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है, तो सारा फोकस किस पर चला जाएगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, डेस्टिनी कैसे क्रिएट हो रही है. बॉस ने मुझे डांटा, ठीक है, डांटा इसलिए क्योंकि कोई गलती हो गई है. अब मेरी थॉट्स कैसी वाली चलनी शुरू होती है, कितनी भी मेहनत करो ये तो डांट देते हैं, मैं आगे से कुछ नया नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि नया भी करो तो भी यहाँ से तो कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं है, इन्होंने तो फिर भी डांटना, माइट एज वेल मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, बिना बात के इतनी मेहनत करो, फिर लोगों के सामने कुछ मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं है. नाउ दिस इज द क्वालिटी ऑफ थॉट. अब गए अपने डेस्क पे और काम करने बैठे, कैसा काम होगा,
0: फीलिंग इतनी लो हो चुकी है. यू नो हम ये बात कर रहे थे ना कि हमारी जो थॉट,
1: सो नाउ व्हाट विल बी माय डेस्टिनी, बिकॉज नाउ विद दैट लो क्वालिटी ऑफ थॉट एंड दैट लो फीलिंग आई एम सिटिंग एंड वर्किंग ऑन माय कंप्यूटर और ऑन माय फाइल और वट एवर विद दीज थॉट्स कि यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये तो कुछ भी करो और काम कर रहे हैं, वो काम कैसा होगा, वो एनर्जी कैसी होगी जो रे. अब जरूर गलती निकलेगी, पहले नहीं भी थी तो, क्योंकि इतनी लो स्टेट में अगर काम करेंगे तो वो वर्क एफिशिएंसी पे तो मेरा इफेक्ट पड़ने ही वाला है.
0: वही कहा जाता है कि जब डांट पिट रही हो तो हाथ हिलने लगते हैं ना. नहीं,
1: अब वो लो एफिशिएंसी में मैंने काम किया तो पहले वाले काम में गलती नहीं भी होगी ना, तो इस वाले काम में तो गलती जरूर निकल आएगी. अब मैं हर्ट फील हुई हूँ, अब मैं वो काम लेकर फिर से बॉस के पास जाती हूँ. व्हेन आई एम हर्ट कैन आई लाइक द बॉस, आई हेट द बॉस फॉर व्हाट द बॉस हैज डन. तो जैसे ही मैं बॉस के सामने गई मेरी वाइब्रेशंस कैसी गई, आई डोंट लाइक यू, ये एनर्जी आई ट्रांसमिट. काम भी मैंने वो सबमिट किया, उस काम में भी हो सकता है अब तो डांट जरूर पड़नी पड़ेगी,
0: लेकिन मेरे मन में ये आएगा कि नाउ ही इज गोइंग टू डू इट अगेन.
1: यस, सो आई क्रिएट द थॉट विच दिस क्रिएट्स फॉर मी. द सेम थिंग व्हाट आई कुड डू इज कि डांट पड़ी है, वट एवर रीजन जिसके लिए उन्होंने डांटा, आई हैव टू स्टिल गो बैक टू माई वर्क. इट मे नॉट बी वेरी इजी दैट टाइम, क्योंकि जब डांट पड़ती है तो आई हैव गॉट इन टू द हैबिट ऑफ वो डिजेक्टेड थॉट्स को फील करना. इफ आई कैन, इट्स नॉट ईगो, बट इफ आई कैन गो बैक टू माई डेस्क एंड से ओके लेट मी गेट बैक टू द वर्क ऑल ओवर अगेन. पहले अगर गलती हुई थी तब तो और भी इम्पोर्टेंट कि आई गो बैक विद फोकस, एंड अगर गलती नहीं थी फिर भी डांटा गया था, आई स्टिल गो बैक, चलो मैं फिर से इनको यही करके देता हूँ, लेट्स सी अब इस बार वो ठीक लगता है कि नहीं. बट आई हैव टू पुट अ फुल स्टॉप टू दोज नेगेटिव थॉट्स उस टाइम, और फिर उस स्टेबिलिटी से अगर मैं काम करूँ, अगर मैं हर्ट नहीं हूँ तो मैं वो सीनियर के प्रति भी बहुत गलत क्वालिटी के थॉट्स नहीं क्रिएट करूंगी. आई कैन से आई कैन अंडरस्टैंड ये उनके अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं या अपना आज वो डिस्टर्ब्ड होंगे या जो भी, आई कैन जस्ट वेव इट ऑफ. तो जो हम कहते हैं कि औरों के प्रति गुड विशेस रखना, तो वो औरों के प्रति गुड विशेस कब रख सकेंगे, जब हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड नहीं है.
0: अपनी स्टेबिलिटी तो फिर भी रख पाऊं कि ठीक है उनकी कोई वजह होगी कि मैंने किया, लेकिन उनके प्रति शुभ भावनाएं,
1: शुभ भावना क्रिएट नहीं करनी होती है. यू डोंट हैव टू से सिट एंड से उनके साथ बहुत अच्छा हो जाए, दिस इज नॉट शुभ भावना. शुभ भावना सिर्फ ये है कि आप स्टेबल हैं.
0: मैं
1: तो एटलीस्ट आपसे कोई नेगेटिव क्वालिटी ऑफ थॉट दूसरे के प्रति नहीं जा रही है, दैट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ. जैसे कि परिस्थिति आई और परिस्थिति गई और परिस्थिति ने मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, दैट विल बी स्टेबिलिटी ना. मौसम बदला फिर बदला, लेकिन मैं उस मौसम को क्रॉस कर सकी, दैट इज स्टेबल. कि वो बदला लेकिन आई वॉज स्ट्रांग इनफ चेंज करने की. इसी तरह वो बदले, उनका व्यवहार बदला, लेकिन उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा. इट इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, आई कैन ट्राई इट आउट.
0: मैं उनके साथ उसी एनर्जी के साथ दोबारा बात करूं.
1: इट्स ओनली वन थॉट अवे. इट्स जितना ये हमें मुश्किल लग रहा है करना, एक्चुअली ये एक थॉट अवे है. अगर हम उनसे ठीक से बात नहीं करना चाहें, हम सालों साल नहीं कर सकते हैं, वो भी ठीक है. क्यों मैं बात करूं, बात करना डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन है, मैं क्यों बात करूं आपसे जब आपने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की, तो मैं आपसे क्यों अच्छी, दैट इज द क्वेश्चन.
0: दैट्स व्हाट आई से ना, व्हेन वी से आई रिमेन अनअफेक्टेड, इज इट आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड.
1: दैट इज नॉट अनअफेक्टेड, दैट इज डीप हर्ट. That is deep hurt. That is not unaffected. जो आप कह रहे हैं कि can I, many people have tried this, कि can I go back and talk to that person normally? It is very, very, very easy. कितने दिन के बाद करना है?
0: Very easy, you said.
1: Yeah, it's very easy.
0: I was going to say very difficult.
1: बात करना बहुत easy है. वो जो period बीच में है, जब तक के लिए आप अपने आप को convince कर सको कि it is okay, I can go back. See, if you have said something to me, jisse I am like totally very, very low, and I can keep saying to myself, inse to ab main fir se kabhi baat nahi karungi, inhone mere saath aisa kiya. So I give those thoughts to myself. It's not ke main inse baat kar nahi sakti. It's just that main nahi karungi.
0: I don't feel like
1: yes, that. Main nahi karungi kyunki inhone itna galat kiya ki main nahi karungi. To karna mushkil nahi hai, lekin decision lena कि मुझे करना है या नहीं. तो नॉर्मली क्या होता है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नहीं करना, मैं बॉस से बात नहीं करूंगी, मैं हस्बैंड से बात नहीं करूंगी, मैं बच्चों से भी ठीक से बात नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया. विच इज ओके, दे आर ओके विद देयर नॉर्मल लाइफ. मैं जितनी देर नहीं करती, तो इट इज दैट क्वालिटी ऑफ थॉट जो मेरे अंदर फिर चलती जाती है. जिस दिन आपने डिसीशन लिया, हमारे पास एक भाई आया, उसने कहा मैंने कई सालों से अपनी मदर से बात नहीं की है. क्यों नहीं की है? क्योंकि वो मदर ने पता नहीं मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसे ऊपर नीचे कर दिया. आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन, माई मदर इज इन अ लॉट ऑफ पेन, ही सेड, माई वाइफ इज इन अ लॉट ऑफ पेन. आई सेड, आज प्रोग्राम के बाद वाई डोंट यू ट्राई, आप जाके अपनी मदर से बात कर लो. ही सेइंग नो, आउट ऑफ द क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गलत मेरे साथ किया. ऐसे दो ही तो चॉइस है, या तो फिर इसी तरह हम दर्द में चलते रहे, या फिर आप जाओ, आप बात कर लो. एंड ही वेंट आफ्टर द प्रोग्राम एंड ही स्पोक टू हिज मदर. हाउ डिफिकल्ट कुड दैट हैव बीन, हाउ डिफिकल्ट.
0: लेकिन अगेन आई विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड, यू नो.
1: सी दैट अगेन,
0: दैट्स अ फियर
1: कि आप मुझे फिर से,
0: मैं अपने आप को ओपन कर रहा हूँ, वल्नरेबल कर रहा हूँ एक बार फिर.
1: दैट इज द प्रॉब्लम, कि जब हम इस तरह से कोई स्टेप लेते हैं, हम सोचते हैं हम वल्नरेबल हो रहे हैं. एक्चुअली ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है. किसी ने मेरे साथ कुछ किया ऊपर नीचे, और मैं फिर भी उनके साथ स्टेबिलिटी से बात कर सकूं, ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है?
0: दिस इज माई स्ट्रेंथ,
1: दैट्स ऑल. व्हाट द, नोबडी कैन एक्सप्लॉइट स्ट्रेंथ. माई स्ट्रेंथ एंड माई वीकनेसेस आर माई प्रॉपर्टी. आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं. हमें ये लगता है कि हमें एक्सप्लॉइट किया जाएगा, कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. इफ माई लाइफ, माई स्टेट ऑफ माइंड इज इन माई कंट्रोल. मैं अगर जाकर बात करती हूँ उस सीनियर से या जिसे से भी, तो वो अगर मुझे अच्छा लगता है, दैट्स जस्ट मोर देन इनफ, दैट्स मोर देन इनफ. उसका गलत क्या हो सकता है रिजल्ट? आज दिन तक मैं दर्द में चल रही थी. अगेन डिफरेंट डेस्टिनी नो. See this brother, इतने साल से अपनी मदर से बात नहीं की, या इतने टाइम से आप अपने बॉस के अगेंस्ट होकर रोज वो ही ऑफिस में जा रहे हैं, उधर ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति इस तरह की थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके जीवन की क्वालिटी क्या है? और फिर इतना दर्द जो अपने अंदर भरा, इतनी बिटरनेस उस सीनियर के प्रति, वो सिर्फ उधर तक तो नहीं रहेगी, घर जाएंगे, वाइफ पर निकलेगा, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकलेगा. आप अपनी जीवन की क्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं. इट इज ओनली स्टार्टिंग विद योर थॉट्स. आज आप जाएं, वाइप आउट करें अगर अपने आप को, और कहें आई एम जस्ट गोइंग टू बी नॉर्मल, इनको जैसे बात करना है इनको बात करने दो, तो आप फॉरगिव किसको कर रहे हैं? अपने आप को दर्द से आप मुक्त कर रहे हैं. उनको नहीं कर सकते, उन्होंने गुस्सा करना है तो गुस्सा करना है. लेकिन अगर मैंने ये अपने आप को कह दिया कि मैंने फिर भी नॉर्मल रहना, तो किसको बचाया?
0: अपने आप को.
1: अपने आप को बचाया, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से बचाया, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से बचाया. जब घर जाओगे आज शाम को तो कैसे होगे? जस्ट बिकॉज यू डिसाइडेड टुडे कि आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी, आई एम गोइंग टू बी नॉर्मल. लेकिन फिर वो और डांटेंगे, डांटने दो ना, फिर और डांटेंगे तो क्या होगा? हम सोचते हैं हम नाराजगी शो करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, और अगर हम ठीक से बात करेंगे तो उनका तो व्यवहार, तो हम सारा दिन क्या कर रहे हैं? मैं नाराजगी शो करूंगी ताकि आप चेंज हो जाओ. लेट्स स्टॉप ट्राइंग टू चेंज.
0: यस, पीपल डोंट चेंज
1: पीपल. एंड पीपल विल चेंज अकॉर्डिंग टू देयर ओन जर्नी. इसी में ये बात आई कि अपने ऊपर ध्यान रखना. इसलिए हमने कहा अपने ऊपर ध्यान रखना. डेस्टिनी डजंट नेसेसरीली मीन जॉब एंड मैरिज एंड प्रॉपर. डेस्टिनी मीन्स हाउ आई फील द होल डे इज माई डेस्टिनी. वेदर आई एम हैप्पी और वेदर आई एम सफरिंग, दिस इज माई डेस्टिनी द होल डे.
0: शिवानी, आज जो हमने बातचीत की है, हम चाहेंगे कि कुछ क्षण बैठकर उस पर रिफ्लेक्ट करें, ताकि वो जो डिसीजन हमने लेना है जिस भी डायरेक्शन में जाने का, उसकी स्ट्रेंथ हमें मिल पाए.
1: श्योर. आई थिंक हर मॉर्निंग जैसे हम तैयार होते घर से बाहर जाने के लिए, तो जैसे कि हम शरीर की तैयारी करते, गाड़ी की तैयारी करते, सब चीजों की तैयारी करते, इस तरह से मन को तैयार करके निकले आज के दिन के लिए. और अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते, और इसको अगर सभी लोग हर रोज करें, 2 मिनट 3 मिनट भी निकाल कर अपने मन की तैयारी करें, रेडी फॉर द डे, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. लेट्स जस्ट सिट बैक कंफर्टेबली एंड अपने थॉट्स को देखने का प्रयास करें. मैं वो शक्ति जो सारा दिन घर का, ऑफिस का, लोगों का ध्यान रखती हूं, मैं वो शक्ति जो इतने सारे कार्य करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल हो, मेरी क्वालिटी क्या है? अपने आप को याद दिलाएं, आई एम दैट पावरफुल बींग, मास्टर ऑफ द सिचुएशन, मास्टर ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड. मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरी सोच फिर भी मेरी क्रिएशन है. टुडे एज आई सेट आउट फॉर द डे, लेट मी जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ, आई एम दैट पावरफुल बींग, क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स. सिचुएशन इरिस्पेक्टिव, I will still create powerful, positive thoughts. Mera har sankalp shaktishali, shuddh aur positive hoga. Om Shanti.
0: Om Shanti. And thank you so much, Sister Shivani. Ab aapse se bhi vida lena chahenge, lekin yahi kahenge ki happiness index ki jo baat karte hain, to wo hamare apne hi haath mein hai. फिर मुलाकात होगी. ओम शांति.

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी। जिंदगी में हमने बहुत कुछ पाया, कई रास्तों से हम गुजरे हैं और इस पूरे सफर में हमने हंसते खेलते बहुत कुछ देख भी लिया, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अंदर एक खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है, कुछ कमी रह गई है और उसी कमी को तलाशने की कोशिश हमारी श्रृंखला में है कि वो खालीपन क्या है, क्या हमारी लो सेल्फ एस्टीम है, कहीं लगता है कि हम कम रह गए हैं। यही सारी बातें हैं जिन्हें आज हम तलाशेंगे अपनी इस कड़ी में, और इसमें बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति सिस्टर शिवानी। बहुत कुछ हम बातें कर चुके हैं, ईगो को भी पहचान लिया था, सेल्फ अवेयरनेस की भी बात हमने कर ली थी, लेकिन अगर हम देखें तो कई बार लगता है कि कुछ नहीं है, खाली है, हम बहुत कहीं कुछ नजर नहीं आता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, लगता है कि मुझमें ही शायद अच्छा नहीं है। क्यों होता है ऐसा सब कुछ?
1: एक एम्प्टीनेस सा भी आ जाता है, एक जिसको हॉलोनेस कहते हैं, कि बहुत खालीपन है। बाहर रीति से देखा जाए तो सब कुछ है, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी जॉब, सैलरी, शरीर ठीक ठाक है, सब कुछ होते हुए भी वो जो इनर कंटेंटमेंट कहें या भरपूरता कहें, उसकी शायद कभी कभी कमी महसूस होती
0: उसे
1: है।
0: कई बार एक्चुअली, क्योंकि ये कई एक पूरा जो सफर है ये एक एज तक हमें कवर करते हैं, उसके बाद जब हम पहुंचते हैं इस पे कि एम्प्टीनेस का एहसास हो, तो उसे हम मिड लाइफ क्राइसिस भी कह देते हैं। बहुत बार ये नाम दिया जाता है, कई सारी और बातें की
1: वो
0: जाती।
1: इसलिए एक्चुअली ये नहीं है कि उस टाइम पे जाकर वो हुआ, लेकिन उस टाइम पर रुके उसको देखने के लिए।
0: हाँ
1: अभी तक बहुत फास्ट थे, हमने रुक कर, एम्प्टीनेस था लेकिन एम्प्टी को भी चला रहे थे। जैसे शरीर थोड़ा बीमार होता है तो चला रहे होते हैं उसको, फिर भी चला रहे, लेकिन कहीं जाके फिर वो थोड़ा सा रुकने लगता है, काम नहीं कर पाता, तब जाके लगता है नाउ आई नीड समथिंग, नाउ आई नीड टू स्टॉप एंड चेक एंड सी वॉट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। तो इसलिए वो 35-40 के बाद जाकर कहीं टाइम मिलता है रुक करके चेक करने के लिए। बट देन इट्स रियली नथिंग टू डू विद एज।
0: इट्स
1: एज
0: प्रोसेस,
1: कोई,
0: होल
1: हाँ,
0: प्रोसेस।
1: कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। और एक होता है ना, धीरे धीरे धीरे वो बिल्डअप होता गया, तो जब एक वो लेवल पर पहुंच जाता है तब जाके भी एक रियलाइजेशन होती है। बचपन में पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वो सेल्फ एस्टीम को डेवलप करते हैं।
0: एक्चुअली वही जो खालीपन की हम बात करते हैं, उसे भरने के लिए हम कई तरीके करते रहते हैं, भागते रहते हैं, कभी हम फिल्म देखने चले जाएंगे, कई हम कभी हम शॉपिंग, अगर वुमेन की बात करती है तो वो शॉपिंग पे चली जाएंगी, लेकिन समवेयर डीप वो जो खालीपन था, एक वक्त ऐसा आता है कि कोई भी चीज मायने नहीं रखती, तब फिर
1: बिल्कुल।
0: तलाश शुरू होती है।
1: सेल्फ एस्टीम अगर हम देखें तो सेल्फ एस्टीम आखिर क्या है, बिकॉज इट्स अ वर्ड विच इज कैचिंग ऑन, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। आपके पास बहुत सारी आज किताबें हैं इस टाइटल को लेके, सेल्फ एस्टीम, लेकिन सही मायने में, और उसकी एक बहुत हाई डेफिनेशंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसकी एक्सप्लेनेशंस, लेकिन बहुत सिंपल रूप में अगर हम उसको एकदम सिंप्लीफाइड रूप में ले, तो सेल्फ एस्टीम क्या है? इट्स सिंपली पुट हाउ आई एम फीलिंग अबाउट माई सेल्फ एट एनी पर्टिकुलर टाइम।
0: इस वक्त मैं अपने बारे में क्या महसूस
1: क्या
0: कर रही हूं?
1: महसूस कर रहे हो, दैट सेल्फ एस्टीम, और कुछ भी नहीं है। अपने बारे में मैं क्या फील करती हूँ, डू आई द फील गुड फैक्टर,
0: एक्चुअली मैं
1: द
0: कितनी
1: फील
0: बार
1: गुड
0: ऐसे होता है, बैठे
1: फैक्टर
0: बैठे आप लो फील करने लगते हैं। बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स हैं जो भी ये कहते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी लो,
1: हाँ
0: तो मतलब कोई वजह नहीं है कि वो लो
1: बिल्कुल
0: फील क्यों हो रहा है,
1: बिल्कुल।
0: तो बट इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली।
1: इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आज हम लो ही फील कर रहे हैं, और जितना लो फील कर रहे हैं उतना उसको बाहर से फिर कुछ ना कुछ करके, मतलब हम अंदर भरने की जगह उसको बाहर फिर एक प्रोजेक्शन के रूप में
0: और
1: दिखाते हैं।
0: सबसे बड़ी बात जो छोटे बच्चों में जो आ रही है, बच्चों इन द सेंस की टीनेजर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट हमारे पास एक मेल है, इसको पहले हम ले लेते हैं कि ये हमें आया है नागपुर से, और ये एक मदर हैं जो कहना चाह रही हैं कि उनकी बेटी 14 साल की है, शी इज बिकॉज वो प्यूबर्टी में है, उनको शी इज प्लम्प, और वो इतनी लो सेल्फ एस्टीम उसकी हो गई है कि वो ना बाहर निकलना चाहती है, वो अच्छी खेलती, ये लिख रही है कि वो अच्छी भली थी, खेलती थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ग्रेजुअली क्योंकि उसने वेट इतना पुट ऑन कर लिया है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया है, तो वो अब ना बाहर जाती है, ना किसी पार्टी में जाती है, ना किसी फैमिली फंक्शन में जाती है, किसी में पार्टिसिपेट ही नहीं करती, चुप हो गई है। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा इतनी बात करने के बावजूद भी कि वो कैसे निकलेगी। इट्स अगेन यू नो लाइक
1: वेरी कॉमन थिंग.
0: हाँ, लो सेल्फ एस्टीम और
1: सही
0: कहीं ना
1: बात
0: कहीं
1: है.
0: पीयर प्रेशर पड़ता है चारों
1: राइट,
0: तरफ.
1: बिकॉज एक बहुत बड़ा कारण जो हमारे ये लो फीलिंग का है, इस तरह से खालीपन का है, क्योंकि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं इसको हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड कर दिया है कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं. हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ टूडे इज बेस्ड अ लॉट ऑन हाउ आई लुक. माई लुक्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टूडे इन जनरल फॉर
0: लेकिन वो
1: पीपल.
0: तो जनरली है, मतलब जनरली जो सब लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ. इनफैक्ट आज के दौर में अगर हम देखें तो एज नो बार हो गया है. यू नो लाइक पहले ये होता था कि चलिए 40-45 तक आते आते लोग जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है अब तो हम मोटे भी हो जाएंगे या ठीक है हम बूढ़े लगने लग गए
1: अब
0: बाल
1: तो.
0: सफेद.
1: लेकिन वो भी नहीं है.
0: अब तो दे हैव बिकम सो कॉन्शियस, मतलब हेल्थ को लेके हेल्थ क्लब्स चल रहे हैं, वेट लॉस का पूरा, ब्यूटी कॉस्मेटिक सर्जरी, इतना कुछ हो गया है अब तो. अब तो और ज्यादा अवेयरनेस हो गई.
1: तो हेल्थ कॉन्शियस इज ओके, दैट्स वन पार्ट, क्योंकि वो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है. लेकिन जहां तक एक मतलब नीट एंड क्लीन दिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. नॉट बिकॉज हाउ आई लुक बट हाउ आई फील. आई शुड बी नीट क्लीन एंड टाइडी बट हाउ आई फील, मैं अपने बारे में कैसा महसूस करती हूँ, कि नॉट बी बेस्ड ऑन हाउ आई लुक. क्योंकि लुक्स जो है, आज शरीर कैसा है दिखने में, वो एक टेम्पररी चीज है ना. आज अभी है, कल नहीं. अभी बिल्कुल ठीक है, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पांव कट गया, तो क्या करेंगे? आई विल बी एब्सोल्यूटली शैटर्ड, क्योंकि इट वॉज बेस्ड ऑन हाउ आई लुक. आज ठीक है, 40-45 के बाद क्या? इट विल बी बेस्ड ऑन हाउ आई लुक. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ब्यूटिफुल एंड विच इज गुड. यू नो, किसी से भी आप पूछिए आप इतना सब क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं अपने आप को, से आई वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल. लेकिन जब वो आए समझ में आ जाएगा, तो वो लुक ब्यूटिफुल, सुंदर लगने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, शरीर को क्या से क्या बनाने की कोशिश कर देते हैं. कई बार तो असली चेहरा बिल्कुल छुप जाता है उसके पीछे. आज मतलब शरीर के एक एक अंग की हम सर्जरी करवा सकते हैं सो दैट इट इज परफेक्ट. वी वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट. ये एक मतलब एक हमने एक मान्यता, एक बिलीफ बना लिया है कि व्हेन आई एम ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट आई विल फील गुड. बट देन व्हेन आई अंडरस्टैंड द आई, के हु एम आई, इज दैट आई ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट. अभी जो हम कर रहे हैं वो हम अपने शरीर को ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट बना रहे हैं,
0: क्योंकि अभी तक हम ये मान रहे थे कि आई इज दिस बॉडी,
1: दिस बॉडी. बट नाउ इट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि नहीं कि ये शरीर ब्यूटिफुल और परफेक्ट, बट इट इज आई, मैं जो हूँ, मैं ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट हूँ कि नहीं.
0: पर सोल तो इज लाइक वी ऑलवेज से इज ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट.
1: सो नाउ वी नो दैट इट्स ऑलवेज ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट. सो तो जब ये समझ में आ गया, जैसे आपने कहा कि लेकिन मैं तो हूँ ही ऐसी, अभी राइट नाउ इट्स अ रियलाइजेशन कि मैं तो ऑलरेडी ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट हूँ, तो फिर इतनी मेहनत किस लिए, क्या करना है? नाउ इट्स इम्पोर्टेंट आई अंडरस्टैंड कि आई एम ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट. आई द सोल एम ब्यूटिफुल, आई एम परफेक्ट. तो फिर ये सारी मेहनत किस लिए हो रही है कि नाक को इधर से
0: बिल्कुल.
1: इधर
0: अच्छा,
1: करना.
0: ये हम ब्यूटी की बात के साथ साथ एक और आई वुड लाइक टू टेक अ मेल एक्चुअली, जो एक मदर का है. एंड अगेन मदर्स एक्चुअली,
1: बट फॉर दैट गर्ल ऑल्सो जिसका हमारे पास वो आया, इट्स इन हर केस शी हैज विथड्रॉन हर सेल्फ फ्रॉम पीपल. इट्स बिकॉज शी फील्स के आई एम नॉट लुकिंग गुड. तो वो उन्हें अपने आप को रियलाइज करना पड़ेगा कि ठीक है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से शी नीड्स टू वर्क ऑन हर बॉडी, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट नॉट कि वो दिखने में कैसी है, लेकिन वो एक किस तरह की एक कॉन्शियस जो एनर्जी है उसकी क्वालिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. शी कैन बी नाइस, शी कैन बी हैप्पी, शी कैन बी यू नो लवली विद पीपल, शी कैन गिव लव एंड पीस टू एवरीबडी. तो इट्स नॉट अबाउट फैट और थिन.
0: Here I want to ask you something, SSH Shivani, कि देखा ये गया है कि जो apparently खूबसूरत नहीं है, जो गोरा नहीं है, खासकर अगर हम भारत में देखते हैं, या जो यू नो स्मार्ट नहीं है,
1: पतला नहीं
0: हाँ,
1: है,
0: पतला नहीं
1: है,
0: you know,
1: हमने
0: हाँ,
1: ये जो बिलीफ बना दिया
0: तो
1: है,
0: उन्हें ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, ज्यादा अच्छा बन के रहना है. आपने भी तो यही कहा अभी कि आप लोगों के साथ अच्छे रहिए, आप लोगों के साथ ठीक व्यवहार कीजिए, आप अपने अंदर कोई और टैलेंट, इसका मतलब कोई और, इन द सेंस क्योंकि पीयर प्रेशर या पूरा समाज में ये एक्सेप्टेड है कि अगर आप खूबसूरत हैं, अगर आप पतली हैं, अगर आप यू नो स्मार्ट हैं, तो ये तो आपका एक प्लस पॉइंट है.
1: नहीं, लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं. आप ये पहचानिए कि आपकी जो विशेषता है वो आंतरिक है, वो इंटरनल है, वो आपकी क्वालिटी है, वो आपकी वर्च्यू है. और जब आप वो सुंदरता को पहचान लेंगे तो लोग आपके शरीर को देखकर आपके नजदीक या आपसे दूर नहीं होंगे. अभी हम क्या फील करते हैं कि जितना दिखने में हम अच्छे होंगे तो लोग हमारी तरफ आएंगे, हमारे दोस्त
0: लेकिन क्या
1: बनेंगे.
0: ये सच्चाई नहीं?
1: नहीं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है. आप देखिए, आप 5 मिनट किसी से बात करेंगे, पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं तो शायद आप उनके बाह्य स्वरूप को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं एंड आप फर्स्ट टाइम उनसे बात करना चाहते हैं. 10 मिनट उनसे बात करने के बाद अब फर्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट लुक कितना ज्यादा मायने रखता है उसके बाद. अब ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है
0: कि वो
1: कि
0: है
1: वो
0: कैसा.
1: है कैसा, वो बोलता कैसे, प्यार से बोलता है मेरे साथ, वो व्यवहार में वो मधुरता है. अब मैं क्या करूं वो सुंदर शरीर को. दैट वॉज जस्ट अ फर्स्ट अट्रैक्शन. लेकिन एक रिलेशनशिप या किसी का आपको स्वीकार करना, आपको रिस्पेक्ट देना, वो बहुत ज्यादा बाह्य लुक्स पर नहीं हो सकता है. इनफैक्ट इस चीज को हम बना लेते हैं बिलीफ. तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे हमारी तरफ उसी चीज के लिए आएंगे, बट इट्स नॉट ट्रू एट ऑल. इफ यू हैव दैट ब्यूटी इन साइड, द होल वर्ल्ड इज विद यू. डिफरेंट एस्पेक्ट, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि वो एक एनर्जी है और एनर्जी ही एनर्जी को आकर्षित करती है. क्योंकि दूसरा भी तो एक एनर्जी है, वो उस एनर्जी की तरफ ही आकर्षित करेगा. ये शरीर है क्या, इट्स जस्ट लाइक मैटर. जैसे हम एक सुंदर पीस ऑफ फर्नीचर को देखते हैं, एक बार जब पहली बार देखते हैं वी से वाओ इट लुक्स गुड, बट दैट्स ऑल. उसके बाद हम देखते हैं कि वो कितना कंफर्टेबल है. अगर वो लुक गुड बहुत अच्छा है लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है तो शायद वो मेरे कोई काम की चीज नहीं है.
0: एंड देन वी स्टार्ट क्रिबिंग, यू नो, इफ वी बाय दैट एंड इवन इफ इट्स ब्यूटीफुल वी डोंट लाइक.
1: सो दैट फर्स्ट लुक इज जस्ट अ टेम्पररी थिंग. मोर इम्पोर्टेंट इज कम्फर्ट. तो दैट कम्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एनर्जी टू एनर्जी, नॉट विद द लुक्स. आपकी लुक्स सिर्फ एक फर्स्ट लुक देखकर कहेंगे हाँ लुक्स गुड और डजेंट लुक गुड, बट दैट डजेंट मैटर. और उसमें भी आपका अपना सेल्फ एस्टीम बहुत मैटर करेगा. ज्यादातर दूसरे का इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स बिकॉज हम अपने ऊपर हम फील करते हैं नहीं, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं तो दिखने में अच्छी नहीं हूँ. तो वो एनर्जी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं. अगर आप फील करेंगे कि आप जैसे हैं बिल्कुल ठीक है, इट इज फर्स्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं, इट इज फर्स्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ. अगर यू आर नॉट कॉन्शियस, हम कॉन्शियस होते हैं नहीं मैं तो बहुत पतली हूँ, मैं तो बहुत मोटी हूँ, तो दूसरे का भी उस तरह का विचार चलना शुरू होगा. एक्सेप्ट योर सेल्फ, वॉच मैजिक, पीपल विल एक्सेप्ट यू.
0: डेफिनेटली,
1: नॉट एक्सेप्ट यू, दे विल लव यू.
0: बिकॉज वी जस्ट सेड दैट एक्चुअली. अगर हम पहले देखें अपनी बात को कि हमारा जो भी थॉट है, जो संकल्प है, जो पॉजिटिविटी है,
1: एनर्जी
0: वही
1: तो अगर मैं आपको ये एनर्जी ट्रांसमिट करती रहूं कि आप मुझे नहीं लाइक करेंगे, आप मुझे नहीं लाइक करेंगे, आप मुझे नहीं लाइक करेंगे,
0: आप मुझे नहीं लाइक,
1: मैं तो हूं ही ऐसी, आप तो मेरे से दूर जाएंगे, आप तो मेरे से दूर जाएंगे, आप दूर जाएंगे. अगर मैं ये एनर्जी ट्रांसमिट करूं कि मैं जो हूं जैसी हूं बिल्कुल ठीक हूं, अभी अंदर पुरुषार्थ चल रहा है, आउटसाइड आई एम फाइन, दिस इज द वे आई एम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, पीपल एक्सेप्ट मी.
0: फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, यू नो, अपने आप को एक्सेप्ट करें.
1: तो फिजिकल जो लुक्स पर हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बेस करते हैं, ये बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है लो सेल्फ एस्टीम का. और उसी के कारण आज हम छोटे छोटे बच्चे अगर हम देखें तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं.
0: बिल्कुल,
1: वो अपनी इनोसेंस को इतनी जल्दी खो देते हैं, इतनी जल्दी वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं,
0: इतनी कॉन्शियसनेस में घुस जाते हैं,
1: बॉडी कॉन्शियसनेस. तो वो अपने असली स्वरूप से बहुत जल्दी
0: दूर होते
1: जा रहे हैं. एंड वो ये समझने लग गए कि दूसरों की अप्रिसिएशन हमें, ये बिलीफ सिस्टम है कि दूसरों की अप्रिसिएशन तब हमें मिलेगी जब हम दिखने में बहुत सुंदर होंगे, जब हमने बहुत महंगे और बहुत अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहनी होगी. सो द होल इंडस्ट्री, और इसको मैनिपुलेट सारा कौन कर रहा है, द इंडस्ट्री. वो बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम के ऊपर और ज्यादा.
0: अगर हम फैशन देखें, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री देखें,
1: कॉस्मेटिक सर्जरी ऑल्सो,
0: यस. अच्छा, ये एक हमने ये बात तो की कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है दैट या फिजिकल ब्यूटी है, वो हमारी सेल्फ एस्टीम को गवर्न करने का एक जो मुद्दा नहीं होनी
1: और
0: चाहिए।
1: उसके लिए हमें यही याद रखना पड़ेगा, आई डोंट हैव टू लुक ब्यूटिफुल, आई एम ऑलरेडी
0: अ ब्यूटिफुल
1: ब्यूटिफुल,
0: सोल,
1: आई एम ब्यूटिफुल, आई कैन टेक केयर ऑफ माई बॉडी
0: यस, एंड आई एम अ ब्यूटिफुल बीइंग बेसिकली,
1: बींग,
0: यू नो मैं।
1: यस एब्सोल्युटली.
0: देर इज दिस ईमेल जो एक अगेन मदर का है, और इसमें एक्चुअली मैं ही देख पा रही हूँ उनकी, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरी दो बेटियां हैं, एक 12 साल की है, एक

0: 7 साल की है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पूरे हर स्कूल में हमेशा कुछ ना कुछ जीतती रहती है, और दूसरी जो है वो उतना ही चुप रहती है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मैं इतनी बार कहती हूँ कि बड़ी बहन को देखो वो क्या कर रही है, तो वो कुछ करती ही नहीं है। क्या करूं मैं कि वो जो है उस तक पहुंचे। बट आई फील एक्चुअली मैं को ये दिख रहा है कि ये कंपेरिजन इज अगेन मे बी वन कॉज कि वो छोटा बच्चा जो है, छोटी बेटी नहीं कर रही होगी।
1: हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन है, ये भी एक लो सेल्फ
0: अनोइंगली
1: है,
0: एक्चुअली
1: पता भी नहीं चल रहा। और एक्चुअली अभी जो मदर कर रही होगी वो मोटिवेट करने की कोशिश कर रही
0: दिस इज
1: है।
0: व्हाट शी इज ट्राइंग टू से कि मैं मोटिवेट
1: यस
0: कैसे करूं, दिस इज हर
1: राइट।
0: क्वेश्चन, हाउ डू आई
1: लेकिन
0: मोटिवेट माय डॉटर, यंगर
1: एब्सोल्युटली,
0: डॉटर।
1: लेकिन हमने एक्सेप्ट कहाँ किया कि दोनों अलग है।
0: हाँ
1: हमने एक तरफ कहा कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, मतलब दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, फिर हम एक को दूसरे की तरह बनाने की कोशिश क्यों कर रहे
0: क्योंकि
1: हैं?
0: आई एम नॉट लाइकिंग शी, आई थिंक शी इज नॉट लाइकिंग कि जमीन आसमान का फर्क क्यों है।
1: सो यू आर ट्राइंग टू मेक बोथ ऑफ देम द सेम।
0: दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज।
1: कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, एंड ये रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कि ये कितना डैमेज कर रहे होंगे वो छोटे बच्चे को।
0: एक्चुअली ये हम जिंदगी में अगर देखें तो ये अनजाने अनचाहे कितनी बार
1: बहुत
0: पेरेंट्स
1: ज्यादा,
0: करते आए
1: और
0: हैं।
1: बहुत ज्यादा डीप फैक्टर है। आज मेजोरिटी हम लोग जो लो, ये जो लो फीलिंग से गुजरते हैं, जिसमें हमारा अंदर का ये जो है बहुत खाली है, इट्स बिकॉज ऑफ द वे वी वर ब्रॉट अप। हमारे को बचपन से या पीयर प्रेशर में जो कुछ बोला गया था वो कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। और ये इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कंपैरिजन। या तो पेरेंट्स हमें किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, या खुद ही हम अपने आप को
0: करने
1: किसी
0: लगते
1: और के
0: हैं।
1: साथ कंपेयर करते हैं। सेल्फ एस्टीम, हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ एट एनी पॉइंट। तो नाउ अगर ये दो बहनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो अगर वो बहन अपने बारे में तभी अच्छा फील करेगी जब वो उस जैसी बन जाएगी, तब तक वो फील करेगी नहीं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। मैं ठीक तब फील करूंगी जब मैं उस जैसा बन जाऊंगी, विच विल नेवर हैपन।
0: बिकॉज़ शी इज डिफरेंट, शी मस्ट बी डिफरेंट।
1: द मोस्ट फंडामेंटल थिंग जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ईच वन इज यूनिक। इफ ईच वन इज ब्यूटिफुल बट ईच वन इज यूनिक, ईच वन इज डिफरेंट। इस दुनिया की सुंदरता ये है कि हम सब अलग हैं, और हम उस सुंदरता जो भिन्नता में है हम उसको खत्म करने की कोशिश कर देते हैं, हम अपने एक दूसरे को अपने जैसा बनाने के लिए।
0: सिस्टर शिवानी, यहाँ डैमेज की बात आप कर रहे हैं। ये हमने कहा कि ये एक्सेप्ट, पेरेंट्स को भी ये मानना कि दोनों अलग हैं, लेकिन वो उसको प्रोसेस पे तो लेके जा रहे हैं कि आप जैसा बनो उस जैसा बनो, वो है नहीं बेसिकली वैसे। लेकिन एक स्टेज, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं ऐसे, कि एक स्टेज ऐसा आता है कि जो इंस्पिरेशन बनाई गई है उस तरह वो बन जाते हैं कुछ कुछ हद तक, लेकिन उनका बेसिक डैमेज कहाँ हुआ,
1: हाँ, लेकिन वो
0: वही मैं जानना चाहती हूँ।
1: बाह्य रूप से, जैसे पेरेंट्स कई बार बच्चों को फोर्स करके कुछ वो बना देते हैं जो वो पेरेंट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन आप बच्चे से जाके बात कीजिए, आज नहीं तो 10 साल के बाद, एंड फिर वो लाइफ लॉन्ग वो बच्चा कहेगा मैं ये नहीं बनना चाहता था, एज अ रोल, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इवन एज अ पर्सन। एंड यू नो, एक कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी वो बन जाएगा, कि वो बनना चाहता था कुछ और, या वो था ही कुछ और, लेकिन हमने उसको फोर्सफुली कुछ और बनाने की कोशिश की। सबसे डैमेजिंग होता है ये कंपैरिजन और इमिटेशन। मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनकी तरह बोलना है, मुझे इनकी तरह चलना है, आई हैव टू कैरी माई सेल्फ लाइक दिस पर्सन। दिस इज वेरी डैमेजिंग। एक्सेप्ट कि हर एक हम यूनिक है, वो डिफरेंट है। अब अगर मैं आपके जैसे बनने की कोशिश करूंगी, ना मैं आपकी तरह बन जाऊंगी और ना मैं जो थी वो रह जाऊंगी, आई एम मिडवे।
0: गणेश, यस,
1: तो वो मिडवे प्रोसेस होने के कारण पर्सनालिटी इज एब्सोल्युटली डैमेज्ड। मैं ना वो बनी ना वो रही जो मैं एक्चुअली थी।
0: तो आई थिंक समवेयर पेरेंट्स आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट, गिव देम।
1: कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो उसकी विशेषता है, क्योंकि दोनों बच्चों के अंदर विशेषता होगी। अब ये हो सकता है कि मुझे जैसे एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है, लेकिन दोनों के अंदर एक विशेषता है। अब अगर वो पेरेंट को वो एक्सट्रोवर्ट वाली पर्सनालिटी ज्यादा पसंद आ रही है, आई विल ट्राई टू पुश द चाइल्ड टू बिकमिंग लाइक दैट, लेकिन मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल,
0: यस, द वे शी इज, शी इज
1: वेरी
0: ब्यूटिफुल।
1: ब्यूटिफुल। एंड उसकी नेचर को देखते हुए उसके अंदर जो विशेषताएं डेवलप हो सकती हैं, कोई स्किल्स, वो इंट्रोवर्ट है तो शायद वो पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, या जो भी पार्टीज, इस तरह की चीज में हिस्सा नहीं ले सकती। वो कोई और चीज में हिस्सा
0: पेंटिंग
1: लेगा,
0: कर सकती है, वो कुछ और परफॉर्म कर सकती है, राइट कर
1: सिंगिंग में
0: सकती
1: जा
0: है,
1: सकती है, राइटिंग में
0: लिख
1: जा सकती
0: सकती है,
1: है,
0: वो कुछ
1: बहुत
0: भी कर
1: कुछ
0: सकती
1: बहुत
0: है।
1: कुछ। लेकिन क्योंकि हम उसको उस तरह बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो बन नहीं सकेगी, दैट्स फॉर श्योर।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हम उसके भी टैलेंट को और उसकी भी विशेषता को
0: और
1: सप्रेस
0: कहीं ना
1: कर
0: कहीं
1: देते
0: अगर
1: हैं।
0: ये जब जब मैं सोच पा रही हूँ ये कि ये देखा बहुत गया कि अगर ये एक ही स्कूल में हुई और अगर तो टीचर्स जो हैं
1: हाँ
0: वो
1: बिल्कुल,
0: भी कंपेयर करते होंगे
1: एवरीबडी,
0: पक्का कि
1: क्योंकि
0: आपकी बड़ी
1: एक
0: बहन
1: क्लास
0: तो
1: से
0: देखो
1: गुजरेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे।
0: कि अपनी बड़ी बहन को देखो वो कितना अच्छा करती है, तो
1: एब्सोल्युटली,
0: ये पूरा जो पूरा क्योंकि अगली
1: बिल्कुल,
0: मेल जो है वो मैं यही ले रही हूँ पीयर प्रेशर की। एक निशांत है दिल्ली से ही है और 9th क्लास के स्टूडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि मेरी मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं कभी चैट नहीं करूंगा और इंटरनेट पे मैं काम करता हूँ बहुत ज्यादा, मैं गूगल में सर्च करता हूँ, मेरे को बहुत आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय कहा जाता है मुझे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता भी हूँ, लेकिन मेरे क्लास के सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो ऑर्कुट पे चैट करते हैं, मेरा बहुत मन करता है, लेकिन एक तरफ मम्मी मुझे लगता है कि मम्मी ने मुझे जो है मुझसे प्रॉमिस लिया हुआ है तो कैसे मैं मम्मी का प्रॉमिस तोड़ूं, और दूसरी बात ये कि अगर मैं नहीं जाता हूँ चैट पे तो मुझे सारे लोग हंसते हैं, सारे क्लासमेट्स जो हैं वो
1: हाँ
0: ऐसा करते हैं कि आई फील वेरी लो, आई
1: राइट,
0: फील वेरी लो, मतलब मुझे लगता है कि क्या मैं मम्मी का प्रॉमिस तोड़ दूं, लेकिन मन नहीं करता, तो इट्स लाइक अगेन अ पीयर प्रेशर एक्चुअली।
1: सही बात है, पीयर प्रेशर और पब्लिक ओपिनियन,
0: हाँ कि मैं जो है वो लो हूँ, लो सेल्फ एस्टीम में चला गया
1: राइट,
0: हूँ।
1: जो लो सेल्फ, हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा, बहुत, मतलब ये फंडामेंटल होगा, बहुत ज्यादा इस बात पर आधारित है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
0: इमिटेशन भी करते हैं, नकल करते हैं।
1: इमिटेशन तो एक हो गया, जैसे हमने कहा कंपटीशन, इमिटेशन, कंपैरिजन, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, ये फिर भी माइल्ड है, लेकिन सारी जीवन हम इस में जरूर चलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो लोग अप्रूव करते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद है, तो अगर लोगों को पसंद है,
0: तो मैं
1: लोग
0: ठीक हूँ।
1: मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं ठीक हूँ, इट डजेंट मैटर इफ इट्स ऑल रॉन्ग, यू नो, इट्स लाइक आजकल तो देर इज सो मच ऑफ अ
0: एक्चुअली
1: कॉन्फ्लिक्ट,
0: बिकॉज दिस चाइल्ड ऑल्सो इज सेइंग कि मुझे पता है कि गलत है।
1: क्योंकि मेजोरिटी वो कर रहे हैं, तो मुझे भी वो करना चाहिए टू फॉर टू गेट देयर रिस्पेक्ट, यू सी, इट्स लाइक सपोज ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एक टाइम पे वी वुड से इट्स नॉट अ वेरी राइट थिंग टू डू, लेकिन आज क्योंकि मेजोरिटी कर रहे
0: वी
1: हैं,
0: से सोशल ड्रिंकिंग तो करनी ही पड़ेगी, आप
1: करने
0: सोशल ड्रिंकिंग
1: चाहिए,
0: नहीं करते
1: और
0: हैं
1: अगर नहीं करते हो आप,
0: तो यू आर
1: तो
0: ऑड
1: यू आर नॉट
0: पर्सन।
1: नॉर्मल, तो इसलिए मेजोरिटी में हम में से वो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने नहीं किया तो लोग कहेंगे अच्छा तुम तो बहुत संत बन गए हो, ये जो रिमार्क हमें दूसरे से मिलेगा, मतलब नहीं ड्रिंक करना मेरी विशेषता थी, लेकिन दूसरे के कमेंट के कारण मैं अपनी विशेषता छोड़ने के लिए रेडी हूं, अच्छा आप तो बहुत सीधे हो, ये तो बहुत ढोंग है, आप संत हो, क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, यू नो, वट एवर काइंड ऑफ कमेंट्स दैट कम फ्रॉम पीपल, सिर्फ उस चीज को नहीं सुनने के लिए और वो उनके जैसा उनकी अप्रूवल लेने के लिए हम करना शुरू कर देंगे, सो
0: बट
1: सेम
0: हाउ
1: थिंग
0: टू
1: इज विथ
0: एक्चुअली हैंडल दिस यू नो।
1: इवेल्युएट, कि आपके लिए, नॉट इवन इन अ ब्रॉड सेंस कि सही क्या है गलत क्या है, बिकॉज वी आर नोबडी टू डिसाइड कि सही क्या है गलत क्या है, मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है,
0: इंडिविजुअल लेवल पे जाके
1: इंडिविजुअल,
0: मैं
1: जैसे इस बच्चे के लिए अगर उसने मम्मी को प्रॉमिस किया है कि चैट नहीं करूं, फ्रेंड्स चाहते हैं कि करूं, लीव बोथ असाइड फॉर 1 मिनट, ठीक है, तो नॉट दिस एंड नॉट दिस, जस्ट लीव बोथ असाइड, आस्क योर सेल्फ वॉट इज गुड फॉर मी, क्या मैं सिर्फ चैट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, क्या मैं इसलिए नहीं कर रहा सिर्फ क्योंकि मम्मी ने कहा है, तो दोनों वेज आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, यू नो,
0: क्योंकि दोनों में ही मैं गवान किसी और से हो रहा
1: हो रहा हूं, एंड वी डोंट लाइक दैट, तो
0: हूँ।
1: मुझे अपने आप से दोनों चीजों को समझना पड़ेगा, मेरी मम्मी मेरे लिए अच्छा ही सोच रही होंगे, तो वो किस लिए कह रही है, थिंक अबाउट इट, बहुत सारा मेरा टाइम वेस्ट है, मैं कुछ और कर सकता था उतनी देर में, कोई बहुत मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन नहीं निकल रही है, मुझे ये भी नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूं, इससे अच्छा ये ना होता मैं कोई जाकर एक्चुअली लोगों से बात करूं, तो मैं एनर्जी से बात करने की बजाय
0: एक मशीन
1: एक
0: से
1: मशीन से बात कर रहा हूं, क्यों, व्हाई एम आई मूविंग अवे फ्रॉम एनर्जी, इट विल अफेक्ट माय पर्सनालिटी, तो ये सब चीजें अगर मैं एनालाइज करूं, देन आई टेक अ डिसीजन, आई विल नॉट चैट, एंड फिर जब वो मेरा अपना डिसीजन होगा सोच के रियली, फिर मुझे ये नहीं फर्क पड़ेगा, अगर द होल वर्ल्ड, फॉरगेट जस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स, अगर सारी दुनिया एक तरफ है और कहती है कि चैट करना चाहिए, लेकिन मैंने फील किया मेरे लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट।
0: So finally, actually, if we look at it, we come down to this solution, this result that self-esteem actually majorly depends upon our, again, inner stability.
1: Right,
0: मैं
1: absolutely.
0: डिसीजन लेने की जो पावर है मुझ में.
1: सेल्फ एस्टीम इज कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एनीथिंग एक्सटर्नल. अभी जो हमने दो तीन बातें ली, हमारी हाउ आई फील इट्स बेस्ड ऑन हाउ आई लुक, तो वो भी टेम्पररी है, मोटे पतले वट एवर, काले गोरे वट एवर. सेल्फ एस्टीम सेकेंड वॉज बेस्ड ऑन हाउ आई वॉन्ट टू बी, कि दूसरे की तरह हम बनना चाहते हैं, देन आई विल फील गुड. एंड थर्ड सेल्फ एस्टीम वॉज बेस्ड ऑन लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. मतलब सोचने की बात है कि सारा दिन में या एक जीवन में हम कम से कम 1,000 लोगों से मिलते होंगे, कम से कम. अब 1,000 लोगों का ओपिनियन तो मेरे बारे में अलग अलग होगा ना. अच्छा, हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों को भी ले लें, लेकिन उनका, उनकी सोच के अनुसार, उनकी परसेप्शन के अनुसार उनका मेरे बारे में ओपिनियन होगा. और वो एक्चुअली ओपिनियन क्या है, मैं उनके माइंड में घुस के चेक भी नहीं कर सकता. और आपका ओपिनियन मेरे बारे में क्या है, यू आर अलाउड टू हैव दैट ओपिनियन. आई ऑल्सो के नॉट से आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते
0: अच्छा,
1: हैं.
0: और सबसे बड़ी बात है वो मेरी पर्सनालिटी का ट्रेट है.
1: Right.
0: वो मेरे अपने इनर सेल्फ का एक पोर्ट्रेयल है.
1: आई कुड बी वेयरिंग अ व्हाइट साड़ी, लेकिन अगर आपने काला रंग का चश्मा पहना है तो आपको ये व्हाइट नहीं दिखने वाली है. और अगर अब आप मुझे आकर कहो कि आपने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है एंड आई बिलीव यू,
0: Then I am wrong actually.
1: Absolutely.
0: Because I have to understand that I am the white.
1: मुझे तो याद रहना चाहिए ना, मुझे तो पता होना चाहिए कि आई एम वेयरिंग अ व्हाइट साड़ी.
0: अगेन यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है.
1: अपने आप की अगर पहचान होगी, अपनी रिस्पेक्ट होगी, तो फिर दूसरे का राय आप सुनेंगे, लेकिन हमेशा दूसरों के ओपिनियन की तरह बनने की कोशिश नहीं करते रहे.
0: बहुत सुंदर सिस्टर शिवानी की, कहीं ना कहीं ये तीन बातें जो सामने आई कि हमारी जो लो फीलिंग जो है, कहीं ना कहीं यू नो लाइक वी फील की पिट में ना, स्टमक के पिट में ना, वी गोइंग डाउन. सो दैट ऑल डिपेंड्स बिकॉज हमने उन्हें एक्सटर्नलाइज कर दिया है सभी फैक्टर्स को. तो कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस अगेन कम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और सेल्फ एस्टीम उस पर बहुत डिपेंड करती है. थैंक यू सो मच. देखा कितनी आसानी से हमारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट वापस लौट सकती है, जो हम अकेलेपन का, खालीपन का, हॉलोनेस की फीलिंग के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं. थोड़ा सा अगर खुद को जाने, खुद को पहचाने, सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी ये हॉलोनेस डिपेंड करती है, उन्हें छोड़ दें, खुद से बात कर लें, तो शायद हम हंसते खेलते जिंदगी को गुजार पाएंगे. आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. अगली कड़ी में अपने बारे में कुछ और जानने का प्रयास करेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का
1: रेडिओ पुणेरी हो आमचा रेडिओ पुणेरी।
2: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भक्ति काल की अद्भुत कवित्री थी मीरा, कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा, जिसका दर्द कोई न जान सका। अपार सौंदर्य की स्वामिनी कवित्री मीरा, जो अपने भजन अपने ही कोकिल कंठ से गाकर अपने सांवरिया को रिझाती रही। लोक लाज खोकर और कुल मर्यादा को भुलाकर भक्तों के साथ झूम झूम कर नाचती रही। पग घुंघरू बांध और ताली बजा बजा कर वे अपने जोगी को बुलाती रहीं।

सचमुच मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी। मीरा ने स्वयं को कृष्ण की दासी के रूप में साकार कर लिया। प्रभु चरणों के निकट वे भाव विभोर होकर नाचती थी। माया मोह नाते रिश्तों से दूर वे कृष्णमय हो गई थी। उनके तो सिर्फ गिरधर गोपाल थे, दूसरा कोई नहीं था। अपार सौंदर्य की धनी और सुख वैभव में रही मीरा ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। न जाने कितने कष्ट और अत्याचार सहकर भी वे गोविंद के गुण गाती रहीं।

लोक कहें मीरा भई बावरी, भ्रम दूनी ने खाग्यो, कोई कहे रंग लाग्यो। लोग कहते थे कि मीरा पागल हो गई थी, यही भ्रम दुनिया को खा गया। कोई कहता है ये तो प्रेम लग गया है, अर्थात मीरा का भक्ति भाव कृष्ण में आत्मसात हो गया। आकाश हो या धरती, फूल हो या पत्ते, या फिर हो बादल, हर जगह हर शय में मीरा को सिर्फ कृष्ण ही नजर आते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायिका थी वीनस तरकसवार। संगीतकार थे उमेश वीनस। आलेख और उद्घोषणा सुधानुपम। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम्स से।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के

0: सामने मेरा पैर लग गया टेबल से, तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी। दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं, बेड के सामने टेबल रखिए, उठा, मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां, और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: Awakening with ब्रह्मकुमारीज. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांति.
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
3: थैंक यू सो मच.
2: एक्सेप्टेंस के बाद पर मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा. एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी मिसफॉर्च्यून.
3: पिछली बार जो लाइन थी जो आपने सुनाई वो थी एक्सेप्ट एंड देन एक्ट. एक्सेप्ट एज इफ यू हैव चोजन इट. And if you do that, then you will create miracles in your life. मतलब परिस्थिति को पहले accept करें, फिर act करें, और इतना प्यार से accept करें, जैसे कि आपने खुद वैसा ही चाहा था, but you had chosen it. And if you do that, you will create miracles. आज ये line कहती है, accepting the situation is the first step to overcoming the consequences of the misfortune. कि suppose जीवन में कोई misfortune, बड़ी बात आई है, हमें उसको cross तो करना ही है, और हम सब करते हैं, face करना ही है, उस challenge के पार हमें जाना ही है, वो challenge को cross करना भी journey होती है, वो challenge को cross करने में कभी कुछ घंटे, कभी कुछ दिन, कभी कुछ साल लगते हैं. कभी कभी वो चैलेंज हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है. देर आर सम सिचुएशंस विच विल नेवर गेट सॉल्व्ड, राइट? सपोज मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज नहीं हो सकता. सपोज मुझे कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाए, या मैं पैदा ही डिसेबिलिटी के साथ हुई हूं, वो कभी सॉल्व नहीं हो सकता. कभी मेरा रिश्ता कोई टूट जाए जो अब कभी नहीं जुड़ सकता, कोई मुझसे अलग हो जाए,
2: कोई मर जाए,
3: हाँ, तो वापस कभी नहीं आ सकता. सो देर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस इन लाइफ जिनका कभी कोई सोल्यूशन नहीं है आगे. उसका कोई ये नहीं, हम वेटिंग पीरियड नहीं है कि इसके बाद ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी. कुछ ऐसी भी सिचुएशंस है, बाकी मेजोरिटी सिचुएशंस आज नहीं तो कल ठीक हो जानी है, लेकिन पीरियड कई बार लंबा चल सकता है बीच में. बट इट सेज एक्सेप्टिंग द सिचुएशन is the first step to overcoming the consequence of the misfortune. Means जो बात आई है हमारे जीवन में, misfortune जिसको कहा, मतलब कुछ हादसा, कोई tragedy, कोई बड़ी बात, वो misfortune हमारे जीवन पर कुछ असर डालेगी, वो तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा हमारे जीवन में. उस परिवर्तन को फेस करने के लिए, उस परिवर्तन में स्मूथली क्रॉस करने के लिए फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस है. क्योंकि ज्यादातर जब भी कोई बात आती है तो हमारा मन प्रश्नों में चला जाता है.
2: क्यों?
3: क्वेश्चंस.
2: किस लिए, कैसे हुआ,
3: किसकी वजह से हुआ,
2: ऐसा मैंने क्या कर दिया,
3: right.
2: दूसरों को क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों हुआ.
3: क्वेश्चंस जिसके लिए परमात्मा हमें कहते हैं प्रश्न चित्त. चित्त प्रश्नों से भर जाता है. जब चित्त प्रश्नों से भर जाएगा तो चित्त की स्थिति, मतलब मन की स्थिति,
2: प्रसन्न चित्त नहीं रहती.
3: यस, वेरी ट्रू. लेकिन उसके अंदर की वो जो स्टिलनेस है जहां हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखने वाला है, वो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि यहां हलचल हो रही है. तो द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट द सिचुएशन. हर बात का जो मन पर असर पड़ता है, फिर उसका शरीर पर भी असर पड़ता है. आज ज्यादातर क्या होता है, बात आती है, बात एक होती है, एक बात आती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के जीवन में एक बीमारी आती है. अभी रिसेंटली आई मेट समबडी जिनकी एक बीमारी छोटी थी लेकिन उसका इलाज नहीं पता चल रहा था, थोड़ा सा लंबा हो गया कुछ प्रोसेस. लेकिन वो प्रोसेस में क्योंकि इलाज नहीं मिल रहा था तो वो इतने हताश हो गए कि उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो गया। तो हुआ क्या कि एक प्रॉब्लम को हम नहीं स्टेबिलिटी से अगर क्रॉस कर पाए तो दूसरी प्रॉब्लम हम क्रिएट कर देते हैं। प्रॉब्लम एक बीमारी थी, वो एक अलग चीज थी, इलाज नहीं मिल रहा था, तो आप यहां से वहां इधर उधर, पर उसमें जो डर क्रिएट हो गया कि ये मुझे क्या हो गया है, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसका कभी कोई इलाज नहीं होगा, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा, ये जो मन इन सब चीजों में चला गया, डर में चला गया, दर्द में चला गया, भय में चला गया, इनसिक्योरिटी में चला गया, तो उस मन को डिप्रेशन हो गया। तो एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम। कई बार किसी के बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आता है, कई बार किसी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आता है, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ता है कि किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम एक थी लेकिन उसको स्टेबिलिटी से क्रॉस नहीं कर पाए तो और प्रॉब्लम साथ में क्रिएट होती है। कई बार जो आजकल हम बच्चों में देखते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया था कि उनकी जीवन में क्या होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ करियर, कि वो कैसे चलेंगे आगे, ये बनेंगे, नहीं बन पाते। वो जो सोचा था कि स्क्रिप्ट ऐसी चलेगी जीवन की, वो नहीं हो पाता, जो चाहा था वो नहीं मिलता, तो वो अपने आप को भी कुछ कर लेते हैं या हताश हो जाते हैं। तो एक परिस्थिति का इम्पैक्ट एक नहीं रह रहा आज, एक परिस्थिति का इम्पैक्ट और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फेस दैट मिसफॉर्च्यून। एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज ओवरऑल ही हमारे मन की स्थिति टिपिंग पॉइंट पे चल रही है, बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं, जिसमें हम अवेयर नहीं है, क्योंकि ये रोज का गुस्सा, ये सब दर्द करके करके वी आर नॉट अवेयर के हम बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं।
2: लाइक दे कॉल जीरो टॉलरेंस।
3: हाँ, जीरो टॉलरेंस, तो बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं ना। अब बॉर्डर लाइन की स्थिति कई सालों तक चल सकती है एंड वी विल से इट्स फाइन, आई एम फाइन, माई लाइफ इज ओके, क्योंकि हमने ये बॉर्डर लाइन स्थिति को भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आज जो हमें बहुत सारी बातें ऐसे सुनने को मिलती है, जैसे कुछ दिन पहले आपने कहा 35-40 ईयर ओल्ड पर्सन सीईओ ऑफ अ कंपनी, जो उनके बारे में अखबार में भी आया कि हेल्दी लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज, वेजिटेरियन, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नथिंग, लेकिन इतनी यंग एज में हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट एंड द पर्सन लीव्स।
2: पहले महाराष्ट्र, फिर ऑल इंडिया दिया, ऑल इंडिया देके सिंगापुर ऐड किया, फिर ऑल एशिया ऐड बना दिया, तो इतना उनके ऊपर।
3: लेकिन तो वो जीवन में क्या हो रहा था, अचीवमेंट्स वर वेरी गुड, लेकिन मन की स्थिति टिपिंग पॉइंट पर आ रही थी, बॉर्डर लाइन पे आ रही थी। तो कोई परिस्थिति आई होगी, कोई बात आई होगी, चाहे वो बिजनेस में होगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होगी, जिसका प्रेशर फिर वो मन नहीं ले पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे ऐसे वैसे ही अपने आप को बहुत संभाल के चल रहा है धीरे धीरे।
2: 99 हथौड़े मारे,
3: हाँ, तो यस, तो दिस वी हैव टू टेक केयर इज वन, कि हम पहले तो चेक करें कि क्या हम बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं या हम स्टेबल हैं बातों को फेस करने के लिए। एंड इम्पोर्टेंट ये कि कोई अगर बात आ जाती है जीवन में, उस बात को फेस करें, उस बात से इतना ना प्रभावित हो जाए या उस पर इतने इफेक्ट ना पड़ जाए अपने ऊपर कि उस बात का कॉन्सिक्वेंस और बातें क्रिएट होने लगे। एंड दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो पावरफुल, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन इज द फर्स्ट स्टेप टू फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मिसफॉर्च्यून। अगर आपको बात को फेस करना है मतलब इट्स ओके, आई है ना, हम इसको क्रॉस करेंगे, ये थॉट क्रिएट करने के लिए भी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल।
2: यूजुअली जो चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और नहीं करते, उसको अवॉइड करते, फेस नहीं करते, हम भाग जाते हैं, इवेड करते हैं,
3: मोस्टली हम उस प्रॉब्लम के प्रश्नों में ही फंसे रह जाते हैं।
2: नहीं, बट उस चीज को फेस भी तो नहीं करना चाहते ना।
3: फेस तो अब करना ही पड़ेगा ना, अगर कोई बात आ गई है।
2: एक बार मैं इसको दोबारा पढ़ता
3: हूँ।
2: एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट इज हैपन्ड इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी मिसफॉर्च्यून।
3: मतलब बात जो आई है उसके कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं, राइट? सपोज मुझे कोई बीमारी हो जाती है आज, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरे जीवन में आने वाले हैं, मुझे उसको क्रॉस करना है. दिस द अदर डे आई मेट समबडी इन द हॉस्पिटल, जस्ट एक दो घंटा पहले. वो यंग था, 35-40 ईयर्स का. उस भाई को पता चला कि उसको सेकेंड स्टेज कैंसर है. मेट इन अ वेरी बिग हॉस्पिटल इन दिल्ली. एंड तो उनकी वाइफ ने एकदम से कहा कि आप इनसे बात करो ना एक मिनट. तो वो भाई कहता है, मैं नहीं इलाज कराऊंगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा इसका इलाज. मैंने इलाज क्यों नहीं करना है? कहते ये नहीं हो सकता है मुझे. ऐसे कैसे हो सकता है? ये कोई एज है क्या? मतलब माइंड उस सिचुएशन को, उस बात को जब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो आगे चलना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ओवरकम करना, ये लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ही उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के बीच का हर्डल बन जाता है.
2: सिस्टर, जब मैं एक फिल्म कर रहा था लावारिस 1980s में, तो उसमें इस कैरेक्टर के दोनों हाथ कट जाते हैं और ये बिल्कुल पैसे नहीं है इसके पास. तो मैं सोचा था इसको कैसे प्रिपेयर करूं. तो प्रिपेरेशन के लिए मैं एक डॉक्टर के पास गया. मैंने बोला क्या होता है जब इंसान का हाथ कट जाता है, एक नहीं दोनों कट गए, तो मतलब खाएगा कैसे, खाना बनाएगा कैसे, कपड़े कैसे मतलब पहनेगा, और वो कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाएगा, ऑल दैट. तो यू नो फर्स्ट लाइन ही सेड द डॉक्टर, ही सेड कि यू विल नॉट एक्सेप्ट कि तुम्हारे हाथ नहीं है. कोई चीज गिरी तो आप उठाने जाओगे, फिर बाद में देखोगे अरे मेरे पास तो हाथ नहीं है. कोई चीज आप दौड़ोगे वो चीज करने के लिए, बिकॉज एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं. एंड इट विल टेक मंथ्स टाइम.
3: एंड जैसे जैसे एक्सेप्टेंस होगा, तभी जीवन स्मूथ होगी ना उस कॉन्सिक्वेंस के साथ. ये कॉन्सिक्वेंस हुआ ना कि आपकी जीवन बदल गई. जैसे डिसेबिलिटी कि कुछ कट गया हाथ, इवन लोग ना, व्हेन समवन लीव्स द बॉडी फैमिली के अंदर.
2: मेरे साथ हुआ. आई नेवर एक्सेप्टेड माय फादर्स डेथ. वो कश्मीर में कहीं हुआ और मैंने देखा ही नहीं. तो बार बार दिखता था कि आ गए नहीं, माय फादर इज नॉट डेड इसका. और सारा टाइम उनका वो ड्रीम्स में भी आता रहता था मुझे.
3: दिस इज इट, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस अपने आप में उस प्रॉब्लम के अंदर एक और प्रॉब्लम बन जाती है. एंड इसीलिए उसमें लिखा है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप ओवरकम कैसे करेंगे उस मिसफॉर्च्यून को, जब तक आपने उस मिसफॉर्च्यून को, वर्ड मिसफॉर्च्यून है मतलब उस बात को, मिसफॉर्च्यून इज बिकॉज वो मेरे लिए एक बड़ी बात आई है कोई. तो एक्सेप्ट. जीवन में क्या होता है, हम चाहते हैं कि जीवन की स्क्रिप्ट जैसे हमने प्लान की थी वैसे चलेगी. होता है ना नेचुरली, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर ये कॉलेज में जाएंगे, फिर ये कोर्स करेंगे, फिर बच्चे की शादी होगी, फिर बच्चे के बच्चे होंगे, वो हमारे साथ रहेंगे. मतलब आत्मा एक अपनी स्क्रिप्ट तो बना लेती है पहले से. स्क्रिप्ट के साथ बनाकर हम उसके साथ अटैच भी हो जाते हैं कि ऐसा ही होगा मेरा जीवन, यही सही है, ऐसा ही जीवन होना चाहिए. और एक क्षण में स्क्रिप्ट ही बदल जाती है पूरी. तो फॉर सम टाइम द सोल इज जस्ट नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट, एंड टिल इट डजंट एक्सेप्ट इट कैन मूव अहेड. एंड दैट लैक ऑफ एक्सेप्टेंस क्रिएट्स मोर पेन समटाइम्स देन द सिचुएशन इटसेल्फ. कई बार सिचुएशन का सोल्यूशन होता है, कई बार ये तो चलो ट्रेजेडी या कोई ऐसी बात है, कई बार ऐसा होता है कि हमने करियर सोचा था और हमने सोचा था यही बनेंगे, यही बनेंगे, यही बनेंगे, यही बनेंगे, लेकिन हम वो नहीं बन सकते, या हमें बस दो नंबर से एडमिशन नहीं मिला, या हमने जहां ब्रेक मिलना था वहां नहीं मिला, हमें वो चीज नहीं मिलती है. लेकिन कई बार हमारे को जीवन में उससे भी अच्छी चीज मिल सकती है. ये भी तो हो सकता है कि सपोज मैंने सोचा था डॉक्टरी बनना है, डॉक्टरी बनना है, डॉक्टरी बनना है, डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन हो सकता है कि हम कुछ ऐसा बन जाएंगे Which turns out to be better for me than being a doctor.
2: मैं तो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था. करते करते करते आर्मी में मैंने खाली एक बात बोल दी कि सब पास हो गया था. सिर्फ ये पूछा कि आपको किसने भेजा, तो मैंने बोला मेरे डैडी आर्मी में थे तो उन्होंने कहा तू भी ज्वाइन कर, इट्स नॉट योर चॉइस, ऐसा कुछ समझ लिया उन्होंने. मतलब यू फोर्स बाय योर पेरेंट्स,
3: राइट?
2: उन्होंने वहाँ एक पॉइंट पे फेल किया था, फिर मैं एक्टर बन गया.
3: लेकिन जब ऐसे हम एक पॉइंट पे फेल होते हैं, कई बार ये फेलियर को फेस करना डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं रिजेक्ट हो गया, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो यही बनना था, आई हैड टू बी दिस ओनली, मेरी लाइफ की स्क्रिप्ट ऐसी ही होनी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज क्या बनना चाहते थे। अगर हम नहीं बन पाते या वो सिचुएशन वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, हम अगर उस समय स्टेबल रहेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो शायद हम अपनी ऐसी डेस्टिनी क्रिएट करेंगे जो हमारी प्लानिंग से भी बेटर होने वाली है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मन की स्थिति परिस्थितियां क्रिएट करेगी, मन की स्थिति डेस्टिनी क्रिएट करेगी। मैं एक फेलियर से अगर डिजेक्ट हो जाऊं, होपलेस सा फील करूं, या तो एकदम डिप्रेशन में ही चले जाऊं, तो मेरा भविष्य अलग होगा। और अगर मैं उस वो बात जो आई है, जो उस दिन आपने जो पढ़ा लास्ट टाइम, आपने कहा एक्सेप्टेड एज इफ इट वॉज योर चॉइस, कि हम चाहते थे कि जीवन ऐसी हो लेकिन अचानक ऐसी हो गई, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इफ दिस वॉज माई चॉइस, हमने तो ये वाली चॉइस की थी, वो नहीं मिला, कुछ और हो गया, लेकिन जो वो दूसरी चीज हुई, अगर हम उसको भी उतने प्यार से एक्सेप्ट करते हैं एज इफ दिस वॉज माई चॉइस, तो जीवन में मिरेकल्स क्रिएट हो जाएंगे।
2: ये नहीं करते ना, इसलिए तो बार बार बोलते हैं ना कि आई विश आई हैड नॉट लिसन टू माई पेरेंट्स, मैं भी आर्टिस्ट बन जाती, कि जो मैं प्रेजेंट सिचुएशन में हूँ इट्स नॉट गुड, आई विश आई वॉज देयर,
3: राइट। एंड द सोल कैन कैरी दिस पेन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, अगेन फॉर वन बर्थ और फॉर मेनी मेनी बर्थ। हम हमेशा सिचुएशंस में ये चाहते हैं, या सिचुएशन जब कोई हमारे अनुसार नहीं आती तो हम कहते हैं इट शुड हैव बीन लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, इट शुड हैव बीन लाइक दिस, इफ इट वुड हैव बीन लाइक दिस, यू नो दैट्स हाउ आवर वोकैबुलरी गोज, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होता तो। लेकिन अगर जैसा है जो आई हमारे सामने बात, अगर हम कहें ऐसा ही होना था, ये ही सही है, अब इसके साथ आगे क्या करना है, अगर वो एटीट्यूड हम डेवलप करते हैं तो जो बात आई है ना सामने, उसमें भी कोई ना कोई कल्याण निकल कर आ जाएगा।
2: मुश्किल है सर आज के एक्सेप्टेंस करना। कितने लोग एक्टर बनते बॉम्बे आते हैं और फेल होके चले जाते हैं, कितने सालों साल उन लोग वो लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं, फिल्में देखते हैं,
3: हाँ, लेकिन उसमें नुकसान हुआ ना, उसमें आत्मा के भविष्य में कितना नुकसान हुआ।
2: नहीं, रियल लाइफ में प्रेजेंट में भी जो फिल्म आई वैसे कपड़े पहनेंगे,
3: हाँ, तो रिजेक्टेड है ना, अंदर कितनी आत्मा दुखी रहेगी,
2: बहुत दुखी,
3: असंतुष्ट रहेगी, और असंतुष्ट रहने के कारण अब करियर तो कोई और चूज करेंगे, वी विल डू समथिंग एल्स, ऐसा तो नहीं है यहाँ फेल हुए, करना तो हमें कुछ है, लेकिन असंतुष्ट होकर करेंगे, दुखी होकर करेंगे, करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है उस एटीट्यूड से करेंगे, तो उस फेज को ना एंजॉय करेंगे और ना उसमें मिरेकल्स क्रिएट कर पाएंगे। और यही अगर वो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो सामने आई है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि शायद मेरा ये नहीं होना था, ये होना था मेरा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर मी, स्विच ऑफ फ्रॉम दैट वन, फिनिश्ड फ्रॉम दैट वन, ये है एक्सेप्टेंस। तो फिर हम
2: जहां हूं जैसे हूं, आई एम supposed to be happy.
3: I'm not supposed to be happy. This is the best for me. Yes, what has happened for me is the best for me.
2: अभी तक तो acceptance करना ही मुश्किल था, अब आप कह रहे हैं कि जो आपके मुरली में आता है कि जो भी हुआ कल्याणकारी हुआ।
3: आप देखो हर घर में एक गीता सार टंगा होता है, उस पे लिखा होता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, टंगा हर एक के घर में हुआ है, पढ़ते भी रोज है, लेकिन फिर भी अपने जीवन की परिस्थितियां अच्छी नहीं लगती है। उस लाइन का मीनिंग होगा ना कुछ, कि अगर जीवन को उस मंत्र के साथ चलेंगे कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा।
2: अच्छा, इसीलिए वो लास्ट जो मैंने पढ़ा था उसमें वो कह रहा था, इफ यू एक्सेप्ट कि जो भी हो रहा है मेरे साथ मैंने किया है, देन इट विल क्रिएट मिरेक्युलस,
3: मिरेकल्स, बिकॉज योर माइंड एक्सेप्ट द सिचुएशन, सो योर माइंड बिकम साइलेंट, आपके मन को वो परिस्थिति सही लगने लगती है, तो आप परिस्थिति में एक विक्टिम नहीं, परिस्थिति के मास्टर बन जाते हैं.
2: यू विनिंग.
3: जैसे आपने कहा एक सेकंड करियर हमने लिया, सपोज ये बनना चाहते थे, ये नहीं बने, हम सेकंड करियर में गए. अगर हम उस सेकंड करियर में एक विक्टिम की तरह जाते हैं, बेचारा मैं, वो नहीं मिला तो अब मैं ये कर रहा हूँ, मजबूरी से कर रहा हूँ, ये

0: कितनी पावरफुल लाइन देते हैं, ड्रामा में हर सीन, इस वर्ल्ड ड्रामा में, आपके जीवन के ड्रामा में हर सीन जो आपके लिए हो रही है वो आपके लिए कल्याणकारी है। इसको मंत्र की तरह पकड़ के हम रखते हैं और हम देखते हैं पर्सनली कि इतने सालों में वो लाइन बार बार बार बार बार बार सुन के, पहले शुरू में क्वेश्चन मार्क होता था कि कैसे होगा ऐसे, लेकिन फिर जब भी सीन्स आए, हर सीन में ये अनुभव हो गया कि अगर सीन अनप्लेजेंट भी थी ना उस समय, अगर हम स्टेबल रहते थोड़ी देर के बाद, विच कुड बी थोड़े दिन थोड़े साल, ये पता चलता है कि वो सीन एक्चुअली मेरे लिए कल्याणकारी थी। और जब दो चार बार ये अनुभव हो जाता है ना, फिर उसके बाद तो वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए, ये पक्का हो गया है कि ड्रामा में ये सीन भी मेरे लिए कल्याणकारी ही है। एवरी सीन इन दिस ड्रामा इज एक्यूरेट एंड बेनिफिशियल। एक्यूरेट बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू माई कर्म, तो वो एक्यूरेट है, गलत तो वो हो ही नहीं सकती, और वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। कई बार कोई सीन अगर बाह्य रूप से बेनिफिशियल नहीं लगती कि मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं आत्मा स्टेबिलिटी से उसको क्रॉस करती हूँ तो उसमें ये कल्याण निकल कर आता है कि आई कम आउट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दैट सिचुएशन। हमारी आंतरिक शक्ति उस परिस्थिति के आने की वजह से बढ़ जाती है। हमें पता ही नहीं था हमारे अंदर ये पावर है, हमें पता ही नहीं था हमारे अंदर ये क्वालिटी है।
1: हर्डल्स के ऊपर जंप करना सिखाते हैं ना,
0: तो हर्डल जब तक आएगा नहीं तो हमारी स्किल, हमारा पावर ये बढ़ेगी कैसे? तो अगर और कोई कल्याण नहीं निकला, अगर बाहर कोई कल्याण नहीं दिखा उस सिचुएशन में, ये कल्याण तो निश्चित है,
1: स्ट्रेंथ,
0: कि वी विल कम आउट पावरफुल आउट ऑफ दिस सिचुएशन। कहते ना, ये जीवन का अनुभव मुझे सिखा कर गया है, मुझे स्ट्रांग बना कर गया, कहते हैं ना। लेकिन स्ट्रांग बनकर कौन निकलेगा उससे बाहर? कोई व्यक्ति सिचुएशन से वीक होकर भी बाहर निकल सकता है, लेकिन स्ट्रांग होकर तब निकलेंगे उस सिचुएशन से अगर हमारा ये पक्का रहे कि ड्रामा की ये सीन मेरे लिए कल्याणकारी है। इवन अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर मेरी कोई चीज छूट रही है, कोई अपॉर्चुनिटी छूट रही है, अगर उस समय स्थिति को अच्छा रखेंगे ना तो हमेशा ये याद रहेगा, ये अपॉर्चुनिटी इसलिए छूटी थी, ये चीज इसलिए छूटी थी क्योंकि इससे कई गुना ज्यादा बेटर, मेरे लिए बेनिफिशियल।
1: Isn't this a thought of a loser?
0: छूट गई है, what will you do? वो चीज छूट गई है। A loser is the one who will fail after that, जब वो चीज छूट गई, and a winner is the one जो एक चीज छूटेगी तो वो दूसरी चीज के लिए रेडी है, वो रेडी है, दूसरे को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी है, दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, दूसरे चैलेंज को क्रॉस करने के लिए रेडी है। लेकिन लूजर तो वो जिसकी एक चीज छूटी और वो हताश होकर फिर ट्राई ही नहीं कर पाया। आज कोई बीमारी भी अगर होती है तो डॉक्टर क्या कहेगा? आपकी विल पावर से आप इसको क्रॉस कर लेंगे, आप बस पॉजिटिव रहना। क्यों हर एक डॉक्टर ये कह रहा है आज सबको, आप बस पॉजिटिव रहना? क्योंकि जब बीमारी आती है तो मन पहले कहता है, हाय मेरे को क्या हो गया, मेरे को ऐसे कैसे हो गया, अब मेरा आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका, ये सारी चीजें हमारी उस बीमारी को एग्रेवेट कर देंगी और कुछ नहीं तो हमारी हीलिंग को स्लो डाउन कर देंगे। एक भाई आते हैं हमारे पास सेंटर पर, उन्होंने जीवन का एक अनुभव बहुत प्यारा सुनाया। व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 35 एंड 2-3 साल हुए थे उनको राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए, तो उनको टर्मिनल फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर डायग्नोज हुआ। वेरी कॉम्प्लिकेटेड इट वॉज, एडमिट हुए, कीमोथेरेपी चल रही है, इलाज चल रहा है। कहते मेरा माइंड स्वीकार ही नहीं कर पाया कि मुझे ये क्या हुआ है, मेरी लाइफस्टाइल इतनी हेल्दी है, सात्विक जीवन है, मेडिटेशन में रोज करता हूँ, मेरे को ऐसा क्यों हुआ? मतलब इट वॉज अ हाइट ऑफ अनएक्सेप्टेंस, कर ही नहीं पा रहा था। कहते हैं वो मेडिसिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर रही थी, डॉक्टर कर जा रहे हैं, मेरी तबीयत डे बाय डे और खराब होती जा रही है, और खराब होती जा रही है। ही सेड द डॉक्टर कुडंट अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर कुछ भी परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है इतनी दवाई का। माय माइंड वॉज नॉट एक्सेप्ट

0: एक्सेप्टिंग द ट्रीटमेंट ओनली, फुले ही नहीं रहा था उस चीज को. तो माइंड ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, बॉडी भी नहीं एक्सेप्ट कर रही थी. और एक दिन वो कहते हैं, मैं रात को ऐसे ही जागा था, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं खाना नहीं खाता था. तो मुझे ऐसे ही जैसे परमात्मा का एक विजन और एक आवाज, जैसे एक टचिंग हुई. तो परमात्मा ने कहा कि ये सीन तुम्हारे जीवन में इसलिए आया है क्योंकि इससे तुमने अपने जीवन में और लाखों के जीवन में हीलिंग करनी है. स्ट्रॉन्ग लाइक दैट टचिंग. कहता है दैट डे एवरीथिंग चेंज्ड. एंड उस दिन से वो ही दवाई, वो ही दवाई जो कल तक असर नहीं कर रही थी, साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, रिएक्शन आ रहे थे, खाना अंदर नहीं जा रहा था, नेक्स्ट डे से वो ही दवाई असर करने लग गई. आज तो खैर वो आत्मा अनेक अनेक आत्माओं की वर्ल्ड ट्रैवल करके मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग हीलिंग में कैसे हेल्प करती है, वो उसका रोल बन गया है इस जीवन के अंदर. लेकिन पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि जब तक मन क्वेश्चंस में रहेगा, न मन हील होगा न शरीर हील होगा. आई हैव चोजन दिस एंड आई एक्सेप्ट दिस नाउ. व्हाट डू आई हैव टू डू नेक्स्ट? सोल्यूशन पर फोकस करें. तो वो कॉन्सिक्वेंस जो था, उसका फर्स्ट स्टेप जो ओवरकम करना था, वो हमारा हो जाता है फिर.
1: थैंक यू सो मच सिस्टर.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. थैंक यू.
2: एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिसफॉर्च्यून. Most situations will have an effect on our normal functioning of life, and we will need to adapt ourselves to that change. The first step to do that is to accept the situations, which means no questions. Why me? Why not others? Who is to blame? What have I done to deserve this? A questioning mind creates fear and anxiety, which will further impact our mental health, physical health, and relationships. Acceptance silences the questioning mind. We start to see solutions and new possibilities in the stillness of the mind. Everything happening to us is accurate and beneficial. It is accurate because it is according to our karmic patterns. There will definitely be benefit in it, which will get revealed later. And even if there is no outward benefit, we have come out of the situation emotionally empowered is the inner benefit.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ। डू आई वॉन्ट देन, नाउ वट हैज हैपन्ड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट वेन, वेर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे।
1: नमस्कार, आपने के तहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

देना रहने देत रहावे, घेना रहने खेत रहावे। देना रहने देत रहावे, घेना रहने खेत रहावे। ता देता एक दिवस देना रहचे हाथ जगियावे। नमस्कार, मी प्रज्ञा।

0: घड़ी जी लेता सावन के महीने।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आज फूलों का बुलबुल के दिया जोने को है, आज फूलों का बुलबुल के दिया जोने को है, आज आलू में संदल आने को है, आज प्यालों में उबटन आने को है, आज आलू में

0: दिल में दर्द रहता है।
1: अच्छा,
0: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
1: बाप रे,

हो। वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना। आज पहली तारीख है, खुश है जमा।

पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: प्यार है, आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाँच आने का दस आना, पाँच आने का दस आना, पाँच आने का दस आना।
0: अरे वापस नहीं जाना,

0: से जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम।
0: बाजू

परमिट के लिए मरमिट परमिट परमिट परमिट।

देखो ये तमाशा पहुँचे वहाँ से थाने, हुआ ये हम पे सितम, वहाँ जकड़े गए हम, मांगा परमिट जो उद्यम, हाय हाय हमने कहा ना।

जाने न जमाना चुपके से जहर खाने गए हम एक दुखा पर कहा तो जहर मिसर को बोला वो सितंदर क्या क्या परमिट तो दिखाना परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट परमिट बिना इस जहां में दो दिन बिना जिया जाए।

रोजा बुढ़े का हुक्का भरा, बोला क्या कर है तेरा, शादी से पहले जरा परमिट तो दिखाना, परमिट के लिए मरमिट, परमिट बिना एक जहां में दो दिन बिना दिया जाए, परमिट के लिए मरमिट, परमिट बिना एक जहां में दो दिन बिना दिया जाए, परमिट परमिट परमिट।